0: आवाज नहीं आई।
1: जय माता दी।
0: मिलके बोलो
1: जय माता।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
5: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
6: प्रकृति से खुशियों की लहर।
7: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: फॉरन एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिर ही जाने वाला।
1: तो तुम लोग क्या किया?
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो गया।
1: अच्छा खाओ खाओ।
0: ना कल क्या खाएंगे?
1: भगवान खिलाएंगे वही खाएंगे।
2: और फिर यशोदा माँ ने उसके मुंह ऐसे खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा।

0: और अगली बार फर्स्ट आना, ठीक है?
1: मैं हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण, मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: प्रगति पथ पर बढ़ता देश,
2: जन जन तक पहुंचा संदेश।
3: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आशंका में वहां संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखला और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से। भारतीय फुटबॉल विश्व कप के आखिरी एक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: अस्सी के एमओयू से ही 1500 बैरल प्रतिदिन जो वहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही तेल में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% तक कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो के KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल कारणता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित है और खरीद समर्थ और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात द्वितिया टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां पर से 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात द्वितीया के बाद प्रभावित इलाकों में रास्ते को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 रेल के स्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जयंत रमण कुलिटोक्को ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो किसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। 2021 में भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
4: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
3: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है।
0: द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत 2026 से लेकर एग्रीकल्चर और सेमी कंडक्टर सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमता प्रदर्शन करेंगे।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माही के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। यह समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: के सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बंद। नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, चार दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रूपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए तीन दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोक सत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल पर प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेजने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के पक्के खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला T20 विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. Headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end the war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite memorandum of understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, and his Nagaland.

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ,
8: चावला टायर
6: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
9: अपोजिट
8: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
9: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
10: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
11: सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
12: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
11: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

सुप्रभात, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग है, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी सुबह, 12 जून की तारीख है और आज शुक्रवार का दिन है। दिस इज फ्राइडे की मॉर्निंग, शुक्र है कि आज शुक्रवार है। श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खूबसूरत सी सुबह में, जहाँ मौसम हमारा साथ दे रहा है। गर्मी से थोड़ी राहत मिली है मुरादाबादीज को और ये जो झमाझम रात को बारिश हुई है ना भाई, उसके बाद तो मजा ही आ गया। और अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो चली रही है और मौसम आज बहुत ही औसम रहने वाला है। फिलहाल 24 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है वेदर और आज का मौसम एब्सोल्युटली औसम रहने वाला है। चलिए, इस मौसम पे तो ढेर सारी बातचीत होंगी ही, लेकिन फिलहाल इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप आज की सुबह की शुरुआत करें तो बस मुस्कुराते हुए ज़रा आईने में जाके खुद की तारीफ़ें कीजिए और अपने दिन की शुरुआत से पहले ज़रा खुद को बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट दीजिए, क्योंकि जब हम दिन की शुरुआत अपनी तारीफ से करते हैं, खुद को कॉम्प्लीमेंट देके करते हैं, तो उसकी बात ही अलग होती है ना। तो बस आज का मौसम तो वैसे भी औसम है और इस औसम वाले मौसम में अच्छे गाने आपके लिए ऑफकोर्स लेकर आए हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होंगी दिल से दिल तक। आप भी मेरे साथ डेफिनेटली जुड़ सकते हैं आज की सुबह 9837896896, यानी कि 9837896896 ये स्टूडियो का नंबर है। इस नंबर के जरिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की मॉर्निंग स्टेशन ऑफ द नेशन पे। जरा सी देर में मिलेंगे, स्टेशन क्लॉक में वक्त हो गया 8:22। आप ही आनंद के साथ कल करे सो आज, आज करे सो अब, जो भी आपने करना है कल का इंतजार मत कीजिए दोस्तों। आज ही का वो दिन है, आज ही की वो सुबह है, आज ही का वो ब्यूटीफुल सवेरा है जब आपको कुछ बेहतर से बेहतरीन करना है। तो उठाइए अपने कर्मों की किताब, लिख डाली कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आनंद के साथ शुरू हो चुका है एक नया मॉर्निंग मैगजीन का सफर। गुड मॉर्निंग।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: अभिजीत जी की आवाज बहुत ही बेहतरीन, गाना भी आप एंजॉय कर रहे थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। शुक्र है कि आज शुक्रवार है। ढेर सारे श्रोता साथी जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग आनंद जी, सुप्रभात, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप आते हैं तो बाहर आती है, आपके गाने हमारे मन को और भी खुशियों से भर देते हैं। गुड मॉर्निंग जी, मेरा नाम प्रियांशु यादव है और इस वक्त मैं बसंत बिहार से बात कर रहा हूँ, मुरादाबाद के। अरे वाह, क्या बात है प्रियांशु जी, थैंक यू सो मच आपके इस खूबसूरत संदेश के लिए। साथ में हमारे पास शेफाली जी का संदेश पहुंचा है, ये लिखती है गुड मॉर्निंग आनंद जी, गुड मॉर्निंग मैम। एक मैसेज और आ गया है पल्लवी जी का, ये लिखती है आनंद जी सुबह सुबह मौसम बहुत ही औसम है और इस औसम वाले मौसम में हम तो गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं और आपके प्रोग्राम का आनंद उठा रहे हैं। आनंद जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच पल्लवी जी। एंड जुल्फी भाई जुड़ गए हैं, लिखते हैं कि देखिए जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे जैसे आप प्यार करोगे जिंदगी आपको वैसे ही तोहफे देगी, आप जैसी जिंदगी से उम्मीदें रखोगे जिंदगी आपको वैसे ही रिजल्ट देगी। बिल्कुल, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, आप जैसे लाइफ को मैनिफेस्ट करते हो ना, आपको लाइफ वैसे ही रिजल्ट देती है। तो इसीलिए अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, क्रॉस योर फिंगर, आज की सुबह आपके लिए है। आपकी मॉर्निंग जो सुपर डुपर अमेजिंग होगी वो सिर्फ आपकी वाइब से होगी, है ना। तो अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स दीजिए, अच्छा सोचिए और दिल से दिल तक जुड़िए। सबके बारे में जब हम अच्छा सोचते हैं ना, तो यकीन मानिए ऊपर वाला जो अल्लाह वाहेगुरु खुदा है, भगवान ईश्वर है, वो सब वो हमारे लिए, हम सभी के लिए तो अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो हमारे लिए और भी पहले अच्छा सोचते हैं ना। वो उनके बहुत ही करीबी होते हैं जो दूसरों के लिए फरिश्तों का काम करते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं। श्रोताओं, हमारी भी बस आपसे यही कोशिश होती है कि आप अच्छा सोचिए, जिंदगी में अच्छा होगा। चलिए एक छोटे से प्रोग्राम की ओर आपको लेकर चलूंगा, इस प्रोग्राम के बाद हम पुनः आपसे मिलेंगे। और आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं गोंडा शहर के अंदर, वहाँ की कौन सी प्रसिद्ध, वहाँ का फेमस फूड है जिसको खाकर आप भी मतलब खो जाएंगे, बॉस मतलब मन जो है प्रफुल्लित हो जाएगा। तो ज़रा आपको गोंडा की गलियों में लेकर चलते हैं, अपने उत्तर प्रदेश की गोंडा शहर में, और वहाँ पर क्या फेमस है चलिए आपको सुनवाते हैं इस प्रोग्राम के जरिए। ज़रा सी देर में मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। आप हैं आनंद के साथ गुड मॉर्निंग। हेलो जी, नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त
1: प्राची।
0: यस, और प्राची आज हम पता है किस चीज की बात करने वाले हैं?
1: हाँ, किस चीज की बताइए?
0: आज हम बात करने वाले हैं गोंडा के दही बड़े और खस्ता कचौड़ी की।
1: अरे वाह, तो शुरू करते हैं जल्दी से।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं गोंडा की गलियों में, जहाँ की हर सुबह उम्मीद लेकर आती है, जहाँ की परंपराएं आज भी दिलों में बसती है, जहाँ स्वाद में संस्कृति है और विकास में एक नई पहचान, जहाँ छोटे छोटे हुनर बन रहे हैं बड़े सपनों की उड़ान। ये है नया उत्तर प्रदेश, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की उन कहानियों से जो सिर्फ विकास का नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा, स्वाद और आत्मनिर्भरता की मिसाल है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने भीतर एक अलग रंग, एक अलग खुशबू और एक अलग पहचान समेटे हुए है। कहीं चिकनकारी, कहीं बनारसी साड़ी, कहीं पेड़ा, कहीं इत्र और कहीं ऐसा स्वाद जो बरसों तक रह जाए याद।
0: और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे ही जिले में जहां की सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म खुशबू से, जहां गलियों में स्वाद बसता है और जहां हर निवाला अपने पन का एहसास देता है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज का एहसास हमारा खास पड़ाव है गोंडा, और आज यहाँ बात होगी यहाँ के मशहूर दही बड़े और खस्ता कचौड़ी, जो अब एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के जरिए एक नई पहचान हासिल कर रहे हैं।
0: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ गोंडा की गलियों तक सीमित था, आज वह स्वाद पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपनी खुशबू फैला रहा है, क्योंकि ये है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त, हल्की हल्की ठंडी, सड़क के किनारे दुकान से उठती देसी घी की खुशबू और कढ़ाई में छनती हुई खस्ता कचौड़ी
1: और सामने बड़ी सी भगौड़ी में रखा मुलायम दही बड़े, ऊपर से ठंडा ठंडा दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक।
0: अरे बस बस, सुनते मुँह में जैसे पानी ही आ गया है।
1: दोस्तों गोंडा का दही बड़ा सिर्फ एक व्यंजन ही नहीं बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी की चान है। किसी के घर मेहमान आए हो, कोई त्योहार हो, शादी हो या फिर शाम की छोटी सी दावत, दही बड़े हर खुशी का हिस्सा बन जाते हैं।
0: यह दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद ही खास होती है। उड़द की दाल को घंटों तक भिगोया जाता है, फिर उसे बारीक पीस कर फेटा जाता है ताकि बड़ा एकदम मुलायम बने।
1: और कई दुकानदार तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की हल्की स्टफिंग भी करते हैं ताकि स्वाद में आपका रॉयल टच बना रहे।
0: और फिर बड़े को सुनहरा होने तक तला जाता है और बाद में ताजी मलाईदार दही में डुबो दिया जाता है।
1: ऊपर से मीठी इमली की चटनी, हरा धनिया की चटनी, भुना जीरा, चाट मसाला और अनार के दाने।
0: वाह वाह, सच कहें तो जैसे गोंडा के दही बड़े सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल जीत लेते हैं।
2: ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना ODOC आपके गोंडा जिला में दही बड़ा और कचौड़ी का चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
3: नमस्कार, हमें इस पता लगा कि हमारे दही बड़े का चयन गोंडा जिला के अंतर्गत और कचौड़ी का चयन हमारे गोंडा जिला के अंतर्गत ODOC योजना में चयन हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। और इसके बारे में यही कहा जाएगा, जहाँ तक हमको जो जानकारी मिली है, प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जो छोटे व्यापारियों को, मझोले व्यापारियों को, जो जिला स्तर पर अच्छा खाद्य पदार्थ बनाते थे उनको सम्मान मिला है, उनको प्रोत्साहित करने की योजना है।
2: सही बताइए, इस योजना से आपको व इस व्यापार के लोगों को, जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा?
3: इस योजना से हमें तो बहुत लाभ होगा और हमारे साथ जो व्यापार में, इस व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लाभ होगा, जिससे कि ये कल्याणकारी योजना है, छोटे व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजना है। और इससे जुड़े हर जिले में जो अहम खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य आइटम, मशहूर खाद्य पदार्थ है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग, मतलब जो भी सरकार से हर तरीके का, हर संभव मदद मिलती है, लोगों संबंधी हो या हर तरीके का, सरकार उसमें मदद कर रही है। और छोटे व्यापारियों को जो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे उनको प्रोत्साहित करके फ्रंट पर ला रही है।
1: और अब बात करते हैं गोंडा की दूसरी पहचान, खस्ता कचौड़ी की।
0: दोस्तों गोंडा पर अवध संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है और अवध की रसोई हमेशा से अपने नसाफत से भरे स्वाद और मसालों के लिए मशहूर रही है।
1: यही वजह है कि यहाँ की कचौड़ी भी साधारण नहीं बल्कि बेहद खास होती है।
0: इसकी भराई में उड़द दाल, हींग, धनिया, सौंफ, काली मिर्च और कई देसी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है
1: और फिर इसे धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार ना हो जाए।
0: गोंडा में सुबह सुबह दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और ये एक आम बात है, कोई चाय के साथ कचौड़ी खा रहा है तो कोई दोस्तों के संग नाश्ते का आनंद ले रहा है।
1: और सबसे मजेदार बात, यहाँ कचौड़ी सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है।
0: दोस्तों गोंडा में लगभग 100 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयों में 400 से अधिक कारीगर इस कारोबार से जुड़े हैं।
1: यानी ये स्वाद सिर्फ लोगों की पसंद नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी भी है।
0: और अब बात उस पहल की जिसने गोंडा के इन पारंपरिक स्वादों को एक नई पहचान दी है।
1: जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना।
0: क्या बात है, इस योजना का उद्देश्य है हर जिले की खास पहचान को आगे बढ़ाना, स्थानीय हुनर को मंच देना और छोटी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाना।
1: गोंडा की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी को भी इसी योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
0: सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सपोर्ट और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: यानी जूस स्वाद पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, अब वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़े बाजारों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार स्थानीय कारोबार, पारंपरिक व्यंजन और छोटे उद्यमी को प्रोत्साहित कर रही है
1: और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। गाँव और कस्बों के लोग अब अपने हुनर से नई पहचान बना रहे हैं।
0: दोस्तों, किसी भी प्रदेश की असली पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं होती,
1: बल्कि वहाँ के लोगों, उनकी मेहनत, उनकी संस्कृति और उनके स्वाद से होती है।
0: गोंडा का दही बड़ा और खस्ता कचौड़ी इसी की पहचान का हिस्सा है। श्रोताओं,
1: एक ऐसा स्वाद जो परंपरा से जुड़ा है और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: बढ़ती लागत, साफ सफाई बनाए रखना, कम सेल्फ लाइफ और कुशल कारीगरों की कमी,
1: लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार इन चुनौतियों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं।
0: नई तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट के जरिए छोटे व्यापारियों को मजबूत बनाया जा रहा है,
1: ताकि गोंडा का स्वाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी खास पहचान बना सके।
0: अगर अभी हमारे सामने गर्मा गर्म कचौड़ी आ जाए ना, तो मैं इंटरव्यू छोड़कर सीधा प्लेट पकड़ लूंगा।
1: और अगर साथ में दही बड़ी भी मिल जाए
0: तो भाई फिर शो खत्म होने तक कोई बात ही नहीं करेगा, सिर्फ खाने की आवाज आएंगी।
1: दोस्तों, अगर आप कभी गोंडा जाए वहाँ की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी का स्वाद जरूर लें।
0: और अगर आपने पहले से खाया है तो हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया,
1: क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने की चीज नहीं, यादों का भी हिस्सा होता है।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे गोंडा का पारंपरिक स्वाद आज विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है,
1: कैसे छोटे कारोबार बड़े सपनों में बदल रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश का हर जिला अपनी नई पहचान बना रहा है।
0: हम फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और जिले की नई कहानी के साथ, नए स्वाद के साथ और नई संस्कृति और नए विकास के साथ। तब तक सुनते रहिए विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, मैं आनंद और मेरे साथ
1: प्राची,
0: जल्दी आपको मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।
1: बाय बाय।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
5: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
6: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
5: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
7: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
8: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

ये बात सुनो, हम भी कब तक चुप बैठेंगे यार, और आप मेरे साथ ऐसे चुप नहीं बैठ सकते क्योंकि यहाँ पर बातें वही होती है जो आपका दिल चाहता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप आनंद के साथ हैं, सुन रहे हैं आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर आप आए हैं तो आपको बोलना ही पड़ेगा आप उनके साथ। एग्जैक्टली तो भैया, आपको अपनी हाजिरी लगानी मेरे प्रोग्राम में, आप मुझे संदेश पहुँचाइए 9837896896 पर। ये स्टूडियो को व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के जरिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज की सुबह ढेर सारे श्रोता जुड़ चुके हैं हमारे साथ आज स्टेशन ऑफ द नेशन पे, लेकिन उससे पहले आइए बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। आज 12 जून है, शुक्रवार का दिन है, शुक्र है कि शुक्रवार है। शुक्राना कीजिए उन आसपास के लोगों का जो आपकी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। दोस्तों आज 12 जून देखिए बहुत ही स्पेशल है। 12 जून का दिन भारतीय और विश्व इतिहास में एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज का दिन क्यों खास है, श्रोताओं आपको बताते चले, महाराजा सूरजमल ने आज एक दिन मुगलों को हराकर आगरा के किले पर कब्जा और फगवा ध्वज जो है वो फहराया था सन 1761 में आज ही के दिन। और आज ही के दिन फिलीपींस ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी सन 1898 में आज ही के दिन। श्रोताओं रूस ने सांसद ने अपने औपचारिक रूप से अपनी सुप्रभुता की घोषणा की सन 1980 में। और आज ही के दिन बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा पहली बार विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया। श्रोताओं आज ही के दिन

और आपको बता दें 1964 में आज के दिन बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध संगीतकार और गायक प्रीतम चक्रवर्ती जी का जन्म हुआ। श्रोताओं आज के दिन तो देखिए ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने क्विकली आपके साथ साझा करी हैं आज के दिन के बारे में। क्या कुछ स्पेशल है आज की तारीख में, क्या स्पेशलिटी है, वही हम आपको बता रहे हैं। श्रोताओं आज के दिन से जुड़ी तमाम बातें आपके साथ साझा कर रहे हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आपको बता दें सन 2016 में साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जो है आज के दिन जीता था। श्रोताओं और बाकी आज के दिन और भी तमाम सारे श्रोता हैं जिनका जन्मदिन हम सेलिब्रेट करते हैं, उनके बारे में डेफिनेटली आपको बताएंगे थोड़ी सी देर के बाद। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, टीके रहिए, सुनते रहिए आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो दिस इज बिंदास मॉर्निंग। आज सुपरमैन डे मनाया जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर मैं बात करूं आज के दिन से जुड़ी तो आज नेशनल इंटरनेशनल में आज नेशनल रेड रोज डे सेलिब्रेट किया जाता है। यस, आज 12 जून को रेड रोज डे मनाया जाता है। इसके अलावा आज सुपरमैन डे भी मनाया जाता है। तो अगर एक दिन के लिए आपको कोई सुपर पावर मिल जाए तो आप उस सुपर पावर का क्या करोगे? अगर एक दिन के लिए आपको सुपरमैन की वो शक्तियाँ मिल जाएँ, वो सिद्धियाँ मिल जाएँ जिससे आप कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन चाहे, तो आप अगर एक दिन के लिए आपको सुपर पावर मिल गई, सुपर एनर्जी मिल गई, सुपर शक्ति आपको मिल गई, तो आप क्या करना चाहोगे, क्या चेंज करोगे, क्या कुछ बदलोगे? प्लीज जरूर बताइएगा 9837896896 पर। मुझे एक दिन के लिए सुपर पावर मिल जाए ना, तो मैं जितने भी लिसनर मेरे साथ जुड़े हैं सबके घर जा के बैठूंगा थोड़ी देर के लिए, देखूंगा कौन कैसे रेडियो सुनता है। कोई मोबाइल पे सुनता है, कोई अपने ब्लूटूथ स्पीकर पे सुनता है, कोई रेडियो पे सुनता है, तो कोई अपने ईयरबड्स लगा के कानों में सुनता है ना। अजी मुझे पता है 9 बजने को है स्टूडियो क्लॉक में और ऐसे ही आप आनंद का साथ देते रहेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत अभिनंदन रहेगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। मैंने आपको देखिए नंबर बता दिया है और अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर आपने सुपरमैन की पावर ले ली तो आप क्या करना चाहोगे, ये मुझे आप बताओगे यार। बाहर बारिश हो रही है और ऐसे में ये वाला गाना कुछ अलग ही फील देगा।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
7: अपोजिट
5: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
7: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
8: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
9: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
1: बिल्कुल जी, ये वही स्टेशन ऑफ द नेशन है जहां आप आनंद के साथ जुड़ते हैं और बातें होती हैं दिल से दिल तक। और देखिए, ये 9 बजे के आर की शुरुआत होगी, मतलब पता नहीं चल रहा है यार कैसे, मतलब इतनी जल्दी ये टाइम निकल जाता है, सच बता रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है। तो घड़ी ना मेरे साथ धोखेबाजी करते हैं, बता रहा हूँ आपको। वेल, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, देश दुनिया में क्या चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं आज के वेदर के बारे में। एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। फिलहाल स्टूडियो स्टेशन में वक्त हो गया है 9:05। वेदर की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, यानी कि अभी बारिशों की छमछम जो है झमझम वो आपको देखने को मिलने वाली है। और आज का जो वेदर है बहुत ही फैंटास्टिक दिखा रहा है पाजी, एंड आज बारिश जो है पूरा दिन आपको हल्की फुल्की मिलती रहेगी। और ये जो टेम्परेचर है 25 डिग्री तक पहुंच सकता है, 27 है। बात करें हवा की तो 8 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं। ह्यूमिडिटी 88% दिखा रहा है, यानी कि 88%, यानी कि ठीक ठाक है आज का। एयर क्वालिटी थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है क्योंकि बारिश के बाद जो है अब मौसम थोड़ा ग्रीन वाला हो गया, यानी कि हरा भरा हो गया है, शुद्ध वातावरण हो गया है। तो चारों तरफ अब आपको एयर क्वालिटी बहुत ही शुद्ध मिलने वाली है। अब ऐसी शुद्ध एयर क्वालिटी में आप एक कप चाय पी सकते हैं बाहर खड़े होके। अगर बात करें विजिबिलिटी की तो 5 किलोमीटर दिखा रहे हैं पाजी, वहीं फील लाइक 33 और वेदर एब्सोल्युटली ऑसम है। तो इस ऑसम वाले मौसम में आप जहां भी जा रहे हैं आपको ऑल द वे बेस्ट। आनंद के साथ अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, मतलब जुड़ना चाहते हैं, अपने हाल चाल मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या करना है बॉस, आपको मेरे को मैसेज करने का। अभी आगे बढ़ते हैं और आपको आसपास की चीजें बताते हैं क्या चल रहा है आसपास में। आपको बताते भी उत्तराखंड की समृद्धि लोक संस्कृति परंपराओं का जो है परंपराओं का विरासत और भव्य उत्सव इस वर्ष जारी होगा। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से सजने जा रहा है। ये 25 अगस्त से लेकर 14 सितंबर 2026 तक रोहिणी सेक्टर 16 में रामलीला मैदान में एक बहुत ही स्पेशल एक फेस्टिवल होने वाला है। इस मैदान में आयोजित होने वाला उत्तराखंड लोक महोत्सव 2026 उत्तराखंड की संस्कृत पहचान और राष्ट्रीय को मंच पर प्रस्तुत करेगी। एंड इसकी संस्कृति आयोजक जो है, मतलब इसमें जो इसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जो इसमें साथ दे रहे हैं, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल इनके पार्टनर। एंड आई एम श्योर ये जो उत्तराखंड का एक बहुत ही बढ़िया फेस्टिव होने वाला है, मतलब आई एम सुपर हैप्पी है बिकॉज उत्तराखंड अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत वाइब है यार, है ना। सो ये 25 अगस्त से 14 सितंबर तक चलने वाला है। एंड ऑफकोर्स अगर आप उत्तराखंडी हैं, आप उत्तराखंड से प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली आप तो ज़रूर इस लोक महोत्सव का आनंद उठाएंगे, लोक महोत्सव 2026। और आगे बढ़ते हैं, एंड मुझे लगता है यार अपने आप में हर एक शहर की, हर एक राज्य की, हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक पहचान है, खूबसूरत है यार, है ना। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं भाई साहब एक और खास बात जो बहुत ज़रूरी है आपको बतानी, अगर नहीं बताई तो दिक्कत हो जाएगी। आज के सोशल मीडिया पे भी बड़ी सारी चीज़ें जो है चली रही हैं बॉस, कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है। कभी कोई किसी चीज़ को लेकर सुर्खियों में आता है, कभी कोई किसी चीज़ को लेकर सुर्खियों में आता है, और अगली कौन सी खबर आपको या मुझे सुर्खियों में लाते हैं आई डोंट नो। इसीलिए ना भाई अपना ख्याल

रखना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, लेकिन सोच समझ के ना, कोई भी चीज को हमें ऐसे नहीं करना है कि बाद में वो हमें दिक्कत दे। अच्छा, अगर आप अपने फोन को चार्ज करने के लिए चार्जर ओरिजिनल इस्तेमाल नहीं करते हैं, लोकल चार्जर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको दिक्कत में डाल सकता है बॉस। कैसे बताऊंगा अभी आपको। और अगर आप 20 मिनट्स योग करते हैं तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, इस पे बात करेंगे। और अमेरिका में भारतीय मैंगो का जादू चल रहा है बॉस, कैसे इस पे भी चर्चा करेंगे अभी थोड़ी सी देर में, लौट कर आएंगे। तो बाकी आपसे कहना चाहता हूँ मैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज आप मुझे मैसेज कीजिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर बहुत सिंपल है, 9837896896। स्टूडियो का नंबर बहुत ही सिंपल है,

चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं और मौसम विभाग की तरफ से एक अपडेट यह है कि भैया अगले दो दिन तक तो बताया जा रहा है कि मौसम थोड़ा सा गड़बड़ रहने वाला है। अब देखते हैं कितना गड़बड़ होगा कितना नहीं। वेल अभी तो मौसम बहुत ही ऑसम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही अच्छा मौसम है यार इस टाइम पे। तो जो अभी वेदर चल रहा है ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है ना। बाकी अभी इतना ही कहना चाहते हैं कि भैया आप जहाँ भी जा रहे हैं बस आरजे आनंद को सुनते जाइए, और अगर आप भी मेरे साथ हमारे आज के सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए। आज सुपरमैन डे मनाया जाता है, वही आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर एक दिन के लिए आपको सुपरमैन की सारी शक्तियाँ मिल जाए, वो पावर मिल जाए, तो आप क्या करना चाहोगे, आप कहाँ जाना चाहोगे उन शक्तियों को लेकर, उन पावर को लेकर, आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हो 9837896896। स्टूडियो का नंबर बहुत सिंपल है, इस नंबर पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये है फ्राइडे की सुबह, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक, और हम सब कहते हैं दिल से जियो बिंदास।

अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: गीतांजलि पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं। दोबारा शादी मत करना।
1: क्या सॉन्ग है यार, सच बहुत ही ब्यूटीफुल गाना भी आप एंजॉय कर रहे थे। अरिजीत सिंह की ब्यूटीफुल आवाज, सतरंगा इश्क, आई लव दिस ट्रैक फ्रॉम द फिल्म एनिमल। गुड मॉर्निंग जी, मुझे भी आपसे इश्क हो गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, इतनी प्यारी बातें आप लोग करते हो, इतने फैबुलस मैसेज पहुंचाते हो ना यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने अल्टीमेट मैसेजेस आते हैं आपके, आउटस्टैंडिंग यार, थैंक यू सो मच, सच ब्रिलियंट पीपल यार, थैंक यू वेरी मच इतने अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल मैसेजेस के लिए, थैंक यू सो मच एवरीबडी। आगे बढ़ते हैं, यह है फ्राइडे की सुबह, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। चलो यार, अभी एक्चुअली ना काम की बात करते हैं फटाफट से। मैंने जो आपसे मैसेज किया था कि आज सुपरमैन डे सेलिब्रेट किया जाता है, कि आपको एक दिन के लिए सुपरमैन बनना हो, आपको सुपरमैन वाली वो सारी यू नो शक्तियां मिल जाएं, सारी सुप्रीम वाली वो सुपरमैन वाली पावर मिल जाएं, तो आप क्या करना चाहोगे, प्लीज टेल अस। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ढेर सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं। गुड मॉर्निंग, भावना मेरे साथ जुड़ चुकी है नैनीताल से, लिखती है, आसमान जितना बड़ा है आपकी पहचान उससे भी बड़ी हो, एंड ओ माय गॉड क्या बात है, हर फ्रीक्वेंसी पर बस आपका नाम गुजे आरजे आनंद, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, हाउ आर यू, आई एम एब्सोल्युटली गुड मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। एंड ये लिखती है, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, अगर सर ये सुप्रीम पावर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। वैसे सुप्रीम पावर सबके अंदर होती है, सुपरमैन की पावर सबके अंदर होती है, सुपर वुमेन्स की पावर सबके अंदर होती है, जरूरत है अपने आप को पहचानने की और तलाशने की, क्या बात है, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच यार। आगे बढ़ते हैं, विकी सागर मेरे साथ जुड़े हैं हिमगिरी हरथला कॉलोनी से, लिखते हैं, रेडियो वाला आनंद जी गुड मॉर्निंग, मौसम बहुत ही ऑसम हो रहा है, एब्सोल्युटली यार, अगर आप लोग अपनी ऑटो में निकल चुके हैं, जो लोग ऑटो चालक हैं, जो लोग ऑटो ड्राइवर हैं, वो भी हमें सुनते हैं, तो भैया उनको भी बिग सैल्यूट यार, सुबह सुबह निकल जाते हो, बिग शाउट आउट भाई साहब, मानना पड़ेगा यार, मतलब पब्लिक को इधर से उधर पहुंचाना, इट्स नॉट इजी बॉस, नॉट इजी जॉब यार। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ललिता कश्यप जी की, ये भी हमारी बड़ी प्यारी लिसनर है, लिखती है, गुड वाली मॉर्निंग, कैसे हैं आप, और आपकी आवाज और अंदाज बहुत ही प्यारा है, अच्छा जी, थैंक यू सो मच। और आगे लिखती है, आज का मौसम बहुत ही ऑसम हो रहा है, एंड ये लिखती है, आपके गाने और बातें दोनों ही बड़ी प्यारी होती है, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम। दुर्गेश जी कल्याणपुर से जुड़ गए मेरे साथ, एंड सहारनपुर से हमारे प्यारे रेगुलर लिसनर जुड़ गए, जोन रोजी पलवलीस, लिखते हैं, आज कल लोग सही के साथ खड़े नहीं होते, बल्कि वो ये देखते हैं कि किसका पक्ष बनाकर रखने में फायदा होगा। गॉट इट, अग्री विद यू, पर यार मेरे जैसे लोग भी अच्छे हैं यार, ऐसा नहीं है, आप जैसे मुझ जैसे अच्छे लोग भी हैं, जिनकी वजह से दुनिया आज भी कायम है। जिंदगी की हर उलझन का एक ही हल है, वक्त को गुजरने दो, खुद पर भरोसा रखो। गुड मॉर्निंग आनंद, मेरा नाम है जोन रोजी पलवलीस विद माय फैमिली, गुड मॉर्निंग, हाय सहारनपुर से बात कर रहे हैं, एंड लिखते हैं, हैप्पी फ्राइडे मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ब्लेस आनंद, बी सेफ, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग, हाय दिस इज मी पवन मौर्य, हाय पवन एंड मनप्रीत मेरे साथ जुड़े हैं, हाय आनंद, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम गुड यार, एक मैसेज आ गया है, आनंद भाई कैसे हालचाल है, ये मासूम जी मेरे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। एंड एक प्रियंका का मैसेज आया है, आनंद गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। एंड मोहसिन अंसारी मेरे साथ जुड़ गए हैं आज की सुबह, इन्होंने भी मेरे को मैसेज किया है, गुड मॉर्निंग। साथ में रिहाना मेरे साथ जुड़ी है, रश्मिका का मैसेज आया है, अगर एक दिन के लिए सुपर पावर मिल जाएगी तो मैं ऑफिस उड़ के पहुंचूंगी आनंद, क्योंकि मैं पेट्रोल के पैसे बचा लूंगी, वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह वाह। एक और मेरे पास मैसेज आया है राहुल का, राहुल लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आनंद जी, मैं पूरी दुनिया घूमने जाऊंगा और शाम तक अपने घर वापस आ जाऊंगा, अगर मुझे ये पावर मिल गई तो मैं इस पावर को ऐसे यूटिलाइज करूंगा, ओह माय गॉड। एक मैसेज मेरे पास आया है, गुड मॉर्निंग, हाय कैसे हालचाल है, गुड मॉर्निंग, इन्होंने अपना नाम लिखा है साइमा, हाय साइमा गुड मॉर्निंग, साइमा लिखती है, आनंद फर्स्ट टाइम आपको सुन रही हूँ, इस वक्त मैं दिल्ली रोड पे हूँ और अपने ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, ओके। एंड ये लिखती है, आनंद जी अगर मुझे एक दिन के लिए सुपरमैन की शक्तियाँ मिल जाए तो मैं ट्रैफिक जाम के ऊपर जो है उड़कर निकल जाऊंगी, क्योंकि यार दिल्ली रोड पे बहुत जाम मिलता है। आई अंडरस्टैंड मैम, समझ सकता हूँ मैं आपका दुख और तकलीफ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। एक मैसेज और आया है, हाय गुड मॉर्निंग जी, अगर मुझे ये सुपरमैन की शक्तियाँ पावर मिल जाए तो मैं हर जरूरतमंद की हेल्प करूंगा, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का जो है मैं वादा करूंगा, खुद से कोशिश भी करूंगा, थैंक यू सो मच। हेलो जी गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रीतम है, हाय प्रीतम गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। ये गायत्री नगर से मैसेज आया मेरे पास, एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग जी कैसे हालचाल है, दिस इज मी सोनालिका, हाय गुड मॉर्निंग, ये मुझे लिखती है कि बिजली का बिल आते ही ना भाई साहब मेरे तोते उड़ जाते हैं, तो इसीलिए मैं तो सबसे पहले अगर मुझे सुपर पावर मिल गई तो मैं बिजली विभाग पहुंच जाऊंगी और वहां जाके खुद ही काउंटर पे बैठ जाऊंगी और सबके बिल सस्ते कर दूंगी। ओ भाई मुझे मारो। क्या ही हो रहा है। वेल गाइस, अगर आपको एक दिन के लिए सुपर पावर मिल जाए, आज सुपरमैन डे मनाया जाता है। सुपरमैन एक्चुअली वो होते हैं जो यू नो रियल लाइफ हीरो होते हैं। दिस इज द सुपरमैन, है ना, जो लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, यू नो, जो जिनकी सोच थोड़ी, जिनकी मेंटल जो मेंटालिटी है ना थोड़ी अलग होती है, जो मेंटल पीस है, दिस इज वेरी डिफरेंट। एंड एक्चुअली सुपरमैन तो यार देखो, हर इंसान सुपरमैन है अपने आप में, है ना। अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अगर वो अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, हमारे लेडीज के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, तो मतलब इज अ सुपरमैन। बट मैं आपको पूछ रहा हूँ कि सुपरमैन की आपको वो पावर, वो शक्तियाँ, वो आपको एक यू नो एक दिन के लिए उनका सुप्रीम वाली शक्तियाँ आपको मिल जाए, तो आप सुपरमैन वाली पावर को लेकर कहाँ जाना चाहोगे, क्या करना चाहोगे, आपको क्या लगता है? व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन टेल मी 9837896896। प्लीज टेल अस, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896 पर। इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टूडियो क्लॉक में वक्त हो गया है 9:23, लेकिन इस गाने से पहले कुछ एड ब्रेक आ रहे हैं, उसके बाद मैं वापस आता हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप जुड़े रहिए आनंद के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
2: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
3: क्या मेरी कसम,
2: मिस कर दिया तो रीलोड।
4: चाय चाय चाय,
2: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
7: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
8: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
7: पर पापा।
8: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
6: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
9: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
10: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
11: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
12: कॉल 8826213131।
13: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
14: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
13: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

क्या बात है यार, ऐसे गाने सुन के मजा आ जाता है। गुड न्यूज फिल्म से भी आपने एंजॉय किया, सौदा खरा खरा, बल्ले बल्ले यार। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आरजे आनंद के साथ, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं और स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:29। स्टूडियो की घड़ी जो है बहुत तेजी से भाग रही है। अब देखो यार, ये जो राजस्थान है ना, वहाँ पर जयपुर में एक बड़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। मैं आपको बताता हूँ, मतलब मेरा सिर्फ ये मोटो है बताने का कि देखो आसपास में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं बट हमें पता नहीं होता है। तो आपको बता दें देश दुनिया में क्या चल रहा है। फिलहाल राजस्थान के जयपुर में मुफ्त में जो है वहाँ पर जूस, छाछ और फलहार जो है वो नगर निगम की ओर से वहाँ पर पूरे शहर में जो है एक मतलब सेवा अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ पर यू नो ये बहुत सारी चीज़ें बांटने का इनिशिएटिव लिया है। और ऐसे इनिशिएटिव अपने मुरादाबाद में भी ढेर सारे होते हैं। अलग अलग चौराहों पर लोग जो है काफ़ी यू नो मतलब एक्टिव रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है लोग अपना 100% देते हैं। मैंने देखा है मुरादाबादी काफ़ी एक्टिव हैं इस बात में, नो डाउट यार। और अभी हम बैंकों के बारे में बात करें तो आपको बता दें भैया, भारतीय आमों का स्वाद अब अमेरिका में भी लोगों को दीवाना बना रहा है। हाँ जी, सिटल में आयोजित मैंगो मैजिक कार्यक्रम में भारतीय आमों को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जबकि कोस्टो में जो है आम का पूरा स्टॉक महज 2 घंटे में ही बिक गया। एंड आपको बताते चले, यहाँ पर बढ़ती मांग भारतीय आम उत्पादक और यू नो लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि देखिए भाई साहब, मैंगो का असर जो है अमेरिका के लोगों पर भी छा गया है। हाँ जी, वहाँ पर एक यू नो फेस्टिवल हो रहा था मैंगो का, जिसके हमारे इंडियन आम जो है भैया एकदम मैजिक छा गया, एकदम मैजिक की तरह छा गया। वहाँ की जो लोग थे उनके लिए मैंगो बहुत ही बढ़िया हो गया वहाँ का। अपना उत्तर प्रदेश का दशहरी आम बहुत पॉपुलर है, गुजरात का राजापुरी आम, आंध्र प्रदेश का बंगपल्ली एंड लगरा उत्तर प्रदेश का आम है, केसर महाराष्ट्र का आम है। ऐसे और भी तमाम सारे मैंगो हैं जो वहाँ पर रहे और वो लोगों को जो है दीवाना करके चले गए। 2 घंटे के अंदर सारे मैंगो जो है खत्म हो गए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। देखिए आम जो है, हम कहते हैं ना, आम से हमारी बहुत सारी मेमोरी जुड़ी है यार, मैंगो से बहुत सारी मेमोरी जुड़ी है हम सभी की। और अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर पहले मैं आपको ये कह रहा था कि अगर आप ओरिजिनल चार्जर से अपना फ़ोन चार्ज नहीं करते हैं, नकली चार्जर से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अगर पता नहीं है तो ये आपको दिक्कत दे सकता है बॉस। देखिए नकली चार्जर खतरनाक होता है, एक तो फ़ोन ओवरहीट हो सकता है, बैटरी जल्दी ख़राब हो सकती है, शॉर्ट स्टिक का खतरा होता है ना, एंड साथ ही साथ आग लगने या ब्लास्ट होने की भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सस्ता चार्जर बिल्कुल नहीं लेना है आपने। पैकेजिंग और अच्छी पहचान के साथ ही अच्छा ओरिजिनल चार्जर लें, जो साफ और मजबूत पैकेजिंग के साथ हो, उस पर कंपनी के लोगो स्पष्ट हो एंड मतलब यू नो मॉडल नंबर सही हो, धुंधली प्रिंटिंग ना हो, स्पेलिंग बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो, खराब पैकेजिंग ना हो। नकली के ये संकेत होते हैं, अगर उसकी खराब पैकेजिंग है, थोड़ा धुंधला लग रहा है आपको यू नो एंड उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, स्पेलिंग्स में कुछ मिस्टेक है, तो आई थिंक इट्स नॉट ओरिजिनल चार्जर। तो अगर आप अपने फ़ोन को ओरिजिनल चार्जर देंगे तो बढ़िया होगा, है ना। चार्जिंग के दौरान ज़्यादा फ़ोन अगर गर्म हो रहा है तो भैया आपने क्या करना है ना, सबसे पहले तो फ़ोन लगाकर आपको बात नहीं करनी है, ना ही आपने फ़ोन चलाना है चार्जिंग पे लगा के, ये आपने अवॉइड करना है। कोशिश कीजिए कि भैया अपने फ़ोन को वो जो आप कवर लगा के रखते हैं वो बाहर निकाल के ही चार्जिंग लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर चार्जर या फ़ोन से ज़्यादा ज़रूरत आपका यू नो आपको लग रहा है कि भैया बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है चार्जर और फ़ोन दोनों ही, तो आप थोड़ी देर के लिए उनको निकाल के भी रखते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अक्सर छोटी छोटी चीज़ें हम अवॉइड कर देते हैं और ये चीज़ें फिर आगे चल के दिक्कत हो जाती है। फिलहाल आनंद के साथ जुड़े हुए हैं आप इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। बच्चा अगर आपका बार बार मांगता है मीठा तो इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या संकेत है, इस पे अभी बात करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ स्टूडियो क्लॉक में 9:33। एक तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो मैसेज कर रहे हो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अभी आपके मैसेज डेफिनेटली शामिल होंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896 पर। अभी लौट कर आता हूँ, आपके संदेश पढ़ूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और बेहतरीन गाना निकाल दिया है मैंने आपके लिए, इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा ट्रैक, ये जो गाना है ये दिलजीत दोसांझ की आवाज में है, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। फ्राइडे की सुबह है, वीकेंड मॉर्निंग है,

0: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 दिल से कहिए जियो बिंदास। ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, चलो इस गाने को सुनो, वॉल्यूम बढ़ा के एंजॉय करो।
1: मन हो जांदा

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
6: अपोजिट
5: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

सीधे पॉइंट पे तो मैं आ ही गया हूँ यार, फाइनली वक्त हो गया है 9:42। आप सुन रहे हैं आनंद को, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू वेरी मच, इतने प्यारे प्यारे संदेश आप पहुंचाते हैं उसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने ब्यूटीफुल मैसेज करने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। यह है बिंदास मॉर्निंग, आपका मॉर्निंग मैगजीन शो। एंड अभी फिलहाल आपके मैसेज के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मेरे पास मैसेज पहुंचे हैं ढेर सारे। गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हाल चाल है? अभी जो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मोबाइल के बारे में आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो बहुत ही अच्छी थी। थैंक यू सो मच इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये बबली, गीता कश्यप, बीबी राधिका हमारे साथ जुड़े हैं एंड साथ में हमारे पास मैसेज पहुंच गया है। गुड मॉर्निंग आनंद जी, आपके कैसे हैं? जितनी खूबसूरत ये गुलाबी सुबह है उतनी ही खूबसूरत आपका हर पल हो। जितनी भी खुशियां आज आपके पास हैं उससे ज्यादा आने वाले कल में हो। मुरादाबाद से रणवीर सिंह बात कर रहा हूँ। ओ माय गॉड, ये मुरादाबाद के रणवीर हैं, एक बॉलीवुड के रणवीर हैं। थैंक यू सो मच रणवीर जी। जय माता दी। रेखा शर्मा जी, आपको भी जय माता दी। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ इतनी ब्यूटीफुल बातें शेयर करने के लिए। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग, इनका नाम कुसुम है, इन्होंने लिखा है। आनंद जी देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, आज सुपरमैन के बारे में आपने पूछा था, तो अगर एक दिन के लिए मुझे सुपरमैन की शक्तियाँ मिल जाए, मुझे सुपर पावर मिल जाए, तो मैं तो उड़कर चांद पर जाऊंगी, वहाँ सेल्फी लेकर वापस आ जाऊंगी। ये बहुत ही बढ़िया था पूजा जी, थैंक यू सो मच। एक मैसेज आया है, दुनिया भर में मिठाइयाँ चक्कर वापस आ जाऊंगा। हाय, मेरा नाम दीपक है, कार्ड से मैसेज कर रहा हूँ मैं। ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच दीपक, मुझे लगता है आप ज़्यादा ही स्वीट खाने के शौकीन है। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? साक्षी बात कर रही हूँ लाइन पर, ये क्या लिखा, मंझोली से, और इन मंझोली लाइन पर नहीं है। ओके, ये लिखती है, मैं सबसे पहले अपने मम्मी पापा के सारे सपने पूरे करूंगी, उसके बाद फिर ये सुप्रीम शक्ति वापस कर दूंगी। अरे वाह, वेरी वेरी ऑनेस्ट यार, वेरी ऑनेस्ट। चलो बहुत अच्छा लगा गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया जबरदस्त आंसर्स किए, मजा आ गया। अब जरा बात कर लेते हैं 20 मिनट योग अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। देखिए, शरीर में जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बदलाव होने लगते हैं, और 40 की उम्र के बाद तो बिल्कुल शरीर में बदलाव होने लगते हैं। तो ऐसे में हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, शरीर की जो लचक है वो भी कम होने लगती है, थकान से उबरने में ज़्यादा समय लगता है, मतलब ऐसा लगता है यार थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, तनाव का असर जल्दी महसूस होने लगता है। इनफैक्ट अगर आप लोग सही से अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो और भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। तो भाई साहब, अगर शरीर में गतिविधियां कम हो रही हैं, आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, तो आप योग को अपने दिनचर्या में अपनाएं, बहुत जरूरी है। एंड रोज करें योग, रहें पूरी तरह निरोग। देखिए, अगर आप रोज योग करते हैं 20 मिनट तो आपका शरीर सक्रिय बना रहता है, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो भी आपकी अच्छी खासी मेंटेन रहती है। पूरे दिन आपको सकारात्मक वाइब्स मिलती हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, आपका शरीर काफ़ी एक्टिव रहता है, आपका मन शांत रहता है, ऊर्जा संतुलित बनी रहती है, शरीर की जो गतिशीलता है वो लंबे समय तक बनी रहती है, और चेहरे पर प्राकृतिक चमक और ग्लो भी बढ़ता है अगर आप योग को अपने दिनचर्या में अपनाते हैं। कुछ आसन आप जो है कर सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं या कर सकती हैं आप जो है। इसके अलावा अनुलोम विलोम कर सकते हैं, पूर्ण जो है अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा है। आप ओम चेंटिंग भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है, यह आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है, और सूर्य नमस्कार पूरे शरीर को सक्रिय करने के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया माना जाता है। तो आप इन छोटे छोटे अभ्यास को, इन योग अभ्यास को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, इनको ज़रूर शामिल कीजिए अपने दिनचर्या में, और उसके बाद देखिए कितनी तेज़ी के साथ आपका जो है शरीर आपका साथ देगा और आप बहुत ही फिट एंड फाइन भी फील करेंगे। आपको बता दें, अगर आपका बच्चा बार बार मीठा खाने के लिए आपको अप्रोच करता है, बार बार मीठा मांगता है, छोटे बच्चे, देखिए कभी कभार बच्चे मीठा मांगते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बैक टू बैक उनकी आदत हो गई और आपको लग रहा है कि ये हैबिट ही है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, बिकॉज कई बार ऐसे जो मीठा होता है वो कई बार इसके पीछे पोषण की कमी भी होती है, ख़राब नींद या तनाव, या छोटे बच्चों को भी बहुत सारे स्ट्रेस आपको तो नहीं लगता नहीं होते हैं। एक हमने डॉक्टर से जब बात की थी लास्ट टाइम तो उन्होंने बताया था छोटे बच्चों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वो कह नहीं पाते हैं, वो बात अलग है। बच्चों को देखिए संतुलित आहार दें, पर्याप्त नींद दें, और नियमित बच्चों को छोटी छोटी गतिविधियां कराते रहें, इससे बच्चे का मूड भी बेहतर होगा और उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। और बार बार प्लीज़ मीठा खाने के लिए बच्चों को ना दें, क्योंकि मीठा बच्चों के लिए उनका फेवरेट ज़रूर होता है, लेकिन वो फिर बाद में दिक्कतें भी क्रिएट कर सकता है, इसीलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो, और बातें बहुत सारी होती रहती हैं आपकी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल आप दिल्ली रोड में हैं, या आप हैं कार्ट रोड, या आप हैं स्टेशन रोड, आप जहां भी जा रहे हैं आपको ऑल द वे बेस्ट। आगे बढ़ेंगे, अभी एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं उस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जिसको सुनकर आपने पार्टिसिपेट करना यार मेरे इस शो में। बट उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा मेरे साथ, और अगर आप भी हमें मैसेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए 9837896896। स्टूडियो का नंबर बहुत सिंपल है, इस नंबर पे आप डेफिनेटली अपने संदेश पहुंचा सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का। 9837896896 ये मैजिकल नंबर है, इस नंबर को सेव करिए और अपने प्यारे प्यारे संदेश पहुंचा दीजिए मुझ तक। हम वेट कर रहे हैं आपके मैसेजेस का। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद विद यू, दी है फ्राइडे की सुबह। गुड मॉर्निंग।

0: भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: यार अच्छे तो मुझे भी आप लगते हैं और हम भी आपको अच्छे लगते हैं, आई नो दैट, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास अभी फिलहाल स्टूडियो स्टेशन में। वक्त हो गया है 9:56। एक छोटा सा सवाल आपके दिमाग की बत्ती को नीचे चालू करने के लिए, आपको बस कुछ नहीं करना है, आइडेंटिफाई करना है जो डायलॉग प्ले कर रहा हूँ ये कौन सी फिल्म का है।
1: प्यार दोस्ती है,
0: बताओ जरा।
1: अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। सिंपल, प्यार दोस्ती है।
0: Yes, ये प्यार दोस्ती है, दोस्ती प्यार, प्यार दोस्ती, whatever। आप मुझे बताओ ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है। बाबा मेरे को तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप मुझे बताओ।
1: प्यार दोस्ती है,
0: कौन सी फिल्म का डायलॉग है ये।
1: अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। सिंपल, प्यार दोस्ती है।
0: चलो जी, व्हाट्सएप करो 9837896896, उठाओ अपना फोन, टाइप करो अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पे 9837896896। ये स्टूडियो का नंबर, इस नंबर पे आपको इमीडिएटली व्हाट्सएप करके बताना है अभी जो आपने डायलॉग सुना है वो डायलॉग कौन सी फिल्म का है, यही आपको मुझे बताना है। एक्चुअली वो डिलीटली हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना म्यूजिकल वाला, इसीलिए वो आदत में आ गया है। वेल, आपको अभी व्हाट्सएप करना है जो मैंने डायलॉग प्ले किया है। वेरी वेरी पॉपुलर मूवी, स्टारिंग जो है बहुत ही अच्छी स्टार कास्ट है, साइन बाय शाहरुख खान एंड काजोल, एक और बहुत ही फैबुलस एक्ट्रेस थी। बहुत ही अच्छी फिल्म है, अब मैंने क्लू भी दे दिया, आप मुझे फटाक से मैसेज करो।

0: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: 10:03 हो गए स्टेशन क्लॉक में। आनंद के साथ हैं आप। यह है फ्राइडे की सुबह, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही स्पेशल मॉर्निंग है। और आज मैंने आपसे बहुत ही सिंपल कड़क क्वेश्चन पूछा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी फिल्म का डायलॉग है।
1: प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। सिंपल, प्यार दोस्ती है।
0: व्हाट्सएप करके बताओ मुझे जरा मूवी का डायलॉग है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और हम सभी की फेवरेट मूवी है। एंड आज वीकेंड है, फ्राइडे है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं देना, इसलिए मैंने बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है। व्हाट्सएप करो, लेकर आता हूँ किसी एक लकी कॉलर को। आप में से ही कोई एक होगा हमारे साथ आज की सुबह हमारे फोन लाइन पर, जिससे करेंगे हम ढेर सारी बात। तो हो सकता है वो आप ही हो यार, मैसेज तो करो, सही जवाब तो पहुँचाओ। 9837 8 9 6 8 9 6 ये स्टेशन का नंबर है।

0: क्या बात है यार, मेरा भी जी कर रहा है कि मैं आपसे और बातें करूं, लेकिन इस समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, 10:08 हो गए हैं फिलहाल, मेरा जाने का टाइम हो गया है, लेकिन जाने से पहले आप लोगों के लिए जोरदार तालियां बजा दें यार। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। सच में सब लोगों ने बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं। आज की सुबह मैंने पूछा था ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है।
1: प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। सिंपल।
0: Yes, यही बताना था। और मेरे पास सबसे पहले गीतांजलि जी का मैसेज आया है एंड डीके अरोरा एंड साथ में नासिर जी, इन तीनों ने मेरे को एकदम बैक टू बैक सही वाले जवाब दिए हैं, तो इन तीनों के लिए जाएंगी जोरदार तालियां। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। एब्सोल्युटली दिस इज राइट आंसर। कुछ कुछ होता है ओल्ड टाइम फेवरेट यार मेरी आपकी हम सभी की फिल्म, स्टारिंग बाय शाहरुख खान, काजोल एंड रानी मुखर्जी, बहुत ही अच्छी फिल्म जिसको देखकर हम फ्लैश बैक में चले जाते हैं। वो कलर टीवी जब नए नए आए, थोड़ी पिक्चर आती थी टीवी चैनल्स पे उस टाइम पे, तो इनफैक्ट वो केबल वाले डिस्क चैनल्स भी होते थे ना, केबल लगे होते थे वो, तो उस पर कुछ चैनल्स हमें मिलते थे देखने को, उस पर भी ये मूवीज आती थी यार, मतलब मजा आ जाता देख के, है ना। चलो फिलहाल ज्यादा बातें नहीं, अब इतना ही कह रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं, हमारा समय हो गया है जाने का, अब हम वापस आएंगे इस स्टेशन पे, आपको मिलेंगे कल। अभी के लिए देखते हैं आपसे इजाजत, बाय। और जो मैसेज किए हैं आपने उसके लिए थैंक यू। नासिर भाई थैंक यू वेरी मच, रहमतनगर से आप जुड़े, एंड रणवीर जी आपको थैंक यू, मंडी चौक से भी हमारे साथ एक प्यारे लिसनर जुड़े, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे साथ जुड़ी थी अलका वर्मा जी, इनका दिल से थैंक यू। बाकी जिन लोगों ने मैसेजेस किए हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ललिता कश्यप जी जुड़ी, गुड मॉर्निंग आनंद जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच। राजा कश्यप जी, भूमि मेरे साथ लाइन पार से जुड़ी हैं आज की सुबह, इन्होंने सही जवाब दिया था, थैंक यू वेरी मच। और बाकी और भी ढेर सारे श्रोता जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, बाय।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

குட் மார்னிங் பியூட்டிஃபுல் பீப்பிள். ஃப்ரைடே சிர்ஃப் ஏக் வீக் அது இல்லையே பல்கி ஏக் ஃப்ரெஷ் அப்பர்ச்சுனிட்டி ஹே தோஸ்தோ. அப்படி ஸ்மைல் சே கிசி கா தின் ரோஷன் கரனே கா ஹே. அப்படி ட்ரீம்ஸ் கி தாரீஃப், ஹான் ஜி தாரீஃப் கரனே கா பி தின் ஹே, மத்தப் தாரீஃப் பி கரனே ஹே. ஆர் கியா கரனே ஹே ஆப்கோ பதா ஹே தோஸ்தோ, ஹா உஸ்கி தரஃப் பி ஆகே படனா ஹே, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆகே படதே சலே ஜானா ஹே. யாத் ரக்கியே பாசிட்டிவ் மைண்ட்ஸ் ஆர் கிங் ஹார்ட்ஸ் சே ஷுரூ ஹுவா ஹர் தின் பியூட்டிஃபுல் மெமரிஸ் பன்கர் ஹி கத்தம் ஹோதா ஹே. ஸோ ஸ்டே ஹாப்பி, ஸ்டே பாசிட்டிவ் அண்ட் கீப் ஸ்மைலிங் எவ்ரி ஒன். குட் மார்னிங், ஃப்ரைடே கி சுபா குஷி ஆப்கே சாத் ஹே. அண்ட் யே ஹே ஆப் சபி கா அப்னா ஃபேவரெட் ரேடியோ ஸ்டேஷன் எஃப்எம் முராதாபாத் 89.6. ஆர் ஆப் சபி கா ஃபேவரெட் ஷோ லேக்கர் யஹாம் பர் மே ஹாஜிர் ஹூம் ஜி ஹாம், ஜிஸ்கா நாம் ஹே மார்னிங் மசாலா. பாஹர் கா மௌசம் பஹத் ஹி ஆசம் ஹே, பஹத் சுஹானி டண்டி டண்டி ஹவாயே பி சல் ரஹி ஹே தோஸ்தோ, ஹே நா. ஆர் சுபா கா சுஹானா சா மௌசம் தோ தின் ஆர் பி ஆசம் பன் ஜாதா ஹே. और साथियों, आप भी मेरे साथ इस ब्यूटीफुल शो में कनेक्ट हो सकते हैं. उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा. हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896. फ्राइडे की मॉर्निंग है भाई, खुशी आपके साथ है. वीकेंड भी स्टार्ट होने वाला है. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तैयारियाँ की हैं कि ये हम सैटरडे संडे को करने वाले हैं, घूमने जाने वाले हैं, शॉपिंग करने जाने वाले हैं, या फिर कुछ और भी प्लान किया है. वो तो आप ही जानते हैं, मैं इतना नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं जादूगर तो नहीं हूँ. अगर मैं जादूगर होती तो आपके दिल की बातें फटाक से जान लेती. और दोस्तों, यहाँ पर वक्त हुआ है 10:17. खुशी हाजिर है आप सभी के लिए, आपकी मॉर्निंग को और भी ज्यादा अमेजिंग बनाने के लिए. एंड एक प्यारा सा गाना आपके लिए सुबह सुबह, बहुत ही प्यारा सा. अगर घूमने का मन है तो बिल्कुल घूमने जा सकते हैं आप, क्योंकि घूमने से ना हमारा जो माइंड है वो फ्रेश होता है एंड बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लोर करते हैं. और मुझे लगता है कि घूमने ना जाना चाहिए. बाकी आप मुझे बताइएगा आपको कहाँ घूमना पसंद है. फटाफट से ही आप मुझे मैसेज कर सकते हैं नंबर 9837896896. आप मुझे बताइए दोस्तों कि आपको सबसे ज़्यादा घूमना कहाँ पसंद है, कहाँ आप घूमना पसंद करेंगे. या कुछ ड्रीम्स होते हैं ना कि मुझे उस जगह जाना है, अभी तक नहीं पहुँचे हैं बट जाने का मन है, या फिर पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनी पर, तो मुझे बताइएगा. नंबर 9837896896. आपको सबसे ज़्यादा घूमना कहाँ पसंद है, आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं. आप अपने संदेश पहुंचाइएगा, मैं आप तक एक प्यारा सा गाना पहुंचाती हूँ. नेहा कक्कड़ की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़, ये प्यारा सा गाना.

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास। यहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, यहां पर समय हुआ है अभी 10:28 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में, और आज 12 जून को क्या कुछ खास है, कौन कौन से स्पेशल डेज आज सेलिब्रेट किए जाते हैं, सब आपको जानकारी मिलेगी धीरे धीरे। एंड अभी शुरुआत करते हैं यहाँ पर। दोस्तों, मैंने आपसे कहा भी है कि हर अपने आप में बहुत स्पेशल होता है, और आज 12 जून है। एंड दोस्तों, आज मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। एंड हर बच्चे की मुस्कान, हर बच्चे का अधिकार। दोस्तों, 12 जून को पूरी दुनिया में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों, बचपन का मतलब किताबें, खेल, सपने और मुस्कान है, ना कि मेहनत मजदूरी। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताब और रंग होने चाहिए, उस उम्र में अगर उनके हाथों में औजार आ जाएं, तो ये केवल एक बच्चे का नहीं बल्कि पूरे समाज का

तो दिखाई दे तो चुपचाप मत रहिए, आप उस एक सूचना किसी बच्चे का भविष्य बदल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को काम नहीं, उनको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चों को पढ़ाइए, जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा एंड बच्चे का भविष्य भी बेहतर से बेहतरीन होगा। तो छोटे बच्चों से काम नहीं, उनसे पढ़ाई, उन्हें स्कूल भेजिए, उनका बचपन बहुत ही खूबसूरत होता है। और दोस्तों, अगर बच्चे बचपन में ही स्ट्रगल करेंगे तो वो आगे चलकर कैसे पूरी ज़िंदगी को अपने बिता पाएंगे। तो बच्चों के लिए सही डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है, उनकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को स्कूल भेजिए, पढ़ाइए, उनसे काम मत करवाइए, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत अनमोल होते हैं और वो हमारा भविष्य भी होते हैं। तो उन बच्चों के बारे में ख्याल कीजिए। अगर आपको कोई छोटा बच्चा काम करता, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, जब बच्चा नहीं करना चाहता है तो आप जाकर वहाँ, एक हेल्पलाइन नंबर भी है, मैं आपको बताऊंगी, वहाँ पर भी आप शिकायत कर सकते हैं अगर कोई बच्चे को लगता है कि ज़बरदस्ती उससे काम करवाया जा रहा है, तो वहाँ पर कॉल कर हेल्प भी ले सकते हैं। दोस्तों, ना किसी बच्चे से मजदूरी कराइए, ना होते हुए देखकर अनदेखा करें। हर बच्चे को पढ़ने बढ़ने और अपने सपने पूरे करने का अवसर देंगे। बच्चों के हाथों में किताबें हों, आंखों में सुनहरे ख्वाब हों, मजदूरी नहीं शिक्षा मिले, यही हमारे देश की पहचान हो। और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत संदेश भी आए हैं, हम उनको भी शामिल करते हैं बिना किसी देरी के। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज हमें मिला है छत्तीसगढ़ से, ये दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति अंशवांश वर्मा जी का मैसेज आया है हमारे पास सर गांव छत्तीसगढ़ से, और कहते हैं खुशी जी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। अगला मैसेज हमें मिला है यहाँ पर दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अंजान जी का। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, दोस्तों मैंने आपसे मालूम किया था कि आप मुझे बताइए आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है, जहाँ पर आपको जाना पसंद है, आप जाना चाहते हैं, जो आपका फेवरेट ड्रीम्स है, लाइक फेवरेट प्लेस कि मुझे वहाँ पर जाना है, मेरा सपना है, लेकिन आप जा नहीं पाए हैं या फिर आप वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो कैसा फील हुआ आपको, कैसा लगा? लाइक जब अपना फेवरेट प्लेस हम देखते हैं ना, लाइक जो हम सपना देखते हैं कि मुझे उस जगह घूमने जाना है, और जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया है ना। वैसे आप मुझे बताइए कि आपका ड्रीम्स कहाँ, कौन से प्लेस पर जाना है, लाइक कहाँ पर आपने सोचा है, डिसाइड किया है कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, या फिर आप जा चुके हैं तो कैसा लगा? मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके फेवरेट प्लेस के बारे में, आपके फेवरेट जगह के बारे में, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा घूमना पसंद है। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज एक और आया है, ये कहती हैं हेलो मैम, राधिका का मैसेज हमारे पास आया है, कहती हैं मुझे वृंदावन घूमना बहुत पसंद है। वृंदावन घूमने नहीं, वृंदावन दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहाँ का जो नज़ारा है बहुत अद्भुत है एंड आनंद की अनुभूति होती है जब वहाँ जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वहाँ से आने का ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, और ऐसा लगता है कि हाँ हम आ गए हैं रियल लाइफ में, रियल दुनिया में, क्योंकि जब वृंदावन से घर आते हैं तो लगता है कि हाँ मोह माया में फंस गए हैं, वही रोज के वर्क, रोज का सारा रूटीन, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं ना तो एक अलग ही फीलिंग्स होती हैं, एक अलग ही यू नो नज़ारा होता है, हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, इतना पॉजिटिव वातावरण वहाँ का होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है वहाँ का एहसास। मैं जब वृंदावन जाती हूँ ना तो घर आके लगता है कि मैं सपने में गई थी, इतना अच्छा फील होता है वहाँ जाकर।
मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं जितनी बारी भी जाती हूँ ना वृंदावन, तो वहाँ से आने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और जितनी बारी मैं जाने का सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं नई बारी जा रही हूँ। मतलब मैं वहाँ अभी नहीं पहुँची, दोबारा से जाना चाहती हूँ। वहाँ जाने के लिए मन में एक

उत्साह रहता है, एक्साइटमेंट रहती है वहाँ के लिए। जैसे ही कोई फैमिली मेम्बर्स या कोई रिलेशन वाले या फिर मेरा खुद का मन भी होता है वृंदावन जाने का, तो फिर मैं चली जाती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। कान्हा बुलाते हैं तो चले ही जाते हैं। कहते हैं ना कि जब तक राधा रानी कान्हा जी की कृपा नहीं होती तब तक नहीं जाते हैं। तो राधे राधे जपते हैं तो कान्हा बुला ही लेते हैं। और बहुत सारी बातें हम आपसे करने वाले हैं कंटिन्यू। वैसे मैंने आपसे जानना चाहता है कि आप मुझे बताइए अपने फेवरेट प्लेस के बारे में, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा घूमना अच्छा लगता है, घूमना पसंद है, या फिर आप वहाँ पर घूमकर आ चुके हैं तो कैसा फील हुआ आपको, बताइएगा ज़रा। इतना मत सोचिए, बता दीजिए सीधा अपने दिल की बातें। और अभी हमने बच्चों की बातें भी की हैं, तो एक प्यारा सा ट्रैक, बच्चे मन के सच्चे, बहुत ही प्यारा सा गाना, इसको आप सुनिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे सी गाने के उस पार। ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गाने गुनगुनाते रहिए।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
1: अपोजिट
5: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
1: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी है आपके साथ. और दोस्तों, फ्राइडे का दिन है. बहुत सारे श्रोताओं की तो आज छुट्टी है, हॉलिडे है, वो आराम से घर पर अपनी फैमिली के साथ रेडियो सुन रहे हैं और इस सुहाने से मौसम का आनंद ले रहे हैं. और कुछ अभी ऑफिस में पहुंच चुके हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं. कुछ शॉप पर बैठे हैं, अपनी शॉप को ओपन करके और आराम से देख रहे हैं, टुक टुक निहार रहे हैं कि कस्टमर कब शॉप पर आए और रेडियो का भी आनंद ले रहे हैं. दोस्तों, कुछ लोग अपनी मंजिल से नहीं बल्कि दूसरों के लिए बनाए गए रास्ते से पहचाने जाते हैं. साथियों, मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी खुशी. और आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान भारतीय की जिन्हें पूरा देश प्यार से मेट्रो मैन के नाम से जानता है. जी हां साथियों, आज 12 जून को उनका जन्मदिन मनाया जाता है. ई श्रीधन जी का आज 12 जून 1932 को जन्म हुआ था केरला में. वे भारत के सबसे सम्मानित सिविल इंजीनियरों में से एक हैं. दोस्तों, अगर आज भारत के कई बड़े शहरों में मेट्रो सफर को आसान और तेज बना रही है तो उनके पीछे ई श्रीधरन जी की दूरदृष्टि, ईमानदारी और कड़ी मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है. उन्होंने कोंकण रेलवे जैसे बेहद चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को सफल बनाया और दिल्ली मेट्रो को विश्व स्तरीय पहचान दिलाई. उनकी कार्यशैली, समय की पाबंदी, पारदर्शिता और उत्कृष्ट गुणवत्ता का शानदार उदाहरण मानी जाती है. साथ ही उनकी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित किया. दोस्तों, उनके जीवन से हमें एक सुंदर सीख मिलती है. सफलता केवल बड़े सपने देखने से नहीं मिलती बल्कि हर एक दिन ईमानदारी और अनुशासन के साथ काम करने से मिलती है.

और दोस्तों आपको समय के अगर बारे में बताएं, टाइमिंग अगर आपको बताएं, तो हमारे स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ 10:49 हो चुके हैं और हमारे पास खूबसूरत संदेश पे आए हैं, उनको भी जल्दी से हम शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, मौसम भी बहुत ही सुहाना हो रहा है और अच्छे अच्छे गीत भी हमें रेडियो पर सुनने को मिलते हैं, नई नई जानकारियाँ सुनने को मिलती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इन्होंने अपना नाम लिखा है सोनू कुमार जी का, ये मैसेज हमें मिला है सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, राम राम जी, कैसी हैं खुशी जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋदिक कसाना हैं एंड आदित्य कसाना, कांट रोड लदावली से ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं। एक और मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, जिला अमरोहा नई बस्ती पतेही खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, और सर भी हमें गुड मॉर्निंग पहुँचा रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है विकी सागर जी का, और हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी कहते हैं। खुशी जी, हमें ना हरिद्वार घूमना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, क्या बात है, कल आप उत्तराखंड घूमने के लिए जा रहे हैं, वेरी गुड, अच्छे से जाइएगा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, अमित जी का मैसेज हमारे पास आया है, और बाहर का मौसम सुहाना है तो चलिए एक बारिश का गाना भी ट्रैक हम आपके लिए प्ले कर देते हैं, आप इसको एंजॉय कीजिएगा। मैं लौट कर आती हूँ कुछ प्यारे से गानों के इस पार, और भी इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ मेरे पास हैं आपके लिए, आप मुझे बताइए श्रोताओं कि आपकी सबसे ज़्यादा आपको कहाँ घूमना पसंद है, आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं या पहुँच चुके हैं।

क्या बात है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक अभी आपने सुना साज़ भट्ट की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ में। और दोस्तों आज कितना प्यारा ट्रैक है ना, आजा मेरी माही तेरी याद आ गई। और सच कहूँ हल्के हल्के सी बारिश हो, ठंडी ठंडी हवाएं चलें, तो यादें भी बिना दस्तक दिए दिल में उतर आती हैं। लेकिन उम्मीद है कि इस वक्त आपकी सबसे प्यारी यादों के साथ आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन भी आपका साथ निभा रहा है। तो मुस्कुराते रहिए क्योंकि अभी सफ़र बाकी है, बातें बाकी हैं और ढेर सारे शानदार गाने भी अभी सुनने बाकी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ आपकी खुशी हाजिर हूँ आपका फेवरेट शो लेकर मॉर्निंग मसाला, और ढेर सारी बातें हम आपके साथ करने वाले हैं। बट आप हमारे साथ बने रहिए और अपने मैसेज भी यहाँ पर पहुँचाते रहिए, अपने संदेश जब आप पहुँचाते हैं तो लगता है कि हाँ हमारे साथ ही हमारे साथ कनेक्ट हैं। और साथियों, बारिश की हर बूंद अपने साथ कोई ना कोई याद ज़रूर लेकर आती है, और अगर यादों के साथ अच्छे गानों का साथ मिल जाए तो मौसम और भी खूबसूरत हो जाता है ना। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो आपके खूबसूरत मैसेज आए हैं मैं उनको भी क्विकली शामिल करती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, साथ में इनके दोस्त भी हैं रईस दूल्हा अंसारी जी। कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। आज का मौसम बहुत ही कूल है, बहुत प्यारा है। एंड खुशी मैम, आपका शो बहुत अच्छा लगता है, आपकी ब्रॉडकास्ट लाजवाब होता है। थैंक यू सो मच सर। श्योर सर, जिस ट्रैक की आपने रिक्वेस्ट हमें की है हम पूरी कोशिश करेंगे इसको प्ले करने की। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, जिला रामपुर खेड़ टांडा से मोहम्मद कामिल जी का। और इन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं कि फूल बिछते रहें जिंदगी की राहों में, फूल बिछते रहें जिंदगी की राहों में, हंसी चमकती रहे आपके चेहरे पर, कदम कदम पर मिले खुशी हजार आपको, दिल देता है यही दुआएं बार बार आपको। थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स जब साथ में होती है ना तो दिन बहुत खूबसूरत हो जाता है। और हमारे पास नेक्स्ट मैसेज आया है हेलो मैम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कहते हैं हर मोड़ पर मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, चिरागों की रोशनी से ढूंढा है आपको, आप जैसा दोस्त मिलना आसान नहीं होता। और ये खूबसूरत सी लाइनें लिखी हैं रणवीर सिंह जी ने मुरादाबाद से। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर राधे राधे दी, राधे राधे आपको भी। जानवी का मैसेज हमारे पास आया है, कहती हैं ओके, कहती हैं कि मेरा जो ड्रीम है वो केदारनाथ जाने का है। अरे वाह क्या बात है। हाँ वैसे मेरा भी बहुत मन है वहाँ पर जाने का, मैं भी नहीं अभी गई हूँ दर्शन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अभी कुछ और यहाँ पर गीत संगीत हो जाएं, और मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी अपने संदेश हमें पहुँचाइएगा। नंबर है 9837896896। लौट कर आऊँगी एक मस्ती भरे सवाल के साथ। जी हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ, उसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। उससे पहले आप कुछ गीतों का आनंद लीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ प्यारे से गाने के साथ। यह है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। और इस सुहाने से मौसम में गर्मा गर्म अगर कुछ खाने का मन है स्पाइसी तो खा सकते हो, कभी कभी चलता है ठीक है। तो आज कुछ खाने का मन है ना तो बिल्कुल बनाइए और उसका लुत्फ भी उठाइए।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: हेलो जी, नमस्कार। आपसे
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे मालूम है आपके हालचाल सब बढ़िया हैं, मौज में हैं आप, बस अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और होना भी चाहिए दोस्तों। लेकिन एक रेडियो हमारा एक ऐसा साथी है जो हमें कभी भी हमारे काम में रुकावट नहीं बनता है, बल्कि हमारी हेल्प करता है, हमें एंटरटेनमेंट का डोज भी देता है और आपको जानकारियाँ भी देता है ना। तो कितना प्यारा साथी है आपको देखो ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें रोक कर रखती है। अभी देखिए, जैसे हमारा सेलफोन है, हमारा मोबाइल है, अगर हम मोबाइल चलाएंगे तो बाकी काम हमारे रह जाएंगे, लेकिन रेडियो एक ऐसा साथी है कि इसको हम साइड में रख देते हैं और अपने सारे काम कंप्लीट करते रहते हैं। ये रेडियो इतना प्यारा है ना, इसका साथ छोड़ने का कभी मन ही नहीं करता। लाइक अगर ये साथ ना हो तो अधूरा सा लगने लगता है ना साथियों। आपके साथ भी ऐसा होता है ना, मेरे साथ भी ऐसा होता है। और दोस्तों, मैं अभी आपको बताने वाली थी, मैंने आपसे मालूम भी किया था कि आप मुझे बताइए आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है जहाँ पर आप घूमना पसंद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाइक आपका ड्रीम है वहाँ जाना, लेकिन आप अभी तक नहीं पहुँचे हैं बट चाहते हैं कि वहाँ हम पहुँच जाएँ, या फिर अपने फेवरेट अपने ड्रीम के प्लेस पर जो आपका ड्रीम है लाइक कि उस प्लेस पर मुझे जाना है, या पहुँच चुके हैं आप तो कैसी फीलिंग्स आपकी रही है वहाँ जाने के बाद, एक्सप्लेन करो ज़रा मेरे साथ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। वैसे हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं और मैंने बहुत सारे मैसेज को रीड किया। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि मुझे वृंदावन जाना बहुत पसंद है, किसी ने कहा कि केदारनाथ, तो किसी ने कहा हरिद्वार। सच कहूँ हर जगह की अपनी एक अलग ही खूबसूरती और आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। और अब आप सबने मुझसे पूछा है कि मैम आप मुझे बताइए आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है, तो मैं मेरा एक छोटा सा सपना है, मेरा दिल कहता है कि मुझे जगन्नाथपुरी धाम जाना है। जी हाँ, उड़ीसा। पता नहीं क्यों लोग उस धाम के लिए मन में एक अलग ही श्रद्धा और अपनापन महसूस होता है। मैं भी एक दिन वहाँ प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी उनके द्वार तक पहुँच पाते हैं, इसलिए मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। जब मुझे भी बुलावा आएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी, और मतलब मेरा एक ड्रीम ही है वहाँ पर जाना। और बाकी आप भी अपने अपने बारे में बताइएगा दोस्तों कि आपको कहाँ जाना पसंद है और क्यों पसंद है, ये भी बताइएगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी वक्त मैं आपको बताती हूँ, 11:17 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और आपकी खूबसूरत लगातार बैक टू बैक मैसेज आ रहे हैं, तो मैं उनको बिना किसी देरी के पढ़ लेती हूँ क्योंकि आप सभी सब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि आपको और इंतज़ार कराऊं। तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आए हैं, ये राधिका का मैसेज हमारे पास आया है। ये कहते हैं, खुशी दी आपको कहाँ घूमना पसंद है? देखिए राधिका, अभी सुनिए, मैंने आपको बता ही दिया है कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना बहुत पसंद है, मेरा ड्रीम है वहाँ पर जाना, और अभी तक तो पहुँच नहीं पाए हैं बट हाँ उम्मीद है कि जल्दी ही जाएंगे। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल जी का, साथ में इनकी पूरी फैमिली भी है और ये रेडियो को इस वक्त सुन रहे हैं, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, मैडम जी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं उमा शंकर जी और देवभूमि उत्तराखंड से रुद्रपुर से ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं, साथ में इनकी पूरी फैमिली है जो इस समय रेडियो को सुन रही है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है रणवीर सिंह जी का और ये कहते हैं कि कुछ रिश्ते ऊपर बनते हैं, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, कुछ रिश्ते ऊपर बनते हैं, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, वो लोग बहुत खास होते हैं जो बिना रिश्ते के रिश्ता निभाते हैं। अरे वाह क्या बात है, बड़ी खूबसूरत सी लाइनें आपने लिखी हैं, बहुत खूबसूरत मैसेज आपने भेजा है, थैंक यू। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर कश्मीर से महराजुद्दीन जी का और कहते हैं, गुड मॉर्निंग आरजे खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर नवीन नगर मुरादाबाद से ललिता कश्यप जी का और ये कहती हैं, गुड मॉर्निंग मैम, आज का मौसम बहुत ही प्यारा है। हाँ जी, आज का मौसम खूबसूरत है। एंड कहती हैं कि इन्होंने लिखा है कि आज हमारे प्यारे से जो बच्चे हैं ना उनकी फरमाइशें हैं, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बना रही हूँ। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, शो सुनते सुनते हम गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बना रहे हैं और उनका आनंद भी लेने वाले हैं।

लिए बहुत अच्छी बातें बनाइए, फैमिली को खिलाइए और आप भी खाइए, लुत्फ़ उठाइए इन प्यारी प्यारी सी गर्मा गर्म आलू की पकौड़ियों का। बाकी मैं आपको एक खूबसूरत सा गाना सुनवाती हूँ, उसके बाद आपसे करूँगी और ढेर सारी बातें। बस आप कहीं मचाइए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गाने गुनगुनाते रहिए। मैं लौट कर आती हूँ एक प्यारे से ट्रैक के उस पर।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लविना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: टायर लो, सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस, नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
8: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
9: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक. आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी आपके साथ है. और दोस्तों, अभी आपने ब्यूटीफुल ट्रैक सुना, पंजाबी गाना. एंड मैं अभी आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा है. एंड दोस्तों, मैंने सोचा कि चलिए कुछ खुराफाती कर लेते हैं. अब मैं एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जो शायद हर घर में रोज गूंजता है. सुबह सुबह सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल कौन सा होता है, मैं आपको बताती हूँ. आज खाने में क्या बनेगा, ये सबके घर में होता है ना. और सब सुबह सुबह ये क्वेश्चन करते हैं और जवाब रिटर्न

में क्या मिलता है, कुछ भी बना लो। लेकिन कुछ भी नाम की डिश तो आज किसी ने बनाई नहीं है, बनाई नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए दोस्तों, जब ये सवाल घर में गूंजता है कि आप पूछते हैं आज खाने में क्या बनेगा, तो रिप्लाई आता है कुछ भी बना लो। तो कुछ भी तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी डिश आपके घर में बनती है आप मुझे बताइएगा। जब ये मालूम करते हैं फैमिली वाले आप स्पेशली लेडीज जो हमारी फीमेल्स होती हैं, वो सबसे ज़्यादा मालूम करती हैं कि बता दीजिए आज खाने में क्या बनेगा, रिप्लाई आता है कुछ भी बना लीजिए। और आप तब क्या बनाती हैं, कौन सी वो डिश होती है जो आपके घर में बनती है जब समझ में नहीं आता है, सबसे मालूम कर लेते हैं, ज़रा बताइएगा। दाल चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, आलू के पराठे या भिंडी सब्जी या फिर पनीर या फिर कुछ स्पेशल, बताओ बताओ क्या बनता है आपके घर में। जब रिप्लाई आता है कुछ भी बना लो, तो आप क्या बनाती हैं मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अपना मैसेज हमें पहुँचाएगा नंबर 9837896896। और अभी यहाँ पर कुछ और भी इंटरेस्टिंग से मैसेज आए हैं, तो उनको भी मैं क्विकली शामिल करती हूँ।

और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान जी का, गुड मॉर्निंग हमें पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, माय नेम इज मुस्कान। ये मुस्कान का मैसेज हमें मिला है लाइन पार से और इन्होंने एक ट्रैक रिक्वेस्ट हमें भेजी है। बिल्कुल मुस्कान, ये खुशी आपको गाना सुनवाएगी। ओके, नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं उमेश कुमार प्रजापति जी, आप कैसी हैं मैम, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, थैंक यू। और कहते हैं कि मौसम सुहाना हो रहा है। और ये कहते हैं, मैम जी जब हम कहीं घूमने जाते हैं अगर तो रेडियो हम सुनते जाते हैं, हम अपनी पूरी फैमिली के साथ रेडियो सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सफर भी और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, थैंक यू। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, और ये मैसेज हमें पहुंचाती हैं राधिका, कहती हैं कि जरूरी नहीं अगर मैं आपको मैसेज भेजूं तो आप भी मुझे मैसेज ही भेजें, बदले में आप मुझे कुरकुरे, चिप्स, पिज्जा, चॉकलेट भी भेज सकते हैं। अरे वाह, इतनी सारी फरमाइशें। ओके चलिए दोस्तों, मैं अभी फिलहाल चॉकलेट तो नहीं पहुंचा सकती हूँ, लेकिन हाँ एक मीठा सा गाना जरूर मैं आपको पहुंचा सकती हूँ। यहाँ पर आपकी रेडियो सेट पर आप इंजॉय कीजिएगा। नंबर मैं आपको बताती हूँ, आपको मैसेज करना है, आप मुझे बताइएगा दोस्तों कि आपके घर में, फैमिली में एवरीडे क्वेश्चन होता है, सभी के घर में सवाल होता है, कॉमन सी बात है कि आज खाने में क्या बनेगा। रिप्लाई में आता है कुछ भी बना लीजिए, और आप कुछ भी में क्या बनाती हैं मैम सिर्फ बताइएगा, हम आपसे जानना चाहते हैं। और ये प्यारा से गाना सुनिएगा,

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
2: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
3: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
4: हाय डियन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
8: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
9: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी अपनी खुशी एवरीडे आपके लिए लेकर आती हूँ ढेर सारे गाने, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा फन एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी, जो आपकी दिन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। और साथियों, आज फ्राइडे की मॉर्निंग है, वक्त हुआ है 11:51 राइट नाउ एंड हमारे पास टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं तो मैं इनको भी शामिल करती हूँ। यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया है कार्तिक का और ये कहते हैं, हाय खुशी मैम, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। ये कहते हैं कि मैम, मेरा फेवरेट एंड मेरा ड्रीम प्लेस है केदारनाथ, मैं नेक्स्ट मंथ जा सकता हूँ शायद। कार्तिक गुप्ता का मैसेज हमारे पास आया है और इन्होंने कहा है कि मैंने आपसे मालूम किया था ना दोस्तों अभी कि आपके घर में सुबह सुबह सभी के घर में सवाल होता है कि आज खाने में क्या बनेगा, रिप्लाई आता है कुछ भी बना लीजिए। एंड ये कहते हैं कि हमारे घर में आलू की सब्जी बनती है। अरे वाह, क्या बात है जब कुछ समझ नहीं आता है तो आलू की सब्जी बन जाती है, बहुत बढ़िया। आलू टमाटर बहुत टेस्टी भी लगते हैं खाने में। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास आया है, गुड मॉर्निंग मैम, आप कैसे हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है बट हमें गुड मॉर्निंग पहुँचा दिया है, वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अपना नाम लिखा करो, क्यों भूल जाते हो आप। हाँ

अरे वाह, यहाँ पर ललिता जी का मैसेज आया है। अच्छा, और ये कहती मैम, जब घर में मालूम किया जाता है कि आज खाने में क्या बनेगा और कोई मुझे बताता नहीं है, तो मैं खिचड़ी बना देती हूँ। अरे वाह, सही बात है ये, कि यही ऑप्शन होता है या फिर आलू टमाटर का। घर में फटाफट से समझ में नहीं आता, जब सबसे मालूम करते हैं और जब किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता, सब बोलते हैं कोई कुछ भी बना लो, आपकी मर्जी है, आप अपने मन पसंद से बना लो। लेकिन जब बना लेते हैं ना, फिर उसके बाद जो मुंह बनता है फैमिली में, स्पेशली लड़कों का, वो हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं और कुछ बताना भी पसंद नहीं करते हैं। तो बेचारी लड़कियां क्या करेंगी, उसमें लड़कियों की गलती नहीं है, जो उनको नजर आता है फिर वो बना लेती हैं घर में जो भी रखा होता है। और ये कहती हैं कि मैम, मैं मिठू को भी पकौड़ियाँ खिला रही हूँ और ये भी आपका शो सुन रहा है। अरे वाह, आपका मिठू तो बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर पूजा जी का आया है, मुरादाबाद विकास नगर से, और ये कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। कहती हैं कि मैम, जब मैं सबसे मालूम करती हूँ घर में कि आज खाने में क्या बनेगा और रिप्लाई आता है कि कुछ भी बना लो, तब मैं बनाती हूँ। इन्होंने बोला है कि पालक पनीर, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है, और मुझे जब कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं सोचती हूँ कि चलो आज किसी की नहीं पसंद का बनेगा तो मेरी पसंद का ही सही, मैं पालक पनीर बनाती हूँ और सब इतने शौक से खाते हैं, खुश भी हो जाते हैं। अरे वाह, पालक पनीर वैसे हम बताएं पूजा, मुझे भी बहुत पसंद है, टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी है। एंड दोस्तों भी देखिए, बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में इन 10 बातों का ज़रूर ध्यान रखें, मैं आपको बताती हूँ। उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही पीजिए, ताकि पानी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। एंड बाहर का कटा हुआ फल, स्ट्रीट फूड कम खाएं, क्योंकि इस मौसम में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। एंड दोस्तों, भीगने के बाद, जैसे आप बारिश में भीग जाते हैं, बारिश में भीगने के बाद तुरंत कपड़े बदलें और शरीर को अच्छी तरह से सुखाएं। और मैं आपसे कहती हूँ, जब आप बाहर जाते हैं, आपको पता है कि मौसम ख़राब होने वाला है या नहीं भी है, तो आप तैयारियों से जाइए, छाता या रेनकोट हमेशा साथ रखिए, ताकि अचानक बारिश में भीगना ना पड़े। और मच्छरों से बचाव के लिए आप घर के आसपास पानी जमा ना होने दें और मच्छरदानी का आप इस्तेमाल करें, मच्छरदानी में ही सोएं। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि साबुन से हाथ अच्छी तरह धोएं, खासकर खाने से पहले एंड वॉशरूम से आने के बाद, और घर और आसपास के एरिया में साफ सफाई ज़रूर रखें, ताकि बैक्टीरिया और कीड़े मकौड़े ना पनपें। चीज़ों का आप ख्याल रखिए एंड फिसलन वाली जगह पर सावधानी से चलिए, क्योंकि बारिश में दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। ताज़ा और गर्म खाना खाएं, बासी खाना खाने से आप बचिए। एंड अगर आपको बुखार, खांसी या शरीर में दर्द हो तो लापरवाही ना करें और समय पर डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। बारिश की फुहारे जितनी सुहानी लगती हैं, उतनी ही ज़रूरी हैं अपनी सेहत का ख्याल रखना भी। छोटी छोटी सावधानियां आपको और आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती हैं, तो मुस्कुराइए, बारिश का मजा लीजिए, लेकिन अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखिए। एवरीवन, इन्हीं बातों के साथ अब मैं लेती हूँ आपसे जाने की अनुमति। अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। एक और मैसेज हमें मिला है यहाँ पर मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं, शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, आपका शो हम सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ने एक ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, बीते हुए लम्हों की खास। अरे वाह, कसक साथ होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ होगी, ये गाना सुनना चाहते हैं महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में। बिल्कुल सुनवाएंगे सर, शुक्रिया, आप सब ने अपना साथ बनाए रखा और अपना इतना सारा प्यार हमें दिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगी आपको सी यू सून 3 से 5, तब तक के लिए कहीं मत जाइए, दिल से मुस्कुराइए और अपनी सेहत का भी अच्छे से ध्यान रखिएगा।

0: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक MOU से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं IMO के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
6: अपोजिट
5: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
7: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुनी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, छाया तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

0: और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। श्रोताओं कहते हैं कि बच्चे की पहली नींव उसके शुरुआती 2 साल में पड़ती है। इसी दौरान बच्चे का शरीर और दिमाग तेजी से बढ़ता है। अगर इस समय सही पोषण मिले तो बच्चों का भविष्य मजबूत बन सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग समझ पाते कि बच्चे को कब क्या और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। बस यही उलझन दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी। भाभी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो सेहत सही लाभकारी में। भाभी जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है अब बच्चे को क्या खिलाएं और कितना खिलाएं। बहुत लोग तो यह सोचते हैं कि दूध ही काफी है, असल में सही तरीका क्या है?
1: देखिए जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है उसी समय से उसे माँ के दूध के साथ साथ ऊपर का खाना भी देना शुरू कर देना चाहिए। इसे ही हम ऊपरी आहार कहते हैं और ये सिलसिला लगभग 2 साल की उम्र तक चलता है।
0: मतलब दूध के साथ साथ अब खाना भी जरूरी हो जाता है?
1: हाँ बिल्कुल, बच्चा इस उम्र में तेजी से बढ़ता है, उसका शरीर मजबूत बने, दिमाग का विकास हो, इसके लिए सिर्फ दूध काफी नहीं है। अब उसे अलग अलग तरह का खाना चाहिए। दिन भर में कोशिश करें कि बच्चे को कई तरह का खाना खिलाए। जब खाने में विविधता होगी तभी बच्चे का विकास पूरी तरह से हो पाएगा।
0: अच्छा भाभी, तो बच्चे के खाने में क्या क्या देना चाहिए?
1: बच्चे के भोजन में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, इसके लिए दालें और अनाज सबसे पहले अच्छा विकल्प है। और जैसे ही मसूर या अरहर की दाल का पानी या बिल्कुल घुली हुई दालें, ये बच्चे को ताकत देगी और उसका शरीर स्वस्थ बनेगा। इसके साथ ही दूध और दूध से बने पदार्थ की भी बहुत अहमियत है, इससे बच्चे को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और वसा मिलती है। या फिर मूंग दाल की बिल्कुल पतली खिचड़ी, ये सब चीजें बच्चे की हड्डियों को मजबूत करती हैं। अब सब्जियों की बात करते हैं। गहरी हरी पत्तेदार सब्जियाँ बच्चे को जरूरी खनिज और ताकत देती है, ये उनके स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, सी के फोलेट, कैल्शियम, अनाज, आयरन, मैग्नीशियम जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व तो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, एनीमिया से बचने और शरीर के विकास में मदद करते हैं। अगर परिवार में अंडा और

0: मांस खाया जाता है तो वो भी बच्चे को अंडे की जर्दी या हड्डियों का सूप दिया जा सकता है। ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, लेकिन अगर घर में मांसाहारी नहीं चलता तो कोई दिक्कत नहीं, बस दूध और दूध से बने पदार्थ की मात्रा थोड़ी बढ़ा दे। और हाँ, विटामिन ए के लिए पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियाँ बहुत जरूरी हैं, जैसे गाजर, पपीता या आम। ये बच्चे की आँखों की रोशनी और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। इस सब को मसल कर बच्चे को दिया जा सकता है।
1: भाभी, बच्चे का खाना तो आपने साफ साफ समझा दिया, लेकिन क्या और कुछ खास बात का ध्यान रखना चाहिए?
0: बिल्कुल, सबसे पहले तो बच्चे को स्तनपान जरूर कराते रहना चाहिए, ये किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चे के खाने में हर दिन थोड़ा सा घी या तेल जरूर डालना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इससे बच्चे को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और उसका शरीर चुस्त तंदुरुस्त रहता है।
1: भाभी, लोग ये समझ गए होंगे कि बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए, लेकिन असली उलझन बची है कि कितने खिलाएं और कितनी बार खिलाएं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे को कितनी मात्रा में और कितनी बार खाना देना चाहिए। अगर मात्रा सही नहीं होगी तो बच्चा या तो भूखा रह जाएगा या फिर उसे खाना हजम करने में दिक्कत होगी।
1: हाँ भाभी, ये तो जरा विस्तार से समझाइए।
0: देखिए आरजे खुशी, जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है तो उसे आधी कटोरी खाना दिन में 2 बार देना चाहिए। ये कटोरी कोई बड़ी कटोरी नहीं बल्कि लगभग 250 ग्राम की होनी चाहिए। फिर जैसे ही बच्चा 9 से 11 महीने का हो जाए तो आधी कटोरी खाना दिन में 3 बार देनी चाहिए। इसके साथ 1-2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी दे सकते हैं। जब बच्चा 12 से 23 महीने का हो जाए तब उसका खाना भी बढ़ाना पड़ता है। इस उम्र में उसे पूरी कटोरी 3 बार देनी चाहिए, साथ ही 1 से 2 बार हल्का नाश्ता भी जरूरी है।
1: सीधी बात तो ये है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके खाने की मात्रा और बराबर खिलाने का तरीका भी बढ़ना चाहिए।
0: बच्चे का शरीर और दिमाग इसी समय तेजी से विकसित होता है। अगर माता पिता भोजन

0: खुश करने के लिए कई बार लोग जूस, चॉकलेट, चिप्स या बिस्किट दे देते हैं, सोचते हैं कि बच्चा चुप हो जाए।
1: यही तो सबसे बड़ी गलती है आरजे खुशी। ये सब चीजें बच्चे के शरीर को कोई फायदा नहीं देती, बल्कि नुकसान ही पहुंचाती हैं। बच्चे की छोटी सी भूख अगर ऐसे चीजों से भर गई, तो असली पोषण खाना वो खा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बच्चे को इससे दूर ही रखना चाहिए।
0: और भाभी, क्या 6 से 23 माह के बच्चे के लिए भी स्तनपान जरूरी होता है?
1: हाँ, बिल्कुल जरूरी होता है। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि जैसे ही बच्चा ऊपर का आहार खाने लगता है तो माँ को दूध देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। 6 महीने के बाद जब हम बच्चे को ऊपर का आहार देना शुरू करते हैं, तब भी माँ का दूध उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। माँ के दूध में ऐसे पोषण तत्व और एंटीबॉडी होती है जो बच्चे की सेहत को मजबूत बनाते हैं और उसे बीमारियों से बचाने की ताकत देते हैं। मतलब माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ाकर उसे ठीक होने में मदद करता है।
0: भाभी, जब बच्चे की परवरिश की बात होती है तो अक्सर लोग माँ पर ही सारी जिम्मेदारियाँ डाल देते हैं, लेकिन क्या बच्चे को संभालना सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी है?
1: नहीं आरजे खुशी, बच्चे की परवरिश पूरे घर की जिम्मेदारी है। खासकर पिता और दादी की खास भूमिका होती है। अगर ये दोनों सहयोग करें तो माँ का बोझ बहुत हल्का हो जाता है और बच्चा अच्छे से पल पाता है।
0: पिता की जिम्मेदारी क्या होती है?
1: देखिए, पिता की जिम्मेदारी है कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करे और उसका साथ दे। पिता का बच्चे के साथ खेलना और देखभाल में सहयोग भी जरूरी है। जब माँ डॉक्टर के पास जाए या किसी सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा ले, तो पिता को भी उसके साथ जाना चाहिए। इससे माँ को मानसिक सहारा मिलता है और पिता को ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो खाना बने उसमें बच्चे के लिए पोषण वाला सामान जरूरी हो, जैसे पीली दालें, गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां, दूध और दूध से बने पदार्थ। अगर घर में मांस खाया जाता है तो अंडा और मांस भी बच्चे के लिए उपलब्ध कराना चाहिए।
0: सही कहा भाभी। और दादी की क्या भूमिका होती है?
1: दादी को होना चाहिए कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए हमेशा प्रेरित करे। घर के छोटे मोटे काम जैसे खाना बनाना, चाय बनाना, बाजार से सामान लाना, ये सब अगर दादी कर ले तो माँ को बच्चे की देखभाल के लिए ज्यादा समय मिलता है। दादी बच्चे के साथ खेल सकती है और उसे दुलार सकती है ताकि माँ थोड़ी राहत पा सके।
0: भाभी, आपने पिता और दादी की जिम्मेदारी की बात की, लेकिन दादा का रोल भी तो घर में बहुत अहम होता है ना?
1: हाँ, दादा का रोल बहुत बड़ा होता है। वो अपने अनुभव से माँ और पिता दोनों को समझाते हैं कि बच्चे की देखभाल में जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब दादा बच्चे को गोद में लेते हैं, उससे बातें करते हैं या उसके साथ खेलते हैं, तो बच्चा बहुत खुश होता है। दादा का दुलार बच्चे को सुरक्षा और अपनापन देता है। दादा घर के माहौल को भी सकारात्मक रखते हैं। अगर कभी माँ थक जाए या पिता उलझन में पड़ जाए तो दादा उसे समझाते हैं कि हिम्मत देते हैं। साथ ही साफ सफाई, समय पर टीके लगवाना और डॉक्टर की बात मानना जैसे बातें बार बार याद दिलाते हैं।
0: श्रोताओं, जैसे ही बच्चा 6 माह यानी 180 दिन का हो जाए, तभी से उसके लिए माँ के दूध के साथ साथ घर का बना ताज़ा आहार देना शुरू कर देना है। यह क्रम 6 से 23 माह तक चलता रहे, यानी स्तनपान जारी रखें और साथ में ऊपरी आहार भी देते रहें। खाना हमेशा घर में ताज़ा बनाकर नरम और अच्छी तरह मसल कर ही दें। खिचड़ी, उबला हुआ आलू, अच्छी तरह पिसी दाल, पका हुआ गाजर, इन सबको मसल दें ताकि बच्चे को निगलने में दिक्कत ना हो।
1: बच्चे का हाइजीन बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे को खिलाएगा, खाने से पहले साबुन से हाथ धोए, सोच जाने के बाद खाना बनाने से पहले और बच्चे को खिलाने के बाद भी हाथ धोए। इससे पेट की बीमारियां और इन्फेक्शन से दूर रहते हैं। बच्चे के लिए अलग कटोरी और चम्मच रखें, इसे शेयर ना करें। इससे सफाई रहती है और बच्चे को खाने की आदत भी ठीक बनती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि परिवार

0: घर के हर सदस्य माँ पिता दादा दादी सब मिलकर बच्चे की देखभाल में सहयोग दे, तभी बच्चा तंदुरुस्त और खुशहाल रहेगा।
1: दोस्तों याद रखिए कि सेहत सही होगी तो लाभ कई गुना होंगे। अगली बार हम फिर मिलेंगे बच्चों की सेहत से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें जाने की अनुमति दीजिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाएंगे।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: स्वास्थ्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जाँच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा, सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत से लाभ कई,
1: तो सुनते रहिए सेहत सही लाभ। धन्यवाद, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 और हम बात करने वाले हैं सेहत से लाभ कई। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक के ऊपर जो थोड़ा अलग है। सच कहूँ तो मुझे खुद थोड़ा झिझक भी हो रही है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की देखभाल के एक ऐसे तरीके पर जो सुनने बहुत ही सरल लगता है, लेकिन असल में जीवन बचाने की ताकत रखता है। और इस विषय को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे अपने सेहतिया भैया, जो हमेशा हमें स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी बताते हैं, आसान भाषा में समझाते हैं। सेहतिया भैया, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आज के शो में।
1: आरजीना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। आपने सारे प्यार और भरोसे के लिए आज तो आपने शुरुआत ही इतनी भावुक कर दी है कि लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। आरजीना,
0: बात तो सच में बहुत ही बड़ी लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ। ये कंगारू मदर केयर आखिर है क्या? नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो बस वही जानवर वाला कंगारू आ जाता है जो अपने बच्चे को पेट के थैले में रखता है। तो क्या इसका मतलब कुछ वैसा ही है, या मैं पूरी तरह गलत सोच रही हूँ?
1: अरे आरजीना, नहीं नहीं, आप पूरी तरह भी गलत नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। नाम जरूर

0: सच्चाई को समझना होगा। हर साल दुनिया भर में लगभग 13 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से करीब 40 लाख बच्चे अपने जीवन के पहले 4 हफ्तों में ही दुनिया छोड़ जाते हैं। सोचिए, अभी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई होती है और खत्म हो जाती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि नवजात बच्चों की देखभाल कितनी जरूरी है। आरजे रीना,
1: ये तो सच में बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है। भैया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इतनी जल्दी अपनी जान गंवा देते हैं।
0: जी हाँ, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है, बहुत से बच्चे या तो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, यानी 9 महीने पूरे होने से पहले, या फिर उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ज्यादा देखभाल, गर्मी, पोषण और सुरक्षा की जरूरत होती है आरजे रीना, जो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती है।
1: तो क्या ऐसे बच्चों के लिए अस्पताल में कोई खास इलाज होता है? जैसे मैंने फिल्मों में देखा है, वो कांच का डिब्बा जिसमें बच्चे को रखा जाता है, वो क्या होता है?
0: हाँ, उसे इनक्यूबेटर कहा जाता है। ये मशीन होती है जो बच्चे को जरूरी गर्म और सुरक्षित माहौल देती है, लेकिन समस्या ये है कि हर जगह ये उपलब्ध नहीं होती, खासकर हमारे गांव और दूरदराज इलाकों में। और हाँ, जहाँ उपलब्ध होती है वहाँ हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुँचाना मुश्किल हो जाता है।
1: तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है भैया? अगर मशीन भी नहीं है और बच्चों को खास देखभाल चाहिए, तो परिवार क्या करे?
0: यहीं पर कंगारू मदर केयर की उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी और चीज की। इसमें सिर्फ माँ का स्पर्श और उसका प्यार, उसका समय लगता है। माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखती है, जिससे बच्चे को गर्मी मिलती है, उसकी सांसें स्थिर रहती हैं और अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है, जो उस माँ के गर्भ से मिलती थी। और यही साधारण सा तरीका कई बार बच्चे की जान बचा देता है।
1: सिर्फ माँ के स्पर्श से? ये बात सुनने में तो बहुत ही अद्भुत लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में अभी भी ये सवाल उठ रही है कि ये आखिर संभव कैसे है? क्या सच में सिर्फ पास रखने से ही बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है?
0: देखिए आरजे रीना, यह कंगारू मदर केयर की खासियत है। इसका मतलब है कि बच्चे को माँ सीने से लगाकर सीधा रखती है, जिसे हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कहते हैं, जिसे कंगारू अपने छोटे बच्चों को अपने थैले में सुरक्षित रखता है। वैसे ही माँ अपने नवजात को अपने शरीर से लगाकर रखती है और इस दौरान बच्चे को ना केवल गर्मी मिलती है बल्कि उसे पूरी तरह सुरक्षा और सुकून भी महसूस होता है, जो उसके विकास के लिए बेहद ही जरूरी है।
1: ओहो, तो क्या इसका मतलब ये है कि बच्चे को गोद में ले लिया जाए वही काफी है?
0: नहीं आरजे रीना, सिर्फ गोद में लेना ही काफी नहीं है। इसमें खास बात यह है कि बच्चे को सीधा शरीर से लगाकर रखा जाता है, ताकि उसका पूरा शरीर माँ की त्वचा के संपर्क में रहे। इससे बच्चे को लगातार गर्मी मिलती है, उसकी से संतुष्ट रहती है और वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है। और ये एक तरीका बच्चे को वही माहौल देता है जैसे उसे गर्भ में मिलता था।
1: सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, जैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या ये तरीका सच में इतना असरदार है?
0: बिल्कुल आरजे रीना, बिल्कुल असरदार है। कई शोधों में ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों को कंगारू मदर केयर दी गई है उनकी मृत्यु दरें कम हो रही हैं और उनका वजन तेजी से बढ़ रहा है, वो ज्यादा स्वस्थ पाए गए हैं। यहाँ तक कि लंबे समय से भी ऐसे बच्चों के शरीर और मानसिक का विकास बेहतर देखा गया है।
1: मतलब एक माँ का साधारण सा स्पर्श एक बच्चे के जिंदगी बचा सकता है, ये सोच कर ही मन भर आता है।
0: बिल्कुल आरजे रीना, बिल्कुल। और इस साल का यह संदेश भी है, साइलेंस इज स्ट्रेंथ, यानी जब माँ शांत होकर बच्चे को अपने पास रखती है, उसे समय देती है, तो वही सादगी और स्थिरता बच्चे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है आरजे रीना।
1: वाह, ये बात

0: बात दिल को छू गई। सच में कभी कभी सबसे सरल चीजें ही सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। अच्छा सेहतिया जी, अब एक जरूरी सवाल, क्या ये तरीका घर पर भी अपनाया जा सकता है या सिर्फ अस्पताल में ही किया जाता है?
1: जी हाँ अर्चरीना, इसे घर पर भी किया जा सकता है। शुरुआत अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की सलाह से होती है, लेकिन जब माँ और बच्चा घर लौटते हैं तो वही इसे भी जारी रखा जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए और स्वास्थ्यकर्ताओं की सलाह जरूर ली जाए।
0: तो फिर इसे सही तरीके से करने का तरीका क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि सभी श्रोताएं समझ सके।
1: बिल्कुल अर्चरीना, इसमें बच्चे को माँ के सीने पर सीधा रखा जाता है, उसका सिर हल्का सा एक तरफ मुड़ा होता है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे को इस तरह रखा जाता है कि उसका शरीर स्वस्थ रहे और उसे कपड़े या दुपट्टे की मदद से अच्छे से बांध दिया जाता है ताकि वह हिले डुले नहीं और आराम से टिका रहे।
0: और इस दौरान बच्चे को खाना कैसे दिया जाता है?
1: अर्चरीना, इस दौरान सबसे जरूरी है कि बच्चे को केवल माँ का दूध ही दिया जाए। माँ का दूध ही उसके लिए सबसे अच्छा पोषण है। जो ताकत उसे माँ का दूध दे सकता है वो कोई और नहीं, और सबसे अच्छा पोषण होता है माँ का दूध, जो ताकत भी देता है, बीमारियों से भी बचाता है और उसके विकास में भी मदद करता है।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीका सिर्फ बच्चे को गर्म रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे जरूरी पोषण भी देता है। यानी एक ही तरीके से बच्चे की कई जरूरतें पूरी हो जाती है, जो सच में काफी खास बात है।
1: बिल्कुल अर्चरीना, आपने बिल्कुल सही समझा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि बिना किसी महंगे उपकरण के सिर्फ माँ को स्पर्श करके और माँ के दूध से बच्चे की सुरक्षा और पोषण और सुकून तीनों ही मिल जाते हैं।
0: अरे भैया, अब तो मेरा मन और जानने का हो रहा है, पर जरा विस्तार से बताइए कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं ताकि हमारे श्रोता भी इसे अच्छे से समझ सके।
1: देखिए अर्चरीना, जब कंगारू मदर केयर सही तरीके से दी जाती है तो बच्चे का शरीर का तापमान संतुलित रहता है, जिससे उसे ठंड लगने का खतरा कम हो जाता है, उसकी सांसें भी ज्यादा स्थिर और बेहतर हो जाती हैं। ऐसे में बच्चा आम तौर पर ज्यादा समय तक आराम से सोता है, कम रोते हैं और उनका वजन भी सामान्य तेजी से बढ़ता है। कुल मिलाकर उनका शरीर और मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है।
0: ये तो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसका असर माँ पर भी पड़ता है?
1: जी हाँ अर्चरीना, बिल्कुल पड़ता है। जब माँ अपने बच्चे को इस तरह से अपने पास रखती है तो उसका दूध बेहतर तरीके से बनने लगता है, साथ ही माँ और बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता भी बनता है, जो आगे चलकर बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। माँ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि माँ वो अपने बच्चे को अच्छे से उसकी देखभाल कर पा रही है।
0: वाह, ये तो सच में माँ का जादू ही हुआ, इतनी साधारण से चीज लेकिन असर इतना गहरा। अच्छा सेहतिया भैया, एक बात मेरे मन में आ रही है, हम बार बार माँ की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या इसमें पिता की भी भूमिका होती है या ये पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही होती है?
1: अर्चरीना, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर हम यही सोचते हैं कि नवजात की देखभाल सिर्फ माँ का काम है, लेकिन सच तो यह है कि पिता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। कंगारू केयर सिर्फ मदर केयर तक सीमित नहीं है, कई बार इसे कंगारू पेरेंट केयर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर माँ किसी कारण से उपलब्ध ना हो या थकी हुई हो तो पिता भी अपने सीने से लगाकर यही केयर दे सकते हैं।
0: अच्छा, मतलब पिता भी अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर वही फायदे दे सकते हैं जो माँ देती है?
1: जी हाँ अर्चरीना, पिता का शरीर भी बच्चे को गर्मी देता है, उसकी सांसों को स्थिर करने में मदद करता है और बच्चे को सुरक्षा का एहसास कराता है। इसके अलावा जब भी पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उनका बच्चा उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत मजबूत होता है।
0: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पिता थोड़ा दूर रहते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए।
1: देखिए आरजी रीना, बिल्कुल, और यही सोच बदलने की जरूरत है। जब पिता इस तरह से बच्चे के करीब आते हैं तो ना सिर्फ बच्चे को फायदा होता है बल्कि पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वो भी अपने बच्चे की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और परिवार का माहौल सकारात्मकता से भरा होता है और माँ को भी आराम और सहयोग मिलता है।
0: तो साथियों, ये बात बहुत जरूरी है कि हम नवजात की देखभाल को सिर्फ माँ तक सीमित ना रखे। अगर पिता भी इसमें शामिल होते हैं तो बच्चों को दुगना प्यार और देखभाल मिलता है। लेकिन सेहतिया भैया, हर चीज के साथ कुछ सावधानियाँ भी जरूरी होती हैं। क्या कंगारू मदर केयर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: बिल्कुल, कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कंगारू केयर दी जाए तो उस समय मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखें ताकि पूरी तरह बच्चे पर आप फोकस रहें। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कोई तेज खुशबू या परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। साथ ही जिस जगह बच्चे को रखा जा रहा है यानी छाती का हिस्सा, वह भी साफ और स्वच्छ होना चाहिए। आरजेडीना,
0: ओहो, और इसे कितने देर तक करना चाहिए? क्या इसका कोई समय होता है?
1: कम से कम आर्जेरीना 1 घंटा तो इसे लगातार ही करना चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा समय दिया जा सके उतना ही बेहतर होता है। कई मामलों में परिवार दिन में कई घंटे तक भी इसे जारी रखते हैं जिससे बच्चे को लगातार फायदा मिलता है।
0: सेहतिया भैया, आज की बातचीत ने सच में मेरी सोच बदल दी। शुरुआत में थोड़ा झिझक थी और समझ नहीं पा रही थी कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, यही तो हमारा मकसद है, जानकारियों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना ताकि हर परिवार अपने बच्चे की बेहतर देखभाल कर सके। और अगर कोई भी बच्चा सिर्फ जानकारी के अभाव में अपनी जिंदगी ना खोए।
0: साथियों, अगर आपके घर में कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या उसका वजन कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंगारू मदर केयर अपनाइए और अपने नजदीकी डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता से सही जानकारी जरूर ले। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी महंगी मशीन में नहीं बल्कि माँ के प्यार और उसके स्पर्श में होता है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी ताकत शांति, धैर्य और अपनापन ही होता है। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं आज की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य और सेवाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त होगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही, लाभ कई। श्रोताओं, मिलेंगे फिर आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
5: टायर लो, सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
8: अपोजिट
7: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
9: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
10: बलपुर ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
11: कॉल 8826213131

0: सभी श्रोताओं का हमारी सेहत की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। सेहत सही लाभ कई के एक नए एपिसोड में स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। और आजकल हर जगह पोषण माह की चर्चा हो रही है, लेकिन सच बताऊँ पोषण शब्द सुनते तो हैं, हम समझते कम हैं। हम सोचते हैं पेट भर गया है मतलब पोषण पूरा हो गया है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेहतिया भैया और साथ में एक पोषण विशेषज्ञ भी हैं, जो हमें बताएंगे कि सेहत भोजन कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। सेहतिया भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरजे खुशी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी अस्पताल में नहीं रसोई में शुरू होती है और स्वास्थ्य भी वहीं से बनता है।
0: वाह क्या बात कही आपने, लेकिन सच बताऊं कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसने मुझे बहुत चिंतित कर दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार हमारे देश में 6 महीने से 5 साल तक के 67.1% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। इतने छोटे बच्चों में खून की कमी, ये कैसे हो सकता है?
1: यही तो पोषण की असली तस्वीर है, और यह समस्या सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में भी 59% से ज्यादा एनीमिया है, और गर्भवती महिलाओं में लगभग 52%। इसका मतलब यह है कि हमारे भोजन में कहीं ना कहीं बहुत कमी है।
0: तो क्या इसका मतलब यह है कि हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन सही पोषण नहीं मिल पा रहा है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे, पोषण सिर्फ खाना नहीं सही संतुलित भोजन है। शरीर को ऊर्जा, ताकत, दिमागी विकास, बीमारी से बचाव सब भोजन से ही मिलता है। भोजन हम खाते हैं वही हमारे खून, हड्डियों, मांसपेशियों और दिमाग को बनाता है।
0: तो सबसे आसान भाषा में बताइए पोषण आखिर होता क्या है?
1: पोषण का मतलब यह है कि पोषण का सही मतलब है संतुलित भोजन जो शरीर की जरूरत पूरा करे। भोजन से मिलने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
0: ये थोड़ा कठिन लग रहा है, जरा आसान करके समझाइए।
1: देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी बड़े पोषण तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर का ढांचा बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी विटामिन, खनिज जैसे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत जरूरी होते हैं।
0: मतलब अगर भोजन में विविधता नहीं होगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। स्वास्थ्य आहार 4 सिद्धांतों पर आधारित होता है, पर्याप्तता, संतुलन, संयम और विविधता। यानी भोजन इतना हो कि जरूरत पूरी हो, ऊर्जा संतुलित हो, हानिकारक चीजें सीमित हो और खाने में विविधता हो।
0: गांव में लोग कहते हैं कि पोषण वाला खाना महंगा होता है।
1: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे गांव की दाल, बाजरा, ज्वार, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, ये सब सबसे अच्छे पोषण देते हैं। महंगा पैकेट वाला खाना पोषण नहीं देता बल्कि कई बार बीमारी दे जाता है।
0: तो शरीर को ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है?
1: कार्बोहाइड्रेट से, साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कुछ ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं से तो आता है।
0: और प्रोटीन?
1: प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है, मांसपेशियां बनाता है, दाल, चना, दूध, अंडा, ये सब सब अच्छे स्रोत है। शाकाहारी भोजन से भी पूरी प्रोटीन मिल सकता है।
0: बसा यानी फैट को लोग अक्सर बुरा मानते हैं।
1: जरूरी नहीं है, शरीर को कुछ वसा चाहिए लेकिन सही वसा सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी तेल बेहतर है। ज्यादा घी, तला भोजन और ट्रांस फैट नुकसान कर सकते हैं।
0: आजकल गांव में भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ रही है, क्या इसका संबंध भोजन से है?
1: बिल्कुल, इसका बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि ज्यादा नमक, चीनी, प्रोसेस फूड, प्रोसेस भोजन कहा जाता है, ये इनकी बड़ी वजह है। नमक दिन में 5 ग्राम से कम होना चाहिए, ज्यादा नमक दिल की बीमारियां बढ़ा सकता है।
0: फल और सब्जियों का कितना सेवन जरूरी है?
1: वैसे तो आमतौर पर हर व्यक्ति को रोज लगभग कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां लेनी चाहिए। इससे शरीर को फाइबर, विटामिन और खनिज मिलते हैं।
0: बच्चों के लिए पोषण कितना महत्वपूर्ण है?
1: जीवन के पहले 1000 दिन गर्भ अवस्था से लेकर बच्चों के 2 साल तक सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही समय दिमाग और शरीर का विकास करने के लिए सबसे फायदेमंद और सबसे तेज बनाता है दिमाग।
0: तो शिशु को क्या खिलाना चाहिए?
1: पहले कुछ महीने केवल माँ का दूध, इसके बाद घर का बना अर्ध ठोस भोजन जैसे कि खिचड़ी, दाल सब्जी फल। नमक और चीनी नहीं डालनी चाहिए इसमें।
0: गांव में एक धारणा है कि कुपोषण प्रोटीन की कमी से होता है।
1: असल में अधिकतर मामलों में ऊर्जा की कमी होती है, यानी बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं खा रहा होता है। दाल रोटी भी सही मात्रा में अगर बच्चे को मिले तो वह स्वस्थ रह सकता है।
0: और गर्भवती महिलाओं को पपीता या केला नहीं खिलाना चाहिए, ये बात सही है?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। ये फल सुरक्षित है और विटामिन से भरपूर है। ऐसी मिथक महिलाओं को पोषण से दूर कर देती।
0: सरकार इस दिशा में क्या कर रही है?
1: जैसे कि आपने सुना होगा, 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों में हिग्नापन, कुपोषण, अनीमिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में हर महीने पोषण गतिविधियां होती हैं, पोषण बैठक, स्वास्थ्य जांच, जागरूकता कार्यक्रम, ये सब चलते रहते हैं।
0: सुना है तकनीकी भी इस्तेमाल हो रही है?
1: जी बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे पोषण ट्रैकर ऐप से बच्चों और माताओं की जानकारी रियल टाइम में दर्ज की होती है, इससे सेवाएं सही लोगों तक पहुंच पाती है।
0: महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन कैसा होना चाहिए?
1: अनाज, दाल, दूध, हरी सब्जियां, फल रोजाना भोजन का हिस्सा होना चाहिए। तेल सीमित मात्रा में लें, तला हुआ ज्यादा मीठा और पैकेट स्नैक्स कम करें।
0: आजकल बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं।
1: जी हाँ, यही तो भविष्य की बीमारी का कारण बनेंगे। बच्चे की आदतें पूरी जिंदगी चलती हैं, इसलिए घर का खाना सबसे बड़ा निवेश है।
0: सेहतिया भैया, क्या भोजन से गंभीर बीमारियां भी रोकी जा सकती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। स्वस्थ आहार मधुमेह, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और कैंसर तक के खतरे को कम कर सकता है। यानी सही भोजन दवा से भी बड़ा बचाव है।
0: सेहतिया भैया, आपने अभी कहा कि सही पोषण सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना है जिससे हमारे श्रोता जुड़ सके?
1: हाँ आरजे खुशी जी, मैं आपको हमारे ही इलाके की एक लड़की आरती की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सिर्फ आरती की ही नहीं बल्कि हमारे देश की हजारों बेटियों की कहानी है।
0: जरूर सुनाइए, मुझे लगता है श्रोता भी बहुत ध्यान से सुनना चाहेंगे।
1: जी बिल्कुल। आरती एक छोटे से गांव में रहती थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, काम में तो मन कितनी तेज थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर में अक्सर यही सोच रहती थी कि पेट भर खाना मिल जाए, बस यही काफी है।
0: यानी भोजन तो मिल रहा था लेकिन पोषण पर ध्यान नहीं था।
1: बिल्कुल, आरती सुबह चाय और बची हुई रोटी खाकर स्कूल चली जाती थी। दिन में कभी नमक रोटी तो कभी सिर्फ चावल। हरी सब्जियां या फल बहुत कम मिलते थे। परिवार को लगता था कि वे ये सब शौक की चीजें हैं, जरूरी नहीं।
0: और इसका असर कब दिखना शुरू हुआ?
1: इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। जैसे आरती जल्दी थकने लगी, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती थी, अक्सर चक्कर आते थे, लेकिन घर वाले कहते कमजोरी तो लड़कियों में होती ही है।
0: ये बात तो आज भी कई जगह सुनने को मिलती है।
1: हाँ, और यही सबसे बड़ा खतरा है। कुछ साल बाद आरती को शादी हो गई, शादी के बाद वह गर्भवती हुई, लेकिन उसके शरीर में पहले से ही खून की कमी थी जिससे किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं।
0: क्या उसने जांच नहीं करवाई?
1: पहले तो नहीं करवाई, उसे लगता था कि सब ठीक है, लेकिन गर्भ व्यवस्था के चौथे महीने में उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। एक दिन खेत में काम करते करते वे बेहोश तक हो गई थी। उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, वहाँ जाँच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, गंभीर अनीमिया पाया गया। डॉक्टर ने परिवार से कहा अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो माँ और बच्चे को खतरा हो सकता है।
0: यह सुनकर तो परिवार घबरा गया होगा ना?
1: हाँ, पहली बार में उन्हें समझ ही नहीं आया कि पोषण कोई छोटी बात नहीं है। डॉक्टर ने आयरन की गोलियां दी, पोषण आहार समझाया, हरी सब्जियां, दाल, गुड़, चना, मूंगफली, दूध और नियमित जांच भी बताई।
0: क्या आरती ने सलाह मानी?
1: शुरू में मुश्किल हुई, उसे गोलियों से हल्की मिचली होती थी, लेकिन आशा दीदी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने समझाया कि यह सामान्य है और दवा जारी रखना जरूरी है। परिवार ने भी धीरे धीरे भोजन में बदलाव किया।
0: मतलब पूरा परिवार सीखने लगा।
1: जी हाँ, घर में पहली बार रोज हरी सब्जी बनने लगी, गुड़ और चना नाश्ते में शामिल हुआ, आरती को आराम करने दिया जाने लगा।
0: फिर प्रसव के समय क्या हुआ?
1: नियमित देखभाल और बेहतर पोषण की वजह से स्थिति संभल गई। कुछ महीनों बाद आरती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा अगर समय पर सुधार नहीं होता तो परिणाम बहुत गंभीर भी हो सकते थे।
0: यानी सही समय पर पोषण ने दो जिंदगियां बचा दी।
1: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, आरती खुद अब गांव में महिलाओं को समझाती है। वो कहती है, मैंने कमजोरी को सामान्य समझकर गलती की, अब कोई और ये गलती ना करे।
0: वाह, ये तो सच में प्रेरणादायक कहानी है।
1: हाँ, आज आरती अपने बच्चों को समय पे स्तनपान कराती है, पूरक आहार देती है और गर्भवती महिलाओं को जांच और पोषण की सलाह भी देती है।
0: तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या है?
1: सीख तो बहुत साफ है, कमजोरी किस्मत नहीं होती, अक्सर पोषण की कमी होती है। सही भोजन, समय पर जांच, सरकारी सेवाओं का उपयोग जीवन बचा सकता है।
0: दोस्तों, आरती की कहानी हमें बताती है कि पोषण कोई बड़ी या महंगी चीज नहीं है, ये छोटी छोटी रोज आदतों से बनता है।
1: और याद रखिए, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ पीढ़ी की नींव है।
0: धन्यवाद सिहतिया भैया, सच में ये कहानी दिल को छू गई और बहुत बड़ी सीख दी गई।
1: बिल्कुल, स्वस्थ माँ मतलब स्वस्थ पीढ़ी।
0: तो अंत में श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
1: विविध भोजन खाइए, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त भोजन दीजिए, 6 महीने तक केवल स्तनपान कराएं, बच्चों को घर का पौष्टिक भोजन दीजिए, नमक चीनी कम कीजिए और रोज सक्रिय रहिए।
0: दोस्तों, हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे, साफ सफाई अपनाएंगे, नियमित जांच करवाएंगे और संतुलित आहार अपनाएंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तभी देश मजबूत होगा।
0: इसी संदेश के साथ आपकी आरजे आपसे अलविदा लेती है, पर जाने से पहले लेंगे हम अपनी सेहत की शपथ, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वस्थ को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
1: व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सके,
0: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही
0: लाभ कई, धन्यवाद। सेहत सही तो लाभ कई, धन्यवाद। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।
2: अरे सुना होगा वो शहर
3: के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा CRPF BSF CISF ITBP और SSB के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नागरिक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम सोच बदलो में। जी हाँ श्रोताओं, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और श्रोताओं, आज सोच बदलो प्रोग्राम में हम बात करेंगे समाज के उन छोटी छोटी बातों को जो हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालती है, उन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस प्रोग्राम में मैं अकेला आपका साथ नहीं दे रहा हूँ, मेरा साथ निभाने के लिए कुमकुम मेरी प्यारी सी दोस्त मौजूद है इस प्रोग्राम में। हेलो कुमकुम, आप कैसे हो?
1: हेलो अनन, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी बहुत अच्छे हैं।
0: बिल्कुल, हम जब अपने श्रोताओं से बात करने आते हैं तो हमारे अंदर चाहे कितनी भी ज्यादा टेंशन चल रही हो, लेकिन यहाँ स्टेशन में आके सब भूल जाते हैं और सब मधुर मधुर हो जाता है। क्यों, सही कहा ना?
1: बिल्कुल, मैं जिस टेंशन के साथ आई थी मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि मुझे दिक्कत क्या थी।
0: यार यही तो रेडियो की एक पावर होती है कि आप जो मर्जी मतलब जो है सोच लो, लेकिन जैसे ही माइक ऑन बटन ऑन आपकी टेंशन छू मंतर, मतलब ऐसा लगता है कि एक नया जन्म ले लिया है हमने थोड़े टाइम के लिए। करेक्ट?
1: या बिल्कुल, ऐसा लगता है कि हम नहीं है, कुछ नए जनरेट हो गया है।
0: एब्सोल्युटली सही कहा। सो चलिए श्रोताओं, आज जो है इस प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाएंगे और आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में सोच बदलो प्रोग्राम में मोबाइल की दुनिया या रिश्तों की दूरी।

0: दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से वेलकम बैक करते हैं आपका। मैं आनंद और मेरे साथ है कुमकुम। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। सोच तो हमारी बदलेगी दोस्तों, जब हम प्रयास करेंगे छोटी छोटी चीजों को बदलने का तो सोच तो बदल ही जाएगी। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। दोस्तों, आज हर हाथ में मोबाइल है, लेकिन क्या दिलों में दूरी बढ़ रही है? घर में सब साथ बैठते हैं लेकिन बातें कम और स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है। तो आज हम इसी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। मैं यानी आनंद और मेरे साथ कौन है जी?
1: कुमकुम, आप सभी की प्यारी दोस्त
0: जी। तो कुमकुम, बताओ जरा, अभी जैसे मैंने जिक्र किया यहाँ पर कि आजकल जो है ना, हर घर में हर हाथ में मोबाइल है और साथ में बैठे हैं फिर भी दिलों में दूरियां हैं, उसका रीजन मोबाइल ही है क्या?
1: हाँ जी, राइट। हमारे बीच बातचीत कम हो चुकी है। सास बैठी है, ससुर बैठे हैं, या मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, लेकिन कभी भी हम एक दूसरे से बातें करने की जगह अपने फोन में घुसे रहते हैं, जिससे लोग देखते हैं कि हाँ, एक साथ होने के बाद भी, एक कमरे में होने के बाद भी आपस में एक फोन की वजह से कितनी दूरियां हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, सही कहा कुमकुम जी ने, और ये मुझे लगता है कि हर घर की कहानी हो गया है मोबाइल। मोबाइल जब से आया है ना, बहुत सारे फायदे तो हुए हैं मोबाइल आने के, बट कहीं ना कहीं जो रिश्तों में गर्मियां थी, जो अपनेपन का एक एहसास था, वो भी कम हुआ है। और आज इसी प्रोग्राम के जरिए हम बात करेंगे इस मोबाइल से और रिश्तों में जो एक दूरियां बनी है मोबाइल के आने की वजह से, क्या सच में ये बिल्कुल सच है और बिल्कुल सही है? क्या सही में मोबाइल आने से हमारे आपस के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहे हैं? इसी पर मैं और कुमकुम आपसे लगातार बात कर रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, आप सुनते हैं जिसे आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी स्टोरी। एक परिवार था, मम्मी खाना बना रही थी, पापा ऑफिस के काम में मोबाइल पर व्यस्त थे, बेटा गेम खेल रहा था और बेटी रील देख रही थी। दादी ने कहा, अरे कोई 5 मिनट भी मेरे पास बैठ जाओ, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अचानक से कुछ देर बाद घर की बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगी और तब सब एक दूसरे से बात करने लगे। हंसी मजाक हुआ, पुरानी बातें हुई और दादी मुस्कुराकर बोली, देखो असली नेटवर्क तो दिलों का होता है। जी हाँ श्रोताओं, तो ये कहानी नहीं है, दरअसल ये हमारे और आपके जीवन की एक सच्ची घटना है। और आज सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए मैं और कुमकुम जी आपसे इसी विषय पर बात कर रहे हैं। लगातार ये मोबाइल आने से बहुत सारे फायदे हुए हैं मेरे और आपके जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा है हमारे रिश्तों पर। साथियों, आप क्या सोचते हैं इन बातों से, आप जरूर हमें बताइएगा हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके। हमारा इंस्टा हैंडल आपको मिलेगा रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से, आप मुझे ढूंढ सकते हैं, या हमारी ऑफिशियल आईडी आप फॉलो करें FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से। श्रोताओं, आगे और भी बातचीत हम जारी रखेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन इससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी कि एक छोटू सा म्यूजिकल ब्रेक। उसके बाद मैं और कुमकुम पुनः आपसे मिलेंगे इसी प्रोग्राम में। जुड़े रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। हेलो जी, नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक, और मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त
2: प्राची।
1: यस, और प्राची, आज हम पता है किस चीज की बात करने वाले हैं?
2: हाँ, किस चीज की बताइए?
1: आज हम बात करने वाले हैं गोंडा के दही बड़े और खस्ता कचौड़ी की।
2: अरे वाह, तो शुरू करते हैं जल्दी।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं गोंडा की गलियों में, जहाँ की हर सुबह उम्मीद लेकर आती है, जहाँ की परंपराएं आज भी दिलों में बसती है, जहाँ स्वाद में संस्कृति है और विकास में एक नई पहचान, जहाँ छोटे छोटे हुनर बन रहे हैं बड़े सपनों की उड़ान। ये है नया उत्तर प्रदेश, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की उन कहानियों से जो सिर्फ विकास का नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा, स्वाद और आत्मनिर्भरता की मिसाल है।
2: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने भीतर एक अलग रंग, एक अलग खुशबू और एक अलग पहचान समेटे हुए है। कहीं चिकनकारी, कहीं बनारसी साड़ी, कहीं पेड़ा, कहीं इत्र और कहीं ऐसा स्वाद जो बरसों तक रह जाए याद।
1: और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे ही जिले में जहां की सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म खुशबू से, जहां गलियों में स्वाद बसता है और जहां हर निवाला अपने पन का एहसास देता है।
2: जी हाँ दोस्तों, आज का एहसास हमारा खास पड़ाव है गोंडा, और आज यहाँ बात होगी यहाँ के मशहूर दही बड़े और खस्ता कचौड़ी, जो अब एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के जरिए एक नई पहचान हासिल कर रहे हैं।
1: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ गोंडा की गलियों तक सीमित था, आज वह स्वाद पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपनी खुशबू फैला रहा है, क्योंकि ये है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी, नई

0: दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त, हल्की हल्की ठंडी, सड़क के किनारे दुकान से उठती देसी घी की खुशबू और कढ़ाई में छनती हुई खस्ता कचौड़ी,
1: और सामने बड़ी सी भगौनी में रखा मुलायम दही बड़े, ऊपर से ठंडा ठंडा दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक।
0: अरे बस बस, सुनते मुँह में जैसे पानी ही आ गया है।
1: दोस्तों गोंडा का दही बड़ा सिर्फ एक व्यंजन ही नहीं बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी की पहचान है। किसी के घर मेहमान आए हो, कोई त्योहार हो, शादी हो या फिर शाम की छोटी सी दावत, दही बड़े हर खुशी का हिस्सा बन जाते हैं।
0: यह दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद ही खास होती है। उड़द की दाल को घंटों तक भिगोया जाता है, फिर उसे बारीक पीस कर फेटा जाता है ताकि बड़ा एकदम मुलायम बने।
1: और कई दुकानदार तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की हल्की स्टफिंग भी करते हैं ताकि स्वाद में आपका रॉयल टच बना रहे।
0: और फिर बड़े को सुनहरा होने तक तला जाता है और बाद में ताजी मलाईदार दही में डुबो दिया जाता है।
1: ऊपर से मीठी इमली की चटनी, हरा धनिया की चटनी, भुना जीरा, चाट मसाला और अनार के दाने।
0: वाह वाह, सच कहें तो जैसे गोंडा के दही बड़े सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल जीत लेते हैं।
2: ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना ODOC आपके गोंडा जिला में दही बड़ा और कचौड़ी का चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
3: नमस्कार, हमें इस पता लगा कि हमारे दही बड़े का चयन गोंडा जिला के अंतर्गत और कचौड़ी का चयन हमारे गोंडा जिला के अंतर्गत ODOC योजना में चयन हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। और इसके बारे में यही कहा जाएगा, जहां तक हमको जो जानकारी मिली है, प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जो छोटे व्यापारियों को, मझोले व्यापारियों को जो जिला स्तर पे अच्छा खाद्य पदार्थ बनाते थे उनको सम्मान मिला है, उनको प्रोत्साहित करने की योजना है।
2: चलिए बताइए, इस योजना से आपको व इस व्यापार के लोगों को, जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा?
3: इस योजना से हमें तो बहुत लाभ होगा और हमारे साथ जो व्यापार में, इस व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लाभ होगा, जिससे कि ये कल्याणकारी योजना है, छोटे व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजना है। और इससे जुड़े हर जिले में जो अहम खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य आइटम, मशहूर खाद्य पदार्थ है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग, मतलब जो भी सरकार से हर तरीके का हर संभव मदद मिलती है, लोन संबंधी हो या हर तरीके का, सरकार उसमें मदद कर रही है। और छोटे व्यापारियों को जो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे उनको प्रोत्साहित करके फ्रंट पर ला रही है।
1: और अब बात करते हैं गोंडा की दूसरी पहचान, खस्ता कचौड़ी की।
0: दोस्तों गोंडा पर अवध संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है और अवध की रसोई हमेशा से अपने नसाफत से भरे स्वाद और मसालों के लिए मशहूर रही है।
1: यही वजह है कि यहाँ की कचौड़ी भी साधारण नहीं बल्कि बेहद खास होती है।
0: इसकी भराई में उड़द दाल, हींग, धनिया, सौंफ, काली मिर्च और कई देसी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है
1: और फिर इसे धीमी आंच पर तक पकाया जाता है जब तक बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार ना हो जाए।
0: गोंडा में सुबह सुबह दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और ये एक आम बात है, कोई चाय के साथ कचौड़ी खा रहा है तो कोई दोस्तों के संग नाश्ते का आनंद ले रहा है।
1: और सबसे मजेदार बात, यहाँ कचौड़ी सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है।
0: दोस्तों गोंडा में लगभग 100 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयों में 400 से अधिक कारीगर इस कारोबार से जुड़े हैं।
1: यानी ये स्वाद सिर्फ लोगों की पसंद नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी भी है।
0: और अब बात उस पहल की जिसने गोंडा के इन पारंपरिक स्वादों को एक नई पहचान दी है।
1: जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना।
0: क्या बात है, इस योजना का उद्देश्य है हर जिले की खास पहचान को आगे बढ़ाना, स्थानीय हुनर को मंच देना और छोटी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाना।
1: गोंडा की दही बड़े और खस्ता कचौड़ी को भी इसी योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
0: सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सपोर्ट सपोर्ट और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, अब वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़े बाजारों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार स्थानीय कारोबार, पारंपरिक व्यंजन और छोटे उद्यमी को प्रोत्साहित कर रही है
1: और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। गाँव और कस्बों के लोग अब अपने हुनर से नई पहचान बना रहे हैं।
0: दोस्तों, किसी भी प्रदेश की असली पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं होती,
1: बल्कि वहाँ के लोगों, उनकी मेहनत, उनकी संस्कृति और उनके स्वाद से होती है।
0: गोंडा का दही बड़ा और खस्ता कचौड़ी इसी की पहचान का हिस्सा है। श्रोताओं,
1: एक ऐसा स्वाद जो परंपरा से जुड़ा है और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: बढ़ती लागत, साफ सफाई बनाए रखना, कम सेल्फ लाइफ और कुशल कारीगरों की कमी,
1: लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार इन चुनौतियों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं।
0: नई तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट के जरिए छोटे व्यापारियों को मजबूत बनाया जा रहा है,
1: ताकि गोंडा का स्वाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी खास पहचान बना सके।
0: अगर अभी हमारे सामने गर्मा गर्म कचौड़ी आ जाए ना, तो मैं इंटरव्यू छोड़कर सीधा प्लेट पकड़ लूंगा।
1: और अगर साथ में दही बड़ी भी मिल जाए
0: तो भाई फिर शो खत्म होने तक कोई बात ही नहीं करेगा, सिर्फ खाने की आवाज आएंगी।
1: दोस्तों, अगर आप कभी गोंडा जाए, वहाँ की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी का स्वाद जरूर,
0: और अगर आपने पहले से खाया है तो हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया,
1: क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने की चीज नहीं, यादों का भी हिस्सा होता है।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे गोंडा का पारंपरिक स्वाद आज विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है,
1: कैसे छोटे कारोबार बड़े सपनों में बदल रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश का हर जिला अपनी नई पहचान बना रहा है।
0: हम फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और जिले की नई कहानी के साथ, नए स्वाद के साथ और नई संस्कृति और नए विकास के साथ। तब तक सुनते रहिए विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, और फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत। मैं आनंद और मेरे साथ
1: प्राची,
0: जल्दी आपको मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।
1: बाय बाय।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ,
6: चावला टायर
4: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
0: अपोजिट
6: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
0: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम।
3: मत ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के

0: इस प्रोग्राम में मैं और कुमकुम आपके साथ हैं और आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल और रिश्तों की दूरियों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल और ये आने से चीजें, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, अच्छी हुई हैं, नो डाउट टेक्नोलॉजी हमारी यूज के लिए बनी है, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज वेरी अमेजिंग, बट कहीं ना कहीं हमारे जो रिश्तों में गर्माहट थी, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो कम होती जा रही है और उसकी वजह क्या मोबाइल है? मुझे तो ऐसा लगता है हाँ, अगर मोबाइल है तो फिर हमें अपनी सोच बिल्कुल बदलना चाहिए। वैसे कुमकुम आपका क्या मानना है, क्या सच में मोबाइल हो सकता है रिश्तों की दूरियों की वजह?
1: हाँ जी, जरूर हो सकता है, क्योंकि जब हम एक साथ बैठे होते हैं और उसके बाद भी आपस में बातें ना करके, आपस में टाइम ना दे के हम मोबाइल चलाएं, तो वो हमारी रिश्तों में दूरी ही लाता है। आनंद, आप खुद ही सोचिए जरा, क्या आपने भी कभी परिवार के साथ बैठकर मोबाइल का उपयोग किया है, मोबाइल को समय दिया है?
0: अच्छा, ओके, मतलब कुमकुम मुझसे ये पूछना चाह रही है कि क्या आपने कभी अपने परिवार के साथ बैठते हुए मोबाइल का इस्तेमाल किया है? करेक्ट। देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल तो ऑफकोर्स करते हैं यार, क्योंकि आजकल ना 95% जो काम हो गए हैं ना, सब मोबाइल पे हो गए हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, सारी चीज़ें डिजिटली प्लान्ड हो गई हैं, सो ऑलमोस्ट हर एक चीज़, हर बंदा मोबाइल से ही सर्वाइव कर रहा है, नो डाउट। बट सी, अगर हम परिवार के साथ हम लंच पे हैं, डिनर पे हैं या ब्रेकफास्ट पे हैं, फिर हम किसी और मीटिंग के लिए बैठे हैं अपने परिवार के साथ, एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम परिवार के साथ हैं तो फिर हमें परिवार को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। मोबाइल पे रील स्क्रॉल करने का जो टाइम है ना, वो एक अलग सेट कर सकते हैं हम, बस यही सोच बदलनी है श्रोताओं हमें। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसका एक पैरामीटर सेट करो कि आपने कब मोबाइल देखना है, और मैं तो कहता हूं अगर आप देख भी रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आपके परिवार के साथ बैठना है तो अपने परिवार के साथ बैठ के अच्छी अच्छी चीज़ों पर आप बात कर सकते हो, बहुत सारे डिस्कशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। और आजकल ना मोबाइल के आने से एक चीज़ तो है यार, जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो अपने लोग हैं ना, मतलब एक ही फैमिली में 10 लोग हैं, अपने अपने रूम में बैठे हैं, मम्मी को अगर आवाज़ लगानी है तो वो अब व्हाट्सएप करके बोलती हैं, बेटा नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है, बेटा लंच रेडी है, नीचे आ जाओ। एक टाइम था जब हमारी माँ किचन से आवाज़ें मारा करती थी और हम भागे चले आते थे। मान लीजिए श्रोताओं, या कुमकुम आप ही मान लो, अगर एक दिन के लिए फ़ोन बंद हो जाए तो आप अपने दिन को कैसे सेलिब्रेट करोगे? क्या करना चाहोगी अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, पूरा फोन बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, बिल्कुल हम बिल्कुल फ्लैश बैक में चले जाए एकदम पुराने जमाने में, तो आप क्या करोगी अगर मोबाइल नहीं होगा तो?
1: पहले कुछ टाइम के लिए तो सोचूंगी कि ये क्या हो गया, हाँ, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है,
0: क्योंकि एक तो एक्चुअली ना हमारी हैबिट हो गई है,
1: हैबिट हो गई है, और ऊपर से हमारी छोटी छोटी चीजें, सुबह को उठ के सबसे पहले फोन देखना और बाकी चीजें कॉन्टेक्ट करना, आज किस काम में क्या है, सारी डिटेल्स हम फोन में रखने लगे हैं।
0: करेक्ट। और दूसरों की लाइफ भी ताका झाकी करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू,
1: कहीं
0: ना कहीं, है ना,
1: तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम,
0: 100%। अगर एक दिन के लिए फिर भी फोन बंद हो जाए, सो प्लीज टेल अस, आप अपने दिन को कैसे बताओगी, मतलब क्या करना चाहोगी?
1: जैसे कि पुराने दिनों में कहा जाता था कि हाँ, खेत के पास जाना चाहिए, पेड़ों की छांव में बैठना चाहिए, दोस्तों के साथ मस्ती करनी चाहिए, तो मैं उन पुराने दिनों में वापस जाना चाहूंगी।
0: बहुत बढ़िया। और अगर मुझे ये मौका मिलेगा सच में श्रोताओं, तो मैं तो अपनी नानी के घर भाग जाऊंगा अपना बैग पैक करके। मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे को नानी के घर पे जाना छुट्टियों में बड़ा अच्छा लगता था, आजकल तो खैर बड़ा जमाना डिफरेंट हो गया, नानी दादी के घर तो अब कोई जाना ही नहीं चाहता, सबको दिल्ली, मुंबई और सारे मेट्रो सिटीज में भागना है। आई नो दैट अपॉर्चुनिटीज आपको वहां मिलती है, लेकिन श्रोताओं रुकिए जरा, फिर से थमिए, सोच बदलने की जरूरत है, सब कुछ वैसा के वैसा ही है, बस जरूरत है एक चीज की, वो है मोबाइल से डिस्टेंस की। और सबसे जरूरी चीज पता है क्या है दोस्तों, भावना जी, आजकल जो मैं देखता हूं लोगों में, स्पेशली मम्मी पापा में ये चीज़ नोटिस करता हूँ मैं, जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, आई एम श्योर दोस्तों आप भी ये चीज़ नोटिस करते होंगे, नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जब मम्मी पापा को बस में, ट्रेन में डिस्टर्ब करते हैं, तो ना मॉम डैड उन्हें चुप कराने के लिए सीधा मोबाइल पकड़ा देते हैं, और वो बच्चे मोबाइल पर वीडियो गेम देख रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फैमिली को, पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है, वो जो भी कर रहे हैं व्हाटएवर उन्हें करने दो, मतलब पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि स्टिल हम फ्री हो जाएं और बच्चे जो देख रहे हैं देखने दो। तो भाई मैं तो, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के सामने खुद मम्मी पापा फोन चला रहे होते हैं, आपने भी देखा होगा कि इवन कई बारी हम किसी किट्टी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं, तो वहां मम्मी का मेकअप खराब ना हो जाए, बच्चा उसे परेशान ना कर दे, मम्मी खुद फोन का इस्तेमाल करने लगती है या बच्चों को पकड़ा देती है फोन। तो गाइज, फोन से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, ये फोन ही है जो आपकी और मेरी जिंदगी को आसान बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों का भी अंत कर रहा है ये मोबाइल। तो भैया, मोबाइल फोन को चलाना है जरूरी, लेकिन डिस्टेंस के साथ मेंटेन करना भी जरूरी है। फिलहाल श्रोताओं, बातचीत तो चलती रहेगी, अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, हम पुनः लौटेंगे इस प्रोग्राम में, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए सोच बदलो प्रोग्राम आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। कुमकुम और आनंद के साथ आप बने हुए इस प्रोग्राम में, और बाकी अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें साझा कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से ऑफिशियल आईडी मिलती है, प्लीज फॉलो कीजिए, वहां पर आके आप बताइए आपको हमारे

के प्रोग्राम कैसे लगते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896। चलिए रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, उसके बाद फिर पुनः लौटेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत, और इस गीत को सुन के वाकई में ही आनंद आ गया और मैं तो फ्लैश बैक में चला गया। आपको पता है कुमकुम, एक समय होता था जब लोग कहते थे अरे भाई चुप कर यार, कितना बोलेगा, और आज की डेट में लोग बोलते हैं अरे भाई कुछ तो बोल यार, चुप क्यों है, क्यों मोबाइल की दुनिया में घुसा रहता है हर टाइम, थोड़ी तो बात कर लिया कर, है ना। एक टाइम होता था जब मम्मी बोलती थी कितनी बकवास करता है, कभी तो शांति से चुप बैठ जाया कर, और आज की डेट वो है जब मम्मी बोलती है कि बेटा थोड़ी बातचीत तो कर लिया कर, क्या 24 घंटे फोन में ही लगा रहता है। कुछ कहना चाह रही थी हमारी दोस्त कुमकुम आपसे, और साथियों उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तो कुमकुम आप कुछ कह रही थी, कुछ बताने की बात कर रही थी।
1: मैं कुछ अपने श्रोताओं को प्रेरणादायक संदेश देना चाहूंगी।
0: प्रेरणादायक संदेश तो मैं भी लेना चाहूंगा।
1: या ऑफ कोर्स, जैसे कि हम जानते हैं मोबाइल हमारे लिए आजकल कितना जरूरी है, हर वर्क में यूज होता है, तो मोबाइल हमारे लिए बुरा नहीं है, लेकिन उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना रिश्तों को कमजोर कर सकता है। इसलिए हमें खाना खाते समय मोबाइल को दूर रखना चाहिए, बच्चों से खुलकर करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा घर में टाइम एक बार तो टाइम बनाना चाहिए पूरे दिन में, जो लिखा हो कि हाँ नो टाइम मोबाइल। याद रखिए रील्स कुछ सेकंड की खुशियां देती हैं, लेकिन आपके अपने लोग पूरी जिंदगी का सहारा बनते हैं।
0: तो क्या क्या बात है। हाँ तो आगे बोलो,
1: तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आगे।
0: देखो कुमकुम, आपने बहुत अच्छी, बहुत ही मीनिंगफुल, थॉटफुल वाली बातें रख दी हैं, थैंक यू सो मच। और सच में ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ऐसे लगता है कि रील्स सिर्फ हमें थोड़ी देर की खुशी तो देती है, लेकिन एक्चुअली खुशी जो हमें मिलती है वो अपनी फैमिली के साथ बात करके, हमें अपने रिलेटिव के साथ बात करके मिलती है। दोस्तों वो कहते हैं ना, आजकल नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनते ही हम तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं, लेकिन कोई अगर अपना बुलाए तो बस सिंपल सी आवाज़ निकलती है, अभी बिजी हूँ बाद में आऊँगा। ये वाली बात तो 100% आपके साथ भी होती होगी। मोबाइल ने भाई सबका टाइम चुरा लिया है कुमकुम, पापा फ़ोन पर, मम्मी रील्स पर, बच्चे गेम्स में, एक ही घर में रहते हुए भी सब अलग अलग दुनिया में व्यस्त है ना। कहीं ना कहीं ये जो व्यस्तता है बहुत जरूरी है, लेकिन श्रोताओं सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें मोबाइल का भी इस्तेमाल करना है और हमें अपने परिवार को भी पूरा वैल्यूएबल टाइम देना है। उसके लिए हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। सोच बदलने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जब आप अपने घर पर हो तो अपने फोन को थोड़ा साइड में रखें। अगर आपको पता है कि आप बेवजह का समय अपने फोन पर दे रहे हैं तो वही टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए अपने परिवार से बातचीत करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में ना जो रिश्तों में गर्माहट है वो बहुत जरूरी है। और रिश्ते कहीं ना कहीं आजकल इसलिए भी खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि अधिकतर बातें तो फोन पे ही हो जाती हैं, थोड़ी सी देर में बात हुई उसके बाद तुरंत डिलीट हो गई, अभी पता चला अभी नाराजगी थी अभी ब्लॉक हो गई चीजें। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों को ना एकदम से इन्होंने खेल बना के रख दिया है। ये स्पेशली आजकल तो ये व्हाट्सएप आ गया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और सबसे मनहूस मेरे को लगता है स्नैपचैट। भाई सच बता रहा हूँ, इतने तगड़े तगड़े फिल्टर आते हैं ना, समझ में नहीं आता लौंडा लौंडिया कब बन जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये सब चीज़ें जो है ना मत करो भाई, करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ यार एक समय सीमा बना लो हर चीज़ की। सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने परिवार को स्पेशल क्वालिटी टाइम देना। क्यों कुमकुम, सही कहा मैंने? हाँ तो बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी दोस्तों अब हम दोनों आपसे लेंगे जाने की इजाज़त, और इतना ही कहना चाहेंगे जाते जाते, सोच बदलोगे तो इरादे बदलेंगे, इरादे बदलेंगे तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। तो बस आप ऐसे ही सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन, अपना शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ये वही शहर है जहाँ की मूंग की दाल बड़ी फेमस है, ये वही शहर है जहाँ का पीतल बहुत पॉपुलर है, और ये वही मुरादाबाद है जहाँ का अपना सामुदायिक रेडियो आज आपके साथ है। तो जुड़े रहिए दिल से दिल तक, और आज रात का खाना अगर परिवार के साथ खा रहे हो तो ध्यान रखिए मोबाइल को थोड़ा सा जो है स्पेस दे दीजिएगा। बाकी मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर मिलेंगे एक नए सफर पर कुछ और नई जानकारियों के साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तो अभी चलें फिर कुमकुम?
1: जी हाँ चलते हैं।
0: बिल्कुल, तो कुमकुम भी अपना थैला उठाकर जाने को तैयार है और मैं भी अपना बैग लेकर बाहर निकलने को तैयार हूँ। तो सोच बदलो, क्योंकि अपने लोग ऑनलाइन नहीं आसपास होने चाहिए। याद रखिए कोई भी चीज अगर होती है नेगेटिव वाली तो ऑनलाइन की दुनिया के लोग नहीं आएंगे, सबसे पहले आपके करीबी लोग आएंगे। तो इसलिए अपने करीबी लोगों को स्पेशल समय दीजिए। अभी के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और बजाते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नए सफर पर।

0: जा।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ,
7: चावला टायर
5: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
8: अपोजिट
7: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। एक बार फिर से मैं आनंद हाजिर हूं लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसको आप सुनते हैं हमेशा मुरादाबाद 89.6 पर। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हां श्रोताओं, अगर आप अपनी सोच बदलोगे तो हमारा समाज और हमारा देश कैसे तरक्की करेगा ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और आज इस प्रोग्राम को लेकर मैं अकेला हाजिर नहीं हूं, मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही है मेरी प्यारी सी दोस्त प्राची। प्राची बहुत बहुत अगेन स्वागत है स्टूडियो में और हमारे प्रोग्राम में आपका स्पेशली स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, तो आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद
0: जी। प्राची कैसा लग रहा है, पहले तू बताओ हमारे प्रोग्राम का नाम कैसा लगा तुम्हें?
1: नाम तो बहुत अच्छा और ऐसा लगता है कि ये हमारे श्रोताओं को सोच बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा।
0: एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने अपने युवाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने सारे जितने भी हमारे लिसनर हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है सोच बदलो। और मुझे लगता है कि आज के जमाने में ना लोगों को सोच बदलने की बहुत जरूरत है। प्राची
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो दोस्तों, मैं और प्राची इस प्रोग्राम में काफी सारी बातचीत करेंगे और आज का हमारा स्पेशल मुद्दा है वो ये है कि बता दें या फिर प्राची थोड़ा सा ब्रेक लें अभी, क्या लगता है आपको, ब्रेक लेना चाहिए या श्रोताओं को बताना चाहिए?
1: मुझे लगता है कि हमें हमारी श्रोताओं को बता देना चाहिए।
0: अच्छा, ताकि वो कहीं और जाए ना, है ना? बहुत बढ़िया। तो प्राची आज हम बात करने वाले हैं अपने श्रोताओं से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। कई बारी होता है ना, तुमने देखा होगा बहुत सारी एप्स एंड वेबसाइट्स आ जाती हैं जहां पर हमें दिखाई देता है कि भैया आप इतने पैसे लगाओ आपको उसके डबल मिल जाएंगे। बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गई हैं आजकल मार्केट में, समझ ही नहीं आता ओरिजिनल कौन सी है, लोकल कौन सी है।
1: हाँ, ये तो आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है और मुझे लगता है कि हमें इस पे बात करने की बहुत बहुत जरूरत है।
0: एब्सोल्युटली, स्पेशली इस डिजिटल टाइम में, ना?
1: हाँ, बिल्कुल, जब तो, हर किसी का रुख डिजिटली की तरफ पड़ा है।
0: करेक्ट। तो श्रोताओं आप कहीं मत जाइए, प्राची और आनंद के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आपके लिए अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद वापस आएंगे मैं और प्राची, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने शहर के सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। आनंद और प्राची के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम
1: सोच बदलो श्रो।
0: बिल्कुल, और सोच बदलेगी तभी हमारा समाज बदलेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: तो आज का हमारा मुद्दा है श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। अच्छा प्राची, कई बार तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत सारे लिंक्स आते होंगे फ्रेंड्स के थ्रू, या कुछ एड्स आ जाती होंगी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, कि आप जो है ये ऐप डाउनलोड करो, इसमें आप इतने पैसे लगाओगे तो आपको इतने मिल जाएंगे, या फिर अगर आप इतने रुपए जमा करते हो तो इसका इतना मिल जाएगा आपको। इस तरीके के बहुत सारे ऐप्स आते हैं, बहुत सारे लिंक्स आते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे हमें दिखाया जाता है। ऐसा कभी तुम्हारे सामने कोई सीन हो आया हो कभी?
1: हाँ हाँ, मेरे पास तो ऐसे बहुत आते हैं और मुझे लगता है कि सभी के फोन पे आते हैं और हमें इससे सावधान रहने की बहुत जरूरत है।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कैसे काम करता है। सोशल मीडिया एड्स व्हाट्सएप से संपर्क करते हैं, उसके बाद हाई रिटर्न का आपको लालच देंगे। जैसे अगर आप 10,000 जमा करोगे तो आपको 1,00,000 रुपया देंगे। उसके बाद ये फेक एप्स और कुछ वेबसाइट जो है बनाते हैं जिसपे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शुरुआत में आपको ये फेक पोर्टफोलियो दिखाते हैं अपना, मतलब एक प्रोफाइल बनाते हैं फेक जिसपे आपको बड़ा जेन्युइन लगेगा सारी चीजें। एंड उसके बाद ये एक बड़ा अमाउंट जैसे ही मतलब आप उनके पास डालोगे, सपोज आपने 10,000 डाला, उन्होंने बोला हम आपको 1,00,000 देंगे इसके बदले में, आप 10,000 जमा करोगे, विड्रॉल का ऑप्शन ही बंद हो जाएगा वहां से। तो इस तरह की जो चीजें ये लोग डिजाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड।
1: बिल्कुल आनंद, आपने बिल्कुल ठीक जानकारी दी हमारी श्रोताओं को। और ये इतना जेन्युइन अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि बहुत अपने बहुत लोगों के फीडबैक भी रखते हैं, तो जैसे देखकर जो हम होते हैं हमारे मन में ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है।
0: एग्जैक्टली श्रोताओं, इसी पर और बहुत सारी बातचीत मैं और प्राची करते रहेंगे, लेकिन आइए जरा एक खास इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाते हैं इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं सोच बदलो, सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा, और आज हम सोच बदलो प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हर चीज पे, अगर हम लगेगा कि यार डिजिटली करना है तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सिर्फ सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी आपकी थॉट प्रोसेस आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। आप सोच बदलो, आपकी चीजें बदल जाएंगी, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कनेक्टेड है चीजें। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से सोच बदलने का क्या सीन है, तो मैं ये भी आपके लिए यहां पर क्लियर कर देता हूं। क्या होता है ना, हमारी सोच ये हो गई आज के समय में प्राची, कि हमें हर चीज बैठे बिठाए करनी है, हर चीज हमें अपने फोन से करनी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: हमें शॉपिंग करनी है अपने फोन से करनी है, हमें सब्जियां मंगानी है अपने फोन से मंगानी है, हमें ना हर चीज बैठे बिठाए चाहिए प्राची। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच ही तो है जो हम ऑनलाइन पूरी तरीके से हम जो है निर्भर हो गए हैं। हाँ। है ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, बस कहने का मुद्दा सिर्फ इतना सा है मेरा और प्राची का आज इस प्रोग्राम के जरिए, कि अगर हम अपनी सोच को बदले, हमें क्यों सोचना है कि हमें एक का डबल चाहिए। भाई अगर हमें इस तरह की कोई पॉलिसी देखनी है तो हम फिजिकली अपने पैसे को सेफ और अच्छी जगह लगाएंगे ना, हम अपने आसपास में जाएंगे, बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, बहुत सारे बैंक हैं हमारे नियर बाय, हम वहां जाके कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तमाम ऑप्शन हैं। ऑनलाइन ही क्यों करना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन मत करिए श्रोताओं, ऑनलाइन करिए बहुत जरूरी है, लेकिन सोच समझ के सही चीजों का इस्तेमाल करिए ना।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने आनंद।
0: तो इसी पर देखिए, हमारे पास एक और खास बातचीत है जो स्पेशली हम अभी आपको सुनवा रहे हैं, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए, तो मैं और प्राची लौटेंगे बस इसी देर में, जरा ये सुनिए, उसके बाद हम आपको मिलते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। आज फिर मैं वापस लौट कर आया हूं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो लोगों की सालों की बचत और जीवन भर की कमाई कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है। इस अपराध का नाम है निवेश घोटाला, मतलब पैसे लगाओ और 10 मिनट में दोगुने करके वापस पाओ। हाँ जी, आखिर निवेश घोटाला क्या है? श्रोताओं, निवेश घोटाला वह धोखाधड़ी है जिसमें ठग बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कहते हैं कोई जोखिम नहीं है, गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं। वह लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए उकसाते हैं। चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे इस ग्रुप में लिखा है हर दिन 5% मुनाफा बिना किसी जोखिम के, इतना मुनाफा कहीं धोखा तो नहीं? नहीं यार, देखो स्क्रीनशॉट भी है, सब लोग मुनाफा कमा रहे हैं। पहले 10,000 लगाए हैं, अरे वाह, ऐप में तो मुनाफा दिखाई दे रहा है। अब तो 50,000 रुपए लगा देता हूँ। मैं पैसे निकालना चाहता हूँ। निकासी से पहले वेरिफिकेशन फीस जमा करनी होगी। कुछ देर बाद ऐप गायब हो जाता है और समझ जाता है कि वह निवेश घोटाले का शिकार हो चुका है। निवेश घोटाले इतने खतरनाक क्यों हैं? श्रोताओं, निवेश घोटाले इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये लालच का फायदा उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई मामलों में रिटायरमेंट का पैसा चला जाता है, कर्ज लेकर निवेश किया जाता है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निवेश घोटाले से रिलेटेड चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग। गारंटेड मुनाफा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शायद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिना जोखिम के निवेश, हाँ जी, आप कहीं पर अगर निवेश कर रहे हैं तो पहले वहाँ पर देखिए कि कितना जोखिम है कितना नहीं। आज आखिरी मौका है, जब आपके साथ या फिर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी निवेश करो, आज आखिरी मौका है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी वजह से, किसी भी कारण, किसी भी ऐसे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऐप या कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या सच में वो ऐप वेरीफाइड है या फिर नहीं है, इन बातों का ध्यान भी रखना होता है। याद रखिए, असली निवेश में जोखिम होता है, ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा जोखिम। निवेश करने से पहले क्या करें? निवेश से पहले ये बातें जरूर जांचें कि कंपनी या प्लेटफॉर्म सरकारी रजिस्टर्ड में दर्ज है या फिर नहीं है। किसी अधिकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इंटरनेट पर रिव्यू और जानकारी खोजें। अनजान लोगों की बातों में ना आएं। कभी भी बैंक लॉगिन, ओटीपी, यूपीआई पिन साझा बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों और नए निवेशकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, निवेश घोटालों के शिकार अक्सर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, पहली बार निवेश करने वाले लोग होते हैं। इसलिए परिवार में निवेश से पहले चर्चा करें। जल्दी मुनाफे के लालच से बिल्कुल बचें। शक हो तो नहीं कहना सीखें। ठगी हो जाए तो क्या करें? अगर आपके साथ निवेश घोटाला हो गया है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। याद रखिए, जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षित निवेश के 5 सुनहरे नियम। गारंटेड मुनाफा सबसे बड़ा धोखा, अनजान प्लेटफॉर्म बड़ा खतरा, जल्दबाजी मतलब नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना चाहूंगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और एक गलत फैसले से चला भी जाता है। लालच नहीं, जानकारी के साथ निवेश करें। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की जानकारियां भी देता है।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ। प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
7: लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास

0: भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं IMO के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमा 24 लाख रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
4: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है आपके पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम एक ही कलाकार। आदाब, सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपके अपने दोस्त और होस्ट इस कार्यक्रम की रैना तवर का खुशनुमा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम एक ही कलाकार में। और आज जैसा कि कार्यक्रम के बारे में आप जानते ही हैं, हम बात करते हैं किसी एक कलाकार की, फिल्मी जगत से जुड़े हुए किसी भी कलाकार

को बहुत लोकप्रिय रही, बहुत ही दिल को लुभाने वाली रही। मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता गेस कर चुके होंगे, तो देर किस बात की। हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वो आपको पहचानना है, क्योंकि रहना है तो कुछ तो आपको कहना है। तो गेस कीजिए और हमें बताइए कि किसकी हम बात कर रहे हैं। ईमेल आईडी है ip.radiodelhi@gmail.com। आपके मैसेज का, संदेश का हमें रहेगा इंतजार। तब तक सुनते हैं ये वाला इनका गीत।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कम्युनिटी रेडियो और मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना, क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या फिर एनीमिया के संकेत हैं? इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर शालू गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। नमस्कार श्रोता और नमस्कार सुजाता जी।
0: मैम, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एनीमिया क्या होता है और ये कितना आम हो गया है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया अपने कम्युनिटी रेडियो के तहत, जिससे कि मैं लोगों को इस बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप एनीमिया का मतलब सरल शब्दों में चाहें तो यह है शरीर में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। और आयरन की कमी की वजह से और कई कारणों की वजह से इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी होती है, उसे एनीमिया हम कहते हैं। थोड़ा बदलाव खाने में अब आने लगा है, लोग जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब नहीं मिलते हैं। इन वजहों से भी शरीर में खून कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी, पेट में कीड़े होना, महिलाओं में पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी कारण ये

0: बन सकता है।
1: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बताएं कि एनीमिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आम लोग इसे शुरुआती स्तर पर कैसे पहचान सकते हैं।
0: ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है क्योंकि ज्यादातर महिलाएं एनीमिया के कुछ लक्षणों को इग्नोर करती हैं, उन्हें नजरअंदाज करती हैं, ये सोच के कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि इंसान जल्दी जल्दी थक जाता है, चक्कर आने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, सांस भी फूल सकती है, चेहरे पे होंठ पे पीलापन आ जाता है, शरीर पे सूजन आ सकती है, बालों का झड़ना भी हो सकता है। इसकी वजह से लोगों को लगता है और स्पेशली महिलाओं को ये लगता है कि क्या ऐसी खास बात है, शायद ज्यादा काम कर लिया इस वजह से ये परेशानी हमें हो रही है। लेकिन अगर ये सब चीजें कंटिन्यूअस निरंतर बनी रहे तो ये जरूरत है जानने की कि ये किस कारण से हो रहा है, कहीं हमें खून की कमी तो नहीं हो रही है। ऐसे में कमजोरी बार बार महसूस होने पे, सीढ़ियां अगर थोड़ी सी चढ़ने पे सांस फूलने लगे, या निरंतर थोड़ा स्पीड में चलने में अगर सांस फूलने लगे, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच जरूर से करवानी चाहिए।
1: अच्छा, क्या एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं?
0: देखिए, ज्यादातर एनीमिया आयरन की कमी से होता है, भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है, इसके और भी बहुत कारण होते हैं। हम आयरन की कमी, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, जंक फूड जब ज्यादा खाया जाता है, जब पोषण संबंधी कारण हो सकता है और गैर पोषण संबंधी कारण भी हो सकता है। अगर हम पोषण संबंधी कारणों की बात करें तो आयरन के साथ साथ कभी कभी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसे हम कहते हैं। और गैर पोषण संबंधी कारणों में, जैसे अगर ज्यादा खून बढ़ना, जैसे मैंने बताया ना कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अगर बहुत ज्यादा पीरियड्स आए, किशोरियों को अगर ब्लीडिंग ज्यादा आने की समस्या हो, इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, अचानक शरीर में खून की कमी हो जाती है, तथा कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया, जो शायद लोगों को इतना नहीं पता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह के इन्फेक्शंस और किडनी की बीमारी और कैंसर, इन सब में भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया, मुख्यतः भारत में और उत्तर प्रदेश में आयरन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है।
1: क्या ये सिर्फ एनीमिया महिलाओं तक सीमित है या पुरुष और बच्चे भी इससे प्रभावित हैं?
0: ये एक बहुत अहम प्रश्न है क्योंकि हम लोग जैसा देखते हैं, महिलाओं में ही ये सीमित नहीं है। जान के आपको हैरानी होगी कि बच्चों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में, ये किसी भी एज को नहीं छोड़ता है, सब में ये बीमारी हो सकती है। हालांकि महिलाओं में ये थोड़ी ज्यादा होती है, किशोरियों में ज्यादा होती है, कारण बच्चों में ज्यादा होती है। कारण ये है कि खान पान की कमी और अपने ऊपर थोड़ा लापरवाही करना या पौष्टिक तत्व ना लेना। महिलाओं में आप जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इन सब में संभावना अधिक होती है। बच्चों में क्योंकि उनके शरीर को अधिक पोषण चाहिए, आयरन विटामिन की जरूरत उनके शरीर को ज्यादा होती है जब ये ग्रोइंग फेज होती है। और इसके अलावा गलत खान पान की आदतें, जैसे बच्चे आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं, बार बार पेट में कीड़े हो जाने, जैसे वर्म इन्फेस्टेशन अगर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए हर एज में और हर सेक्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा।
1: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बता दें कि हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए और कब इसे खतरनाक माना जाता है?
0: WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनमें नॉर्मल जो हम हीमोग्लोबिन का लेवल लेते हैं वो है 12 ग्राम या उसके अधिक, पुरुषों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक, लेकिन गर्भवती महिलाओं में अगर 11 ग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक होता है तभी हम उसे नॉर्मल मानते हैं। 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हमें उसे फिर एनीमिक कैटेगराइज करते हैं। ये कैटेगरी एनीमिया की माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है।
1: तो किन स्थिति में हम जानेंगे कि ये सीवियर एनीमिया है?
0: अगर 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो ये सीवियर है, ये खतरनाक है और ये जानलेवा भी हो सकता है।
1: क्या मोटे लोगों को एनीमिया नहीं होता?
0: बिल्कुल हो सकता है। मोटापे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पोषण आपको मिल रहा है, ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हैं, या हिडन हंगर जैसी अगर जैसे कुपोषण, मतलब जिसे कहते हैं ना, मोटापा इज अ काइंड ऑफ कुपोषण। ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। और मोटे लोगों को कई बार वो तला भुना जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वो पोषण और जो कि जरूरी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो नहीं खाते हैं। बेसिकली एनीमिया हमारा आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। इसलिए ऐसे लोगों में एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उनका जो खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
1: अच्छा, रोजमर्रा के खाने में कौन कौन सी सस्ती और स्थानीय चीजें शामिल करें जिससे एनीमिया से बचा जा सके?
0: वैसे तो आयरन फोलिक एसिड की गोली हमारे प्रदेश में हर स्वास्थ्य केंद्र पे, चाहे वो उपकेंद्र हो, चाहे वो पीएचसीज हो, सीएचसीज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, वहाँ सब जगह ये निशुल्क उपलब्ध है। लेकिन खाने में जो जरूरी चीजें हैं जो कि इंसान अपना सकता है इस बीमारी से अपने बचाव के लिए, वो हैं दालें, अनाज जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, सोयाबीन है। इसके अलावा अंकुरित दालें जैसे हैं या मूंग चना है, इनको ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, और सबसे सस्ता जैसे कहना चाहिए गुड़ और चना, जो कि हर घर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सेब है, अंडा, मांस मछली, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो इससे भी अपने को आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। आयरन के साथ साथ अगर आप विटामिन सी का सेवन करें तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जैसे नींबू है, अमरूद है, आंवला है। अगर ये आप आयरन के जो खाने हैं, आयरन रिच फूड्स जो मैंने अभी आपको बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, दाल, अंडा, मांस मछली, इसके साथ अगर आप ये वाले फल भी खाएं जो कि सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं, तो इसमें आयरन का अवशोषण और भी बेहतर हो सकता है।
1: मुझे ये भी जानना है कि आयरन की गोली लेने का सही तरीका क्या है और खाने के साथ या खाली पेट उसे खाया जा सकता है?
0: देखिए, आयरन की गोली लेने का सबसे सही तरीका तो खाली पेट है, और ये ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि खाली पेट लेने पर कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द, ये सब भी महसूस हो सकता है। ऐसे में इसे हल्के भोजन के करीब एक या दो घंटे बाद लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज का खास ख्याल रखें कि चाय और कॉफी के साथ या उसके तुरंत बाद आयरन नहीं, गोली जो है वो कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और प्लस कुछ पदार्थ जैसे टैनन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, वो सब नुकसान करते हैं। अगर आप आयरन की गोली को नींबू पानी के साथ या आप संतरे के रस के साथ आप लें तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है।
1: अच्छा, हमें ये भी बताएं डॉक्टर कि क्या बच्चों में एनीमिया जब हो जाता है तो क्या उनकी पढ़ाई या मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
0: अब बहुत हद तक ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कि गर्भवती माताएं और धात्री माताएं स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे कहते थे ना पहले जमाने में लोग कि गर्भवती जब महिलाएं होती हैं तो वो दो केले खाती हैं, अपने लिए भी खाती हैं, अपने बच्चे के लिए भी खाती हैं। तो ये बहुत गर्भ से ही अगर आप आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी, आप पूरी तरह से आयरन खाएंगे तो आपके बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। और बच्चों में तो स्पेशली अगर एनीमिया हो तो उनका वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे इसका असर पड़ता है। अगर उनकी याददाश्त, उनकी ध्यान लगाने की क्षमता, उनकी सीखने की गति ये कम हो सकती है, और उनका शारीरिक विकास भी कम हो सकता है अगर उनमें आयरन की कमी हो। इसलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए आयरन बहुत जरूरी है।
1: अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइए कि अगर एक श्रोता आज से ही एनीमिया से बचाव शुरू करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
0: मैं इसमें दो बातें आपको बताऊंगी कि बचाव करने के लिए सबसे पहला तो है कि अपनी आदतें जो कि खाने से संबंधित हैं उनमें सुधार करें, और दूसरा नियमित रूप से आयरन के टेस्ट के लिए अपनी हीमोग्लोबिन की जांच कराए, जिससे उसे ये पता चल सके कि उसका आयरन का लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। साथ में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने पे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं, जिसमें कि डिवॉर्मिंग के लिए हम लोग गोली देते हैं, जिससे कि पेट के कीड़े भी मर सकें, तो उसका भी सेवन 6 महीने पे अगर करें तो जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो खत्म हो सकता है, जिस जो भी एक कारण होता है एनीमिया करने का। और बाकी तो जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि पौष्टिक तत्व जो है वो खाने में लेने चाहिए। आयरन की गोली जरूरत के हिसाब से दी जाती है। स्कूलों में भी हमारा विप्स का प्रोग्राम चलता है, जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते आयरन की गोली दी जाती है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह से भी घर में भी और घर के बाहर भी आयरन की गोली का सेवन करना, खाने में पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड करना और समय समय पर हीमोग्लोबिन की जांच कराना।
1: हमारे जितने भी ग्रामीण श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी ओर से?
0: देखिए, अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मगर आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि यही चीज अगर बढ़ जाए तो वो जानलेवा हो सकती है, और इसीलिए बहुत, और ये बचाव पूरी तरह संभव है, आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी आप छोटी छोटी अपनी आदतों में सुधार लाके, अपनी जीवन शैली में सुधार लाके आप इस बीमारी पे कंट्रोल पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार, साफ सफाई, नियमित जांच, आयरन की गोली और डिवॉर्मिंग, ये सब चीजें आप, इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे तो आप आयरन की कमी से हमेशा के लिए बच जाएंगे।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम हमारे श्रोताओं को। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर कि क्या सभी गांवों में नियमित हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा उपलब्ध है?
0: हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार ने ये निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में, सभी अस्पतालों के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जांच होती है, और ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, आपके घर के पास जो भी कोई सरकारी अस्पताल है, चाहे वो PHC हो चाहे CHC हो, वहां जाकर आप ये जांच करा सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन का स्टेटस पता कर सकते हैं।
1: अगर किसी को IFA की गोली से दिक्कत होती है, जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना, तो इसके लिए क्या विकल्प है, वो क्या करे?
0: देखिए, ये मन में बहुत भ्रांतियां हैं आयरन के दवा को खाने में, और कई बार ये कहा जाता है कि आयरन की गोली अगर खाएंगे तो काले रंग की लेट्रीन हो, शौच में जब आप जाएंगे तो काले रंग की लेट्रीन हो जाएगी, बच्चे भी काले हो जाएंगे, शायद इसलिए भी कुछ परिवार में ये दवा नहीं खाई जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आयरन की गोली को लेने में आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना है, तो आप इसे घबराएं नहीं। ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। ये सिर्फ हल्के से जो ये सिम्टम्स हैं, इनको अगर आप खाली पेट लेने के बजाय खाने के 1-2 घंटे बाद लें, नींबू के रस के, मैंने बताया ना, नींबू पानी के साथ लें, या आप संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं, आंवला आप साथ में अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये साइड इफेक्ट्स कम भी हो सकते हैं। हम लोग वैसे खाली पेट कहते हैं, लेकिन अगर आपको खाने के बाद ये परेशानी आती है तो आप इसे खाली पेट ना लें। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चाय, कॉफी का सेवन आयरन की गोली के साथ ना करें, क्योंकि ये आपके साइड इफेक्ट्स को बढ़ा देगी, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। और जी मिचलाता है अगर, तो नींबू पानी शिकंजी के रूप में आप ले सकते हैं। ORS का पैकेट्स फ्री मिलते हैं, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आप कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई खास सॉल्ट जो होती है आयरन की, उसकी वजह से ये लक्षण आते हैं, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कोई दवाई किसी को सूट नहीं करती, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उस सॉल्ट के बजाय वो आपको कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरी सॉल्ट भी दे सकती है। और अब बहुत तरह के आयरन की दवाएं उपलब्ध हैं, और साथ में आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में इंट्रावीनस आयरन जो कि पहले आयरन सुक्रोज के ही फॉर्म में मिलता था, अब हम लोगों ने आयरन एफसीएम एक नई हमने इंजेक्शन भी लॉन्च किया है अपने प्रदेश में, और इसके द्वारा भी, लेकिन ये हर किसी को नहीं दिया जाता, ये तभी दिया जाता है जब सीवियर एनीमिया हो, मॉडरेट एनीमिया हो, तो जरूरत के हिसाब से वो भी दिया जा सकता है। मतलब आयरन की कमी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो कोई ना कोई विकल्प तो आपको सूट कर ही जाएगा।
1: अभी आपने इंजेक्शन की बात करी डॉक्टर, तो क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है कि या सिर्फ गर्भवती महिलाओं को, ये किस एज के सीवियर एनीमिया को दिया जा सकता है?
0: देखिए, अभी आयरन का जो हमारा फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो एफसीएम का इंजेक्शन है, ये अभी हमने गर्भवती महिलाओं को और साथ में धात्री महिलाओं के लिए हमने शुरू किया है, क्योंकि ये तब दिया जाता है जब आयरन की जो हमारा लेवल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में हम लोगों को, और ये एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का विकल्प है। फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम जो एफसीएम का है, ये इसमें अभी बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए आयरन का सप्लीमेंटेशन सिरप की फॉर्म में, क्योंकि ये इंट्रावीनस इंजेक्शन है, तो इंट्रावीनस से आप समझिए ना, नस में ये सुई दी जाती है, तो ये अभी बच्चों को हम नहीं देते हैं, ये अभी फिलहाल हम लोग गर्भवती महिलाओं को, और इसके अलावा हम लोग किशोरियों को भी दे सकते हैं अगर बहुत जरूरत हो तो, मैंने बताया ना ब्लड के विकल्प की वजह से, लेकिन बच्चों के लिए हमारा आयरन सिरप आता है, वो उन्हें दिया जाता है।
1: तो क्या वो हर सीएससी पीएससी पर उपलब्ध?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने, अगर आपको जाने में भी अगर परेशानी हो, तो आपके घर के आसपास जो आशा या आंगनवाड़ी सेंटर हो या एएनएम्स हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लाके ये शीशी खुद घर पे भी दे सकती है, दे भी देती है, और आप वो तरीका बता देगी कि किस तरह से आपको उसे देना है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस जानकारी के जरिए बहुत लोगों को या कुछ लोगों को इसका लाभ मिले और इस बीमारी से उन्हें निजात मिले। थैंक यू।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट, हाँ जी, फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। और मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश, आपका अपना पसंदीदा शो जहाँ सिर्फ गाने नहीं बजते, यहाँ रिश्तों की मिठास, अपनों की बातें, छोटी छोटी खुशियाँ और ढेर सारा प्यार भी सुनाई देता है। तो दोस्तों, आज आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो हमें फटाफट से कॉल कीजिएगा। आप नंबर है 9837889696। ये हमारे स्टूडियो का मोबाइल नंबर है और मैं आपके साथ रहने वाली हूँ पूरे 5 बजे तक। तो इस सफर को बनाएंगे और भी सुहाना, खूबसूरत सा। देखिए साथियों, भी समय की बात करें तो वक्त हुआ है यहाँ पर 3:08 राइट नाउ, और एक प्यारा सा ट्रैक मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है आप सभी के लिए। आप इसको एंजॉय कीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से गाने के उस पर। आप मुझे फ़ोन लगाना ना भूलिएगा। नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे गाने गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, और अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक एंजॉय किया हिमेश रेशमिया जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़। एंड दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी ना इस कार्यक्रम में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये मौका आपको आरजी खुशी देती है मंडे टू सैटरडे, तो आप मुझे कॉल लगा सकते हैं नंबर 9837889686। और दोस्तों, कहते हैं ना कि रिश्ते संभालने के लिए शब्द नहीं एहसास चाहिए, और मुस्कान बांटने के लिए वजह नहीं बस अपना सा साथ चाहिए। और हम लेकर आए हैं आपके लिए ढेर सारे मुस्कुराहट, ढेर सारा अपनापन, क्योंकि आप सब हमारे हैं और हम आपके हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी सिलसिला शुरू करते हैं, अपने कॉलर से बात करते हैं कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है, क्या उनका नाम है उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश। हाय, क्या नाम है आपका? सॉरी, क्या नाम बताया आपने? कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मुरादाबाद
0: से। तो इतना शांत शांत होकर क्यों बात कर रहे हो? हाँ, कहाँ पर हो आप? रूम में हो क्या?
1: यस।
0: ओके, तो ऐसे बात क्यों कर रहे हो जैसे किसी से हम छिप छिप की बात कर रहे हैं? हाँ
1: नहीं, हमारे
0: यहाँ ऐसी हल्की सी। अच्छा, ऐसी हल्की सी आवाज है। खाना नहीं खाया आज आपने?
1: खाया
0: है। हाँ, अब लगा है कि खाया है लड़की ने खाना। ओके, बताओ फैमिली में सब कैसे हैं आपके यहाँ पर? ओके, क्या करते हो आप?
1: हम स्कूल जाते हैं।
0: अभी कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो आप? सिक्स क्लास में पढ़ाई करते हो। ओके, तो आगे क्या ड्रीम्स हैं आपके, क्या करने हैं आपको स्टडी करने के बाद? आपने डिसाइड किया है, अभी सोचा है या नहीं? अभी
1: मैं चाहती हूँ मैं डॉक्टर बनूं और दूसरे को मैं डॉक्टर।
0: अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी यू नो थिंकिंग है आपके, और बहुत अच्छे ड्रीम्स भी हैं। आप चाहते हैं कि डॉक्टर बने एंड लाइफ में जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करें, राइट? हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक, आपको ऑल द बेस्ट। आप खूब अच्छे से स्टडी करो, लाइफ में जो भी ड्रीम्स हैं सब अचीव करो, और बताओ। मोस्ट वेलकम। आप थैंक यू कहना चाह रहे हो, मैं समझ गई हूँ। आप बताओ कौन सा गाना सुनोगे आज?
1: मैं सुनना चाहती हूँ तुम्हारा
0: प्यार। अच्छा ठीक है, ये ट्रैक आपको सुनवाते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। मोस्ट वेलकम डियर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक और लौट कर आते हैं। तब तक आप मुझे कॉल लगाइएगा, नंबर है 9837896896। मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी खुशी, रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गाने गुनगुनाते रहिए। दोस्तों, ये गाने सिर्फ गाने नहीं होते हैं, ये ना हमारे यादों से जुड़े होते हैं, हमारे एहसास होते हैं, और कुछ जज्बात भी होते हैं, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो हम गानों के ज़रिए बयां कर पाते हैं। तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या फिर कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा कॉल, हमें नंबर है 9837896896। और फिलहाल अभी खूबसूरत सा गाना सुनिएगा, बस मैं लौट कर आती हूँ उस प्यारे सी गाने के इस पर।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं जानती हूँ कि आप मुझे बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे और कॉल भी लगाने में व्यस्त हैं। मैं जानती हूँ हमारे श्रोताओं का हाल अगर खुशी नहीं जानेगी तो कौन जानेगा। हाँ देखिए, एक दोस्त ना वही होता है जो सामने वाले का हाल जान लेता है ना, और वो काम खुशी करती है। दोस्तों अभी हमने प्यारा सा ट्रैक सुना है, इसको बहुत ही प्यारा सा गाना है। एंड गाने के बाद अभी हम बात करने वाले हैं अपने अगले कॉलर से, कौन जुड़े हैं पर उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी की जो आवाज़ है ना, सच में एकदम क्या ही मैं कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, बट बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है एंड अमेजिंग वॉइस उनकी। जब मैं सुनती हूँ ना उदित जी को और साथ में अलका जी को, तो बस एक अलग दुनिया में खो जाती हूँ। इतना उनकी आवाज़ इतनी प्यारी है, इतने खूबसूरत लिरिक्स, इतने प्यारा ट्रैक। एंड ये लिरिक्स थे समीर जी के और बहुत ही प्यारा सा गाना। अभी हम बात करते हैं अपने अगले कॉलर से बिना किसी देरी के, क्योंकि वो भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं और हमने चाहते कि अपने श्रोता को और इंतज़ार कराएं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार मैम
0: जी। आपको भी नमस्कार सर, अपना नाम बताइएगा।
1: मैं जिला मुरादाबाद ध्यान योजना से रिजवान खान बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी रिजवान जी, बताइएगा कैसे हैं आप।
1: मैम बहुत अच्छे हैं, आप बताओ आप कैसे हो।
0: जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आपकी दुआएं हैं। और आज तो फ्राइडे है, आपको ऑफ होगा ना।
1: आज हम छुट्टी पे घर पे ही हैं। आज तो मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा
0: है। जी देखिए, मौसम भी सुहाना, ऊपर से छुट्टी भी है, तो डबल सेलिब्रेशन हो गया है। हाँ और अपनों का साथ।
1: हाँ अपनों का साथ तो खैर आज नहीं है क्योंकि सब नैनी घर गए हैं।
0: ओके अच्छा, छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे भी घूमने के लिए गए हैं।
1: जी
0: तो आप अकेले हैं इसलिए। हाँ
1: जी मैं अकेले ही हूं।
0: तो आपको भी जाना चाहिए था ना बच्चों के साथ में घूमने के लिए।
1: मैं आ गया, दो एक दिन में आ गया था, वो नहीं।
0: अच्छा आप काम की वजह से आपको आना हुआ।
1: जी
0: तो बताइएगा रिजवान जी, आज आप क्या सुनना चाहते हैं।
1: मूवी है देवदास, उसमें लता जी की आवाज में सॉन्ग है जिसे तू कबूल कर ले।
0: ओके तो चलिए खूबसूरत सा गीत आपको सुनवा देते हैं सर। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक लता मंगेशकर जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़। आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गाने गुनगुनाते रहिए। मैं इस प्यारे सी गाने के बाद लौट कर आती हूँ और आपसे करनी है मुझे बहुत सारी बातें, तो बस इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम आपसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं एवरीवन।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: एंड अभी हम बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनसे कि वो कहाँ से कनेक्ट हुए हैं एंड बातचीत करते हैं, उधर के शहर का मौसम का हाल भी जानते हैं। क्योंकि देखिए हमारे मुरादाबाद का मौसम तो ठीक है, अभी धूप भी निकल गई है, लेकिन सुबह का मौसम बहुत सुहाना था और ठंडी हवाएं, ओए होए होए, ऐसा लगता है कि हम पहाड़ों की दुनिया में खो गए हैं। इतनी कूल हवाएं सुबह सुबह मॉर्निंग में चल रही थी, तो मैंने हल्का सा ब्लैंकेट भी ओढ़ा क्योंकि मेरे को बहुत ठंड लगती है। तो मैंने कहा चलिए अभी फ़िलहाल मॉर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं, दोपहर की बात कर लेते हैं। क्योंकि आज का जो हमारे यहाँ का टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस है अभी राइट नाउ। अपने अगले कॉलर से जानेंगे उनकी यहाँ का वेदर का हाल और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है, अभी बात करते हैं उनसे। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार मैडम।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा।
1: मैडम मैं गांव लिए दिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ।
0: दिनेश चौहान जी बात कर रहे हैं, बताइए कैसे हैं दिनेश जी आप?
1: बढ़िया है मैडम, एकदम मस्त मजे में है
0: जी। अच्छी बात है, अच्छा ही रहना चाहिए हमेशा।
1: हाँ मैडम, अच्छा रहने से अच्छा मतलब खुशी मिलती है मैडम, क्या दुख लेने से कोई फायदा भी नहीं है ना।
0: हाँ, दुखी रहने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है आपने दिनेश जी। देखिए लाइफ में ना सुख दुख भी चलते रहते हैं, कभी खुशी का पल आता है तो कभी गम का पल भी आता है, लेकिन जब तकलीफें होती है ना तो हमें उस समय ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उस समय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। अच्छा दिनेश जी, हम आपसे बात तो कर रहे हैं, बताइएगा आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: महाराष्ट्र जलगांव।
0: अच्छा, तो बताइएगा महाराष्ट्र का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो बहुत ज्यादा धूप है मैडम, बहुत ज्यादा गर्मी है।
0: अच्छा, बारिश वगैरह हुई थी पहले?
1: बारिश वगैरह नहीं हुई आज, तो हम लगा दिए कपास खेत में।
0: अच्छा, कपास लगाई है आपने?
1: हाँ कपास लगाए अपन, लेकिन अब पानी के इंतजार में है, पानी कब गिरेगा क्या मालूम, बहुत ज्यादा धूप है हमारे तरफ।
0: अच्छा, बारिश का इंतजार कर रहे हैं आप लोग?
1: हाँ मैडम
0: जी। चलिए हम भी प्रार्थना करेंगे भगवान जी से कि जल्दी से बारिश हो जाए आपके यहाँ पर।
1: हाँ कह रहे लोग कि 15 की 20 तारीख तक हो सकती है
0: बारिश, हो सकती ऐसा बता रहे। ओके, अनुमान लगाया जा रहा है ना?
1: हाँ
0: जी। तो कपास का जो प्रोसेस है वो कितने महीने में कंप्लीट हो जाता है कपास की खेती?
1: 4 महीना लगता है मैडम।
0: अच्छा, 4 मंथ में कंप्लीट हो जाती है?
1: हाँ 4 महीने में मतलब कपास निकल जाता है।
0: अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं?
1: उसको इकट्ठा जमा करके बेच देते हैं मार्केट में।
0: अच्छा, इकट्ठा करके उसको बेच देते हैं, तो उसको उसका पेड़ होता है ना कपास का? तो
1: हाँ पेड़ होता है मैडम,
0: छोटे छोटे पेड़ होते हैं।
1: रुई बोला जाता है ना, रुई जी, जो धागा वगैरह कपड़ा वगैरह बनता है उसी का बनता है।
0: अच्छा अच्छा, हाँ जी, मैंने एक बार देखा था, मैं कहीं गई थी अपने यहाँ रिलेशन में, तो उनके यहाँ पर पौधे लगे हुए थे कपास के, तो मैंने उसको खोल के देखा तो उसमें छोटी छोटी सी कपास बहुत खूबसूरत सी आई हुई थी।
1: हाँ मैडम, हमारे महाराष्ट्र में ज्यादा कपास ही लगाते हैं मैडम।
0: अच्छा, कपास की खेती होती है आपकी साइड?
1: हाँ।
0: ओके, तो बताइएगा दिनेश जी, आज आपका कॉल लगा है, आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: मैडम फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी
0: जी,
1: और गाना है तेरे इश्क में नाचेंगे, ये गाना सुनना है मुझे
0: जी।
1: और डेडिकेशन करता हूँ मैडम ने।
0: हाँ, किसको डेडिकेट करते हैं आप?
1: सबसे पहले आपके लिए मैडम, उमेश चौहान, आदित्य चौहान, मनीषा चौहान
0: जी,
1: आने सबनम अब्बासी, समा परवीन, सबके लिए जितने भी रेडियो सुन रहे हैं मुरादाबाद एफएम, सबके लिए।
0: ओके ठीक है, सभी के लिए सुनवाते हैं प्यारा सा गीत, शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा गाना दिनेश चौहान जी की आवाज मतलब रिक्वेस्ट पर, और लौट कर आते हैं हम कुमार सानू जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज में, प्यारा सा ट्रैक। बस आप मुझे कॉल लगाना ना भूलिएगा, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गाने गुनगुनाते रहिए।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: हेलो, हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
4: हेलो फरमाइश।
3: हाँ जी, वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? हेलो।
4: हेलो,
3: हाँ जी, अपना नाम बताइएगा।
4: मैम, मैं राम से शमा बात कर रही हूँ।
3: जी शमा, बताइएगा कैसी हैं आप?
4: माशाल्लाह मैम, एकदम बढ़िया, आप बताइए।
3: हाँ जी, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, आप बताइएगा। शमा क्या कर रहे हैं इस वक्त?
4: कुछ नहीं मैम, बस बैठे हुए थे, शो सुन रहे थे, सोचा आज मैम को कॉल लगा दी जाए, काफी टाइम हो गया बात करे हुए।
3: जी बहुत अच्छा किया आपने आज हमें कॉल किया है, आपका मैसेज आता है बहुत अच्छा लगता है हमें।
4: जी मैम, टाइम तो बहुत निकालना चाहती हूँ लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिलता कभी।
3: इस टोकी कोई बात नहीं है, सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, सारे कामों को। बताएगा शमा,
4: स्टूडियो में सब कैसे हैं?
3: हाँ जी, ऑल गुड, सब बहुत ही अच्छे हैं। आप बताएगा आज आप क्या सुनना चाहती हैं?
4: मैम मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मूवी का नाम है 1920 लंदन और सॉन्ग है आज रोलने दे।
3: अच्छा, ओके, तो चलिए गीत आपको सुनवाते हैं। कुछ और कहना चाहती हैं शमा?
4: जी मैम।
3: मैंने कहा कुछ कहना चाहती हूँ आप?
4: जी मैम, यही कहना चाहती हूँ, बहुत मिस करती हूँ जिस दिन बात नहीं होती है। हाँ। मैसेज नहीं जाता, मैं सोच रही हूँ। मैं
3: आप सोच रहे हैं क्या? तो शमा जी की यहाँ पर बात कंप्लीट हो गई है, कुछ सोच रही थी, लगता है कि ज़्यादा ही सोच गहराई में सोचने लगी है वो, बट उन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट भेजी है तो ये ट्रैक हम सुनवाते हैं, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे दोस्तों। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाएगा, नंबर 9837896896, रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही प्यारे गीत गुनगुनाते रहिए। अपनी पसंद के कुछ गाने होते हैं ना जो दिल के बेहद करीब होते हैं, तो ये खूबसूरत सा गाना मैं लौट कर आती हूँ बस।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट हेलो फरमाइश, जहां पर आप मुझे कॉल करके अपने मन पसंद के ट्रैक सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, या फिर किसी को डेडिकेट करने की अगर दिल है, आपका मन है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कॉल तो लगाना होगा ना साथियों। और कहते हैं ना दोस्तों कि ज़िंदगी में सबसे अमीर इंसान वही है जिसके पास अपने लोग हैं और उनकी दुआएं हैं, क्योंकि दौलत शोहरत जो है ना वो तो समय के साथ आती और जाती रहती है, लेकिन एक अपनी फैमिली का साथ और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा एक ऐसी वो हमेशा ना मतलब सबसे अनमोल चीज़ें हैं जो उम्र भर हमारे साथ रहती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ जब आपको समय मिले अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो उस टाइम को ना आप बिल्कुल भी मिसयूज़ मत कीजिए। अपनों के साथ ढेर सारा वक्त बिताइए, उनसे बात कीजिए, कुछ आप अपने दिल की बताइए, कुछ वो आपसे अपने शेयर करेंगे और अपनी बातें, एंड मुस्कुराने का अगर मौका मिलता है ना साथियों तो मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि मुस्कुराने का जो मौका है ना वो सच में गोल्डन चांस है, गोल्डन टाइम है। तो उस समय को आप ऐसे ही एवे फ़ोन में मत बिताइएगा। मैं आपसे कहती हूँ बार बार कि अपनों का साथ जो होता है ना वो बहुत अनमोल होता है, तो उसे संभाल के रखो। और अभी हमें कॉल लगाओ, नंबर मैं आपको बताती हूँ 98-378-96-96। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका सर? हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइएगा सर।
1: यूपी बनारस से मोहसिन अंसारी बात कर रहा हूँ
0: जी, बताइएगा कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं, बस आप लोग की बात है।
0: हाँ जी, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। लगता है अभी आप काम में व्यस्त हैं।
1: हाँ, काम कर रहा था, कान में ब्लूटूथ लगा के आपका प्रोग्राम सुन रहा था।
0: जी जी जी, मशीन चल रही है, आप साड़ियाँ वगैरह बना रहे हैं शायद?
1: जी जी, मेरे कारखाने में 10 मशीन है, इसकी वजह से आपको बहुत शोर की आवाज आया।
0: हाँ, डिस्टर्बेंस हो रही थी, लेकिन अभी ये क्लियर है, आपकी तरफ से कोई साउंड नहीं आ रही है।
1: अभी फिलहाल बाहर है ना, इसकी वजह से अंदर बात नहीं हो पाता।
0: हाँ जी हाँ जी, अच्छा किया आपने सर। बताइएगा कैसे हैं आप, आपके यहाँ पर फैमिली में सब कैसे हैं?
1: फैमिली में सभी लोग ठीक है, मस्त है। सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा था यहाँ का, मगर दिन में धूप है, मगर अभी उस तरीके का गर्मी नहीं है आज।
0: ओके, जैसे एवरी डे होती है। जी जी जी, राहत है पहले से?
1: हाँ, थोड़ा सी राहत
0: जी। आप बताइए क्या?
1: काफी।
0: हाँ जी, हमारे यहाँ पर भी ठीक है, मौसम अच्छा है सर।
1: अच्छा
0: जी, आप बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं सर, क्या फरमाइश है आपकी?
1: थोड़ा सी ये भी बात करना चाहती हूँ, उनसे भी बात कर लीजिए
0: जी।
2: हेलो।
0: हेलो।
2: अस्सलाम।
0: हाँ जी, वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका?
2: मैं आलिया खान, जिला शाहजहांपुर, ससुरालान से बात कर रही हूँ। खैरियत हो आप?
0: जी जी जी, बहुत अच्छे हैं आलिया जी, आप बताइएगा, आज तो आपने सरप्राइज ही दे दिया। हाँ जी हाँ जी, हमने तो लंच कर लिया है, आप बताइएगा आपने किया? ओके, आज आप बनारस आए हैं क्या?
2: नहीं, कॉल।
0: अच्छा, ओके। मेरे को लगा आप बनारस घूमने गई हैं। अरे वाह, क्या बात है, बड़ा प्यारा गुनगुनाया है आपने तो।
2: राजा से कहेंगे ना?
0: हाँ बिल्कुल। तो बताइएगा आलिया जी, आपके यहाँ पर सब ठीक है?
2: सब बढ़िया है, बस मौसम भी आज अच्छा
0: है। हाँ,
2: बारिश हुई सुबह में?
0: हाँ जी, हमारे यहाँ पर भी मॉर्निंग में बारिश हुई थी,
2: एकदम ठंडा मौसम हो गया।
0: बहुत अच्छा हुआ है, गर्मी बहुत ज्यादा थी, अभी फिलहाल अच्छा वेदर है।
2: गर्मी से राहत मिल रही है।
0: हाँ जी, बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
2: मूवी का नाम है तुम दिन, और गाने के बोल हैं छोटी छोटी रातें लंबी हो जाए।
0: अच्छा, ऐसा है?
2: वो चाहती
0: हूँ जी। वैसे भी गर्मी
1: चलेगा गाना दूसरा
0: पता है आपको, मैं बताती हूँ, ऐसा होता है कि अभी गर्मियों में छोटी रातें होती हैं और बड़े दिन हो जाते हैं। थैंक यू आलिया जी कॉल करने के लिए।
2: थैंक
0: नमस्कार आपको भी। तो चलिए दोस्तों ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप कहीं मत जाइए, हमें फ़ोन करना मत भूलिएगा। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9833789698 रेडियो बजाते रहिए और इसी खूबसूरत नगमे गुनगुनाते रहिए।

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: चावला टायर्स पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
3: 2500 उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
2: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
3: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क मुरादाबाद, कॉल 9412211111।
3: TNC अप्लाई।
4: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
5: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
4: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
6: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी। साथियों, यहां पर वक्त हुआ है 4:06 और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। और ये खूबसूरत सा गाना अभी आपने सुना सोनू निगम साथ में अनुराधा पौडवाल जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर,
1: आफ्टरनून मैम जी।
0: जी जी जी, बताएगा। वेरी गुड आफ्टरनून।
1: कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताएगा कैसे हैं?
1: सब अच्छे हैं मैम, आपका आशीर्वाद बना हुआ है
0: जी। क्या नाम है आपका सर?
1: मेरा नाम है फिरोज सैफी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: लेखनपुर कांट रोड मुरादाबाद से।
0: जी बताइएगा, आप क्या करते हैं सर?
1: मैम मेरा अपना फर्नीचर का काम है।
0: ओके ग्रेट, तो कैसे चल रहा है आपका फर्नीचर का काम?
1: बस आपके आशीर्वाद से ठीक चल रहा है मैम।
0: अच्छा ओके, बताएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप सब?
1: मैम मेरा एक सॉन्ग है अनिल कपूर जी और श्रीदेवी जी का, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तोहीन होगी।
0: जी, तो ये गीत आपको सुनवाते हैं, किसी का नाम लेना चाहते हैं आप?
1: बस आल लिसनर जितने भी सब सुन रहे हैं, मेरे भाई बहन,
0: ठीक है, सभी के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: ओके मैम,
0: तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी राम अवतार से, जो 1988 में फिल्म आई थी, बहुत ही खूबसूरत थी। और ये प्यारा सा गाना बस मैं लौट कर आती हूँ, आप कहीं, आपको कहीं नहीं है जाना। ओके okay?

0: अवतार साहब वाह, मजा आ गया, बड़े गजब का शेर था।
1: लेकिन अवतार साहब एक बात समझ में नहीं आई, जिससे इज्जत शोहरत और किस्मत,
0: जरा हमें भी तो बताएं।

0: हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और साथियों, समय की अगर बात करें तो वक्त हुआ है 4:13, और आप सभी की पसंद के गीत हम भी सुनकर बहुत मतलब अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि कुछ गाने बड़े प्यारे होते हैं और सबके सॉन्ग के पीछे एक कहानी छिपी होती है, लेकिन कोई बताना चाहता है, कोई छिपाना चाहता है। बट अभी अपने कॉलर से बात करते हैं, उनका आज कौन सा सॉन्ग सुनने का मन है वो हम उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका सर? जम्मू कश्मीर से बात कर रहे हैं जी, बताइएगा कैसे हाल चाल है आपके सर?
1: बहुत अच्छा, यहाँ पे आज थोड़ा बादल है, बारिश पड़ रहा
0: है। अच्छा, बादल है आपकी साइड? ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। कश्मीर का वेदर तो वैसे भी अच्छा ही होता है, लेकिन आज मौसम थोड़ा चेंज है, बादल है वहाँ पर, तो और सुहाना हो गया है। जी, तो आप बताइएगा सर, कश्मीर से आपने फोन किया है, क्या सुनना चाहते हैं आज? और ये गाना आप किन को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: बस यही है
0: ओके, ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। कॉल करने के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है कि लड़कियां ही शर्माती हैं, लेकिन सर भी शर्मा गए। मैंने बोला किन के लिए सुनना चाहते हैं, तो सर कह रहे थे कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, होने वाली है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया, इतना शर्मा गए हैं। तो लड़कियों, ये मत बोलना कि लड़के नहीं शर्माते हैं, आजकल लड़के भी शर्माते हैं। और ये प्यारा से गाना सुनो, बस मैं लौट कर आती हूँ अभी।

0: ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी दिलवाली से, प्यारा सा ट्रैक। और दोस्तों, ऊपर वाले हर किसी को ना खूबसूरत बनाते हैं। हर इंसान बहुत प्यारा है संसार में, जो भी आए हैं। डिपेंड करता है कि हमारा नज़रिया, हम किस नज़र से सामने वाले को देख रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर अपना नज़रिया खूबसूरत होता है तो सारी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है, सारी दुनिया ब्यूटीफुल है। तो इसीलिए अगर चेंज करना ही है ना, तो अपना नज़रिया चेंज कीजिए, बाकी दुनिया बहुत खूबसूरत है। और अभी कॉलर से हम बात करेंगे, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, फाइनली उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी सर, अपने नाम बताइएगा।
1: मैं मनकारा मंदिर पीटी कॉलोनी करगना बल्ली से 15 साल बोलूँ सर।
0: जी बताइएगा सर, क्या बताया आपने, आप एड्रेस दोबारा से बताइएगा। कि
1: मनकारा मंदिर पीटी कॉलोनी करगना बल्ली से 15 साल बोलूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है। आप लोग कैसे, परिवार में कैसे हैं?
0: हाँ जी, बहुत ही अच्छे हैं हम सब लोग। आप बताइएगा, आपके शहर का मौसम कैसा है सर?
1: मौसम क्या, सुबह से बूंदाबांदी हो रही थी, मौसम सही है फिलहाल।
0: अच्छा, अभी गर्मी से राहत है ना?
1: बहुत राहत मिली
0: जी है। जी बताइएगा सर, आप क्या करते हैं, अपने बारे में बताइए थोड़ा।
1: आप तो रिटायर्ड आदमी है तो BSNL से।
0: अच्छा, तो अभी घर पर रहते हैं आप?
1: घर पर रहते हैं, आप प्रोग्राम सुनते रहते हैं, आपके सुनते हैं और
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आप रेडियो के कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो बताइए आज क्या सुनना चाहते हैं आप सब?
1: आज फिल्म का नाम है राजा जानी और गीत के बोले दुनिया का मेला मेले में लड़की।
0: ठीक है सर, जी ये वाला गीत आपको सुनवाते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा गीत, लता मंगेशकर जी की बहुत प्यारी सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक। फिर आपसे भी करेंगे बातें, आप भी कॉल लगाओ हमें। अगर इस समय कार में हैं आप राइट नाउ, तो मैं आपसे कहूंगी कि हौले हौले ड्राइव कीजिए, केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा एंड पानी भी पीते रहिए, क्योंकि वेदर अभी चेंज हो रहा है और स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।

0: चावला टायर्स
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
2: 22 सुनिश्चित उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
3: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
2: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क मुरादाबाद कॉल 9412211111
2: TNC अप्लाई। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, जानेंगे उनकी फरमाइश भी बिना किसी देरी के। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका?
1: जी, मेरा नाम पिंटू है, माधवाल लेनपा से बात करता हूँ।
0: जी
1: कर रहा हूँ, मैं
0: बताएगा।
1: रेगुलर होता आपका।
0: बताएगा कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताएं मैम कैसे हैं? आपका गले का मेरे को दिक्कत थी, खत्म हो गई?
0: हाँ जी, फाइनली ठीक हो गए।
1: मुझे फीवर, मुझे हो गया जुकाम।
0: अच्छा, आपको हो गया?
1: हाँ मैम, बहुत मौसम चेंज हो गया ना, बर्फ का पानी पीने से तबीयत खराब हो गई।
0: हाँ जी, तो आपको बर्फ का पानी नहीं पीना चाहिए था ना, ज्यादा ठंडा वाटर पियेंगे आप तो गला खराब हो जाएगा ना।
1: मैम वो बात ठीक है, नॉर्मल पीने के बाद भी हो गई मैडम। मैम ऐसा हो ना, धूप ठंड का हिसाब हो गया।
0: हाँ जी, सर्दी गर्मी का भी हो जाता है।
1: तो इस वजह से मैम थोड़ा वेदर चेंज हो गया, तो उस वजह से मैं मतलब डाउन हो गई एकदम। तो
0: अच्छा,
1: इतनी ध्यान रखने के बाद भी?
0: अभी ठीक है आप?
1: हाँ तो ठीक हूँ, अब ठीक हूँ एकदम
0: चलिए,
1: मैम।
0: बहुत
1: वैसे
0: अच्छी
1: भी
0: बात
1: ये
0: है।
1: है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है सब।
0: हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिल्कुल। लेकिन अपने स्वास्थ्य
1: हाँ
0: का ख्याल रखना अपनी अपनी जिम्मेदारी है ना।
1: जी,
0: तो बताइएगा आज आप क्या सुनेंगे?
1: मैम मोहित चौहान जी की आवाज है और गाने का नाम कुछ इस तरीके से, ना है ये पाना ना है ये खोना,
0: ओके,
1: तुम
0: चलो,
1: ही दिन होता है।
0: बहुत प्यारा से गाना
1: और
0: आपने
1: मैम
0: चूज किया है।
1: इन्हें
0: हाँ
1: एक शायरी रीड करना चाहता हूँ।
0: जी, बिल्कुल सुनाइए अपनी शायरी आप।
1: मैं लफ्जों में कैसे बताऊँ कितनी खास हो तुम, जुदा होकर भी खत्म नहीं होता वो एहसास हो तुम। मेरी हस्ती होती तो तुम्हारी किस्मत संवार देता, एक दिल था तुम पे वार दिया, हजारों भी होती तो तुम पे वार देता।
0: अरे वाह, बहुत प्यारी शायरी है आपकी। थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू वेरी मच मैम।
0: आपने कॉल किया। और ये प्यारा से गाना आप इंजॉय कीजिएगा। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9833789689। और ये प्यारा गाना आप सभी के लिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आप सभी का आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और मेरे साथ नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते मैम
0: जी, आपको भी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मुरादाबाद से रणवीर सिंह
0: जी बताइएगा, क्या करते हैं सर आप?
1: जी, हम कॉपी किताबों का काम करते हैं मैम।
0: अच्छा, ओके, ग्रेट, तो बताइएगा सर आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: अभी फिल्म का गाना है रास्ते अपने जगह मंजिल है अपनी जगह।
0: ओके, ठीक है सर, ये गाना आपको सुनवाते हैं, कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। हाँ जी बताइएगा
1: जी, आपके केंद्र को आज चालू हुए आज के दिन तक 12 तारीख तक
0: जी जी जी
1: 1,166 दिन हो गए।
0: 1,166 दिन
1: हो गए,
0: अरे वाह क्या बात है।
1: घंटे भी हम आपको बता देंगे मैडम।
0: अच्छा, आप
1: सेकंड भी बता देंगे, मिनट भी बता देंगे।
0: आपने पूरा काउंटिंग किया हुआ है क्या सर?
1: जी,
0: जी बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हम सभी का ख्याल रखते हैं और अपना भी रखते हैं। एंड इस प्यारे से गाने को आप सुनिएगा। चलिए दोस्तों, अभी प्यारा सा ट्रैक सुनवाते हैं, उसके बाद आप सभी के साथ फिर से कनेक्ट होते हैं। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और हमें फोन भी लगाते रहिए। नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: हेलो हाय गुड इवनिंग माय ब्यूटीफुल लिसनर, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एंड अभी इस समय क्या कर रहे होंगे आप? बताऊं तो मैं आपको, अभी बहुत सारे जो लिसनर्स हैं हमारे वो रेस्ट करके उठे हैं और अभी सोच रहे हैं कि चलिए चाय बना लेते हैं, और कुछ अभी चाय का आनंद ले रहे हैं, कुछ अभी ऑन द विकार में हैं जो राइट नाउ अभी घर की ओर आ रहे हैं ऑफिस से, और कुछ अभी शॉप पर बैठे हैं तो कुछ काम में अपने व्यस्त हैं, कुछ सिलाई कर रही हैं हमारी फीमेल्स, और कुछ अभी सोच रहे हैं कि क्या बनाऊं मैं शाम को, यही डिसाइड कर रही हैं, है ना? यही है ना? हाँ, मैं समझ सकती हूँ आपकी बातें। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी भी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश,
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मैं रेहान बोल रहा हूँ। मैम नमस्कार।
0: जी आपको भी नमस्कार रेहान जी, बताइएगा कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, आप लोगों की दुआ है, लोगों की याद आ रही है।
0: जी बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं रेहान जी आप?
1: जी मिला ताज खास से रेहान बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा रेहान जी, आपके परिवार में सब कैसे हैं?
1: हाँ सब बढ़िया है, वैसे भी अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। और वैसे भी पहले तो आकाश भाई रामपुर की जो 8 जून को मना था, तो 90 साल की बहुत बहुत मुबारक आपको।
0: जी जी जी जी सेम टू यू। बताइएगा रिहान जी, आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: बताइए
0: सर, मौसम बहुत अच्छा है और हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप बताइएगा।
1: मौसम बहुत बढ़िया है, सुबह से मौसम बादल था, आज धूप निकल गई है।
0: जी जी जी धूप का आनंद भी लेना चाहिए ना, अगर बादल ही होते रहेंगे तो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।
0: राजा हिंदुस्तानी का कौन सा गीत आपको सुनना है?
1: इतना प्यारा मुझे रब ने मुझे बनाया।
0: ओके ठीक है, आप प्यारा सा गाना आपको सुनवाते हैं, धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं रिहान जी की पसंद पर कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। उदित नारायण जी की बहुत प्यारी आवाज़, साथ में अलका जी दे रही है साथ, अलका याग्निक जी की बहुत प्यारी सी आवाज़ में प्यारा सा ट्रैक। लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गाने गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, अभी आपने कितना प्यारा गाना सुना ना, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखती रहूं। एंड ये खूबसूरत सा एहसास इस गाने का कितना प्यारा था ना दोस्तों। कहते हैं ना कि सच कहूँ तो रब की बनाई हुई हर चीज़ अपने आप में खास है, बस ज़रूरत है उसे प्यार और शुक्रिया की नज़र से देखने की। अब अभी बात करते हैं अपने लास्ट कॉलर से, हमारे साथ कौन कहाँ से कनेक्ट हुए हैं, जानेंगे उनका नाम भी और उनकी फरमाइश भी। हेलो फरमाइश। जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: ठीक है, मेरा आवाज भी अच्छा है, मैं भी अच्छा हूँ। और तीसरा मूर्ति मनोज के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है डीजे वाले बाबू और गीत जो है डीजे वाले बाबू मेरे कान चलाते, गायक का आस्था जी और बात का। और सबसे पहले गीत आपको फिर निर्देशित आपको बहुत अच्छे आपको रेडियो मुरादाबाद में जुड़े सभी लोगों को, आपकी परिवारजन के रिश्तेदारों को, अपनी शैलियों को, रेडियो मुरादाबाद में जुड़े सभी घोषक भाई मानी को, स्टाफ कर्मचारी को, हेलो रेडियो फिर बहुत अच्छा मेरा। अब इंतजार कर हम अपने पसंद की सुने के जो सुनाइएगा पूरा सुनाइएगा। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा गीत है। धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए सर। सुनवाते हैं आपके पसंद के प्यारा सा गीत। जी तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना बादशाह जी एंड साथ में आस्था गिल की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़। और दोस्तों, अब मैं लेती हूँ आपसे जाने की अनुमति, फिर मिलूँगी मैं आपको। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और अपनों का भी ख्याल। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आपकी अपनी खुशी फिर मुलाकात करूंगी आपसे ढेर सारी बातों के साथ, मुस्कुराहटों के साथ और आपकी पसंद के शानदार गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वे नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारियों ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छुपाने पर मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरतों का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए थे। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चैन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 21 जून तक नई दिल्ली में BSF मुख्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान आपसी तालमेल वाली गश्त को और मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने, वास्तविक समय में जानकारी साझा करने में सुधार और सीमा पार आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को तेज करने पर सहमति बनी। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन सोमवार को गोवा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा आकांक्षा से वृद्धि तक। यह आयोजन सतत विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा को आकार देने में मील के पत्थर के रूप में काम करेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सम्मेलन में पवन ऊर्जा क्षेत्र के अगले चरण में ऊर्जा की मांग में वृद्धि पर चर्चा होगी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में PV सिंधु ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में अब सिंधु का मुकाबला जापान की अकानो यामागुची से होगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में कल रात तक बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। घरेलू शेयर सूचकांक आज 2% की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1695 अंक के उछाल के साथ 75,528 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
2: 22 सुनिश्चित उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
1: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
2: अपोजिट
1: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
2: TNC अप्लाई।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: अपने दिल में बसा लो, अपनी बाहों में भर लो, आज जी भर के हमसे मोहब्बत कर लो।

तेरा इंतजार बड़ी शिद्दत से कर रही है मेरी मोहब्बत की सरगर्मियां। तेरे मेरे फासलों के बीच छुपी हुई है बहुत सी नजदीकियां।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के चार टायर्स खरीदने पर
2: 2500 उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
1: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
2: अपोजिट
1: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
2: टीएनसी अप्लाई।
3: हाँ जी, गुड वाली इवनिंग है, आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना, जहां ढेर सारी बातें लेकर आती हूं। और आज की तारीख हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आज है 10 जून, और 10 जून का जो स्पेशल डे है ना श्रोताओं, बहुत ही खास है। बचपन में जब भी हम लिखने की शुरुआत

0: हेलो जी, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम RJ आनंद है और आज का जो ये सेशन आप सुनने वाले हैं, एक खास बातचीत, बेहद ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपे आज हम बात करने वाले हैं। आपको पता है ना, जब भी हम स्टूडेंट के साथ बात करते हैं, स्पेशली उनके करियर को लेकर, तो बहुत सारे स्टूडेंट बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। 12 के बाद स्पेशली बच्चे बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार 12 तो कर लिया लेकिन अब आगे क्या करें। स्पेशली पेरेंट्स बहुत ज्यादा कन्फ्यूज रहते हैं बिकॉज उनको भी नहीं समझ में आता कि बच्चों के लिए क्या बेस्ट होगा और क्या नहीं। इन सभी पर बात करने के लिए मैंने सोचा अपने वीडियो भी कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग लेडी को इनवाइट किया है अपने शो में। आज हमारे साथ कौन कहां से जुड़ी है, जब आप उनके बारे में सुनेंगे तो आपको भी ना थोड़ा सा ऐसे लगेगा, ओ माय गॉड, सच में इतनी दूर से आप लेकर आए हैं हमारे करियर को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कि हम क्या चुने क्या ना चुने। यस ऑफकोर्स, ये हमने सोचा आप FM मुरादाबाद सुन रहे हो तो मुरादाबाद पे कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और आज इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कौन है, आइए जरा बात करते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून, हाउ यू डूइंग, वेलकम टू FM मुरादाबाद।
1: थैंक यू सो मच RJ आनंद, मुझे इनवाइट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। बहुत खुश हूँ आपके साथ ये मंच शेयर कर पा रही हूँ टू डिस्कस विद द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और के साथ।
0: मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ और बहुत कम मौका मिलता है हमें कि जब हम मतलब ऐसे लोगों से भी कनेक्ट होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को छू मंतर करते हैं और उन्हीं एक आप हैं।
1: बहुत अच्छा लग रहा है कनेक्ट करके एंड आज जो टॉक शो होने वाला है इसको आगे जाने के।
0: मैं चाहूंगा थोड़ा सा आपका परिचय हो जाए हमारे मुरादाबादीज आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक है, एक्साइटेड है, सो प्लीज टेल अस अपने बारे में, थोड़ा सा क्विकली बता दें आप।
1: ओके, आई एम कृति मोहित वोरा, मैं करियर काउंसलर हूँ बाय प्रोफेशन एंड मैंने स्टडीज की भी है यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी से फॉर सोशल एंड इमोशनल लर्निंग स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन कोर्स किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, NEPSC की तरफ से फॉर करियर एंड एजुकेशन काउंसलर एंड करेंटली मैं एक एकेडमिक पोजिशन

0: बच्चों का पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही बड़े टेंशन में चले जाते हैं। उनको ये लगता है पता नहीं यार, 12th तो जैसे तैसे कर लिया बच्चे ने, अब आगे क्या कराएं, ये बड़ी कंफ्यूजन है स्पेशली हम भारतीयों में।
1: एग्जैक्टली, मैं समझ सकती हूँ एक्चुअली ये कंफ्यूजन होना भी जरूरी है क्योंकि आजकल ऑप्शन भी इतने सारे हैं। पहले तो स्टैंडर्ड ऑप्शन थे, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो तो वो साइंस में जाएगा, एवरेज हो तो कॉमर्स जाएगा,
0: एब्सोल्यूटली
1: नहीं हो तो ह्यूमैनिटीज में।
0: राइट,
1: आजकल की एरा में बहुत सारे ऑप्शन है, इंजीनियरिंग, डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस,
0: करेक्ट।
1: तो अगर वो बच्चा करियर काउंसलिंग लेता है तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस मिलता है और एक गाइडेंस मिलती है कि आगे क्या कर सकता है, रादर देन सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने से कंफ्यूजन बढ़ता है।
0: एब्सोल्यूटली कृति मैम, आपने बहुत अच्छे से इसको बताया एंड आई थिंक मुझे भी यही चीज लगती है। और आजकल इतने सारे ऑप्शन आने के बाद भी लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं। सो वेल, इस विषय में हम डेफिनेटली आपसे टॉक करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा, व्हाट एग्जैक्टली इज करियर काउंसलिंग, क्या है ये, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को कि आखिर करियर काउंसलिंग है क्या, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इस विषय में।
1: बेसिकली ये गाइडेड प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं, बच्चे को समझते हैं, उसका इंटरेस्ट, एबिलिटी, उसकी पर्सनालिटी, स्किल्स क्या क्या है, और उस हिसाब से उसको एक राइट दिशा दिखाते हैं जहाँ पे वो अपना करियर चूज कर सकता है।
0: करेक्ट, ओके। वही ना, एक्चुअली जिस फॉर्मेट पे हम बात कर रहे हैं, जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, ये आज के समय में ना बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है। हालांकि डिजिटल टाइम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सारी चीजें अवेलेबल है, बट अंदर की जो चीजें होती है ना, करेक्ट, वो चीजें लोगों को समझ नहीं आ रही होती है कहीं पर ही।
1: वो बात है क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन है बट वो उनके लिए कितना सूटेबल है, एक्यूरेट है, वो अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, वो कंफ्यूजन अभी भी होता है।
0: एग्जैक्टली मैम, एक और क्वेश्चन जो मेरे जहन में अक्सर आता रहता है कि व्हाई इज करियर काउंसलिंग बिकम सो इम्पोर्टेंट टुडे, बिकॉज मुझे लगता है कि आज के समय में करियर काउंसलिंग इतनी जरूरी क्यों हो गई है, तो ये जानना तो डेफिनेटली बनता है, वो भी जब आप मेरे साथ हैं तो।
1: यस, आज आनंद मैं समझती हूँ, जैसे मैं आपको बता रही थी कि पहले के जमाने में मैक्सिमम क्या ऑप्शन आते थे, हाथ में गिनने लायक उतने ही ऑप्शन,
0: करेक्ट,
1: इंजीनियरिंग, डॉक्टर, टीचर या कोई सरकारी नौकरी कर लो,
0: राइट,
1: से ज्यादा तो कोई ऑप्शंस किसी के मन में आते ही नहीं थे। बट अभी के कॉम्बिनेशन एंड जो चूज कर सकते हो, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक एग्जांपल मैं बोलूं, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस विद बायोलॉजी। तो अगर बच्चे को बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट है बट टेक्नोलॉजी भी उसका समथिंग पैशनेट है वो, तो ये दो कंबाइन करके वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो अभी ऐसे मेजर माइनर ऑप्शन बहुत सारे हैं जिसमें बच्चा समझ नहीं पाता है, ट्रेंड के हिसाब से कंफ्यूज हो जाता है,
0: करेक्ट,
1: एंड फिर लेटर रिग्रेट करता है। तो वेयर करियर गाइडेंस विल हेल्प हिम विद द प्रॉपर गाइडेंस देयर।
0: ऑल राइट, ओके। सो आई होप लिसनर्स जितने भी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, उनको इस सवाल का जवाब डेफिनेटली मिल गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा मैम, जो स्टूडेंट हैं वो करियर चुनते समय सबसे बड़ी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको लगता है कि अफकोर्स करते ही करते हैं, और क्या गलतियां हैं जो हो ही जाती हैं अक्सर स्टूडेंट से?
1: पांच मेजर गलतियां मैं बताना चाहूंगी एक्चुअली जो मेजरली बच्चे करते हैं। एक तो जो दोस्तों ने चूज किया है वो करियर ही हमारा करियर होता है, डिसाइड कर लेते हैं।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: दूसरा होता है पापा ने बोला मेरे को इंजीनियर बनना चाहिए, मम्मी ने बोला मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, सो लेट्स डू इट।
0: मैं
1: बनना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ अपने आप को हम पूछते ही नहीं है।
0: करेक्ट, हमारी क्या खुद की इच्छाएं हैं।
1: यस। फिर दूसरा रहता है द ग्लैमर साइड या पैसा जिसमें ज्यादा है, मैं वो बनना चाहता हूँ, बट तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटीज है नहीं है, पॉसिबिलिटी है तुम्हारे जगह में जॉब मिल पाएगी, पॉसिबिलिटी है कि नहीं, उसका करियर कितना अच्छा जाएगा वो डोमेन में, ये सब नहीं ध्यान रखते हैं। एंड फोर्थ, जैसे मैं बता रही थी, सबका इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ हमेशा देखना चाहिए, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू वर्क रियली वेल, एंड देन चूजिंग द करियर बेस्ड ऑन प्रॉपर रिसर्च इज समथिंग दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अब अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियर होना चाहते हो एंड मुरादाबाद में ही रहना चाहते हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो उधर तो कोई माइंड ही नहीं है पेट्रोलियम के लिए। जैसे नांतल आप मुरादाबाद छोड़ के जाना चाहते हो, कहीं अब्रॉड वर्क करना चाहते हो या कोई माइनिंग में वर्क करना चाहते हो, देन ओनली उसका कोई फायदा होगा आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पढ़ने का भी।
0: ओके,
1: तो दीज आर द मेजर फाइव थिंग्स मैं आपको बोल सकती हूँ। एक फ्रेंड्स की तरफ से स्ट्रीम्स चूज मत कीजिएगा पेरेंटल प्रेशर या सोसाइटी के प्रेशर से। दूसरा, ट्रेंड या पैसा देख के अपनी इंटरेस्ट अपनी स्ट्रेंथ को इग्नोर करके और

0: पर एडमिशन ना लेके रिसर्च करने के अलावा।
1: वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया एंड आई एम श्योर जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बहुत ही बारीकी से आप चीजों को एक्सप्लेन कर रही हैं। थैंक यू सो मच। एंड एक क्वेश्चन जो मेरे नहीं हर किसी के जहन में होता है कि जो करियर काउंसलिंग है वो किस उम्र में या किस स्टेज में एक्चुअली शुरू होनी चाहिए, आपको मैम क्या लगता है?
0: जो आइडियल एज बोलते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, वो ग्रेड 8 to 10 होता है।
1: ऑलराइट,
0: ऐसा नहीं है अगर अभी मेरा कोई लिसनर अभी हो कि 11th ग्रेड का है, इट्स नॉट द राइट टाइम, इसका टाइम चला गया है, नहीं। बट आइडियल जो बोलते हैं वो क्लास 8 to 10th ग्रेडर्स के लिए होता है। बट ये यू कैन इवन टेक करियर काउंसलिंग एट दी ग्रेड 11 और व्हेन यू आर वर्किंग, या आप कॉलेज में एक्चुअली एडमिशन ले चुके हो बट फिर कंफ्यूज हो, तो देर इज नो इश्यूज, नहीं ले सकते। बट आइडियल इज ग्रेड 8 to 9।
1: 100%, बहुत ही बढ़िया कॉटन मैम। एक्चुअली मुझे भी लगता है मैम, जो आपने बहुत अच्छे से जो चीजें डिफाइन करी, जो आपने एक्सप्लेन किया, ये बहुत अच्छा एक तरीका और लोगों को समझ में भी आ रहा है। आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे हैं गाइस, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज करियर काउंसलिंग पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैम के साथ, और बहुत जरूरी है। अभी जिन बच्चों ने 12th किया है, हमने सोचा उनके लिए जो कन्फ्यूजन वाला ये सेशन हो जाता है ना 12th के बाद, कि कहां जाए, कौन सी स्ट्रीम ले, किस में जाए, किस में करियर बनाए, बहुत सारी यू नो स्पेशली करियर को लेकर ही मैम, स्टडी को लेकर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
0: आई अंडरस्टैंड, ये कंफ्यूजन जो वो एज में रहता है वो बहुत ज्यादा ही रहता है, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग मच क्लैरिटी, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या, आप नहीं समझ पाते हो, बहुत कंफ्यूजन रहता है।
1: करेक्ट। अच्छा कृतिका मैम, मैं एक क्वेश्चन जो मुझे आई एक्चुअली लग रहा है कि आपसे पूछना चाहिए, जो करियर काउंसलिंग है, क्या सच में वो जो कमजोर बच्चे होते हैं, जो कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा चीजों को लेके, जो सही डायरेक्शन नहीं पकड़ पाते हैं, क्या उन्हीं के लिए है या फिर सबके लिए है करियर काउंसलिंग, क्या लगता है आपको मैम?
0: बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है कोई बच्चा जो वीक है या टॉपर है उनके लिए ही होता है। ये करियर काउंसलिंग हर एक बच्चे के लिए है जिसको यू नो राइट डायरेक्शन चाहिए, अपनी पर्पस एबिलिटी समझ के एक करियर चूज करना है, सो दैट यू नो हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट दोनों मिल पाए। करियर इज चॉइस ऑफ लाइफ बेसिकली, जिस हिसाब से मैं हमेशा बोलती हूँ, इट इज नॉट यू नो सिर्फ वीक बच्चा अपना चॉइस बनाता है कि यू नो टॉपर बनाता है, सबको अपनी लाइफ चॉइस करना होता है।
1: एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। कृतिका मैम, दिस इज माई पर्सनल क्वेश्चन, आई वांट टू आस्क यू, दिस इज वेरी वेरी यू नो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई डोंट नो, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है क्योंकि मैं पहली बार किसी करियर काउंसलर से कनेक्ट कर रहा हूँ अपने स्टेशन के थ्रू, एंड आई एम वेरी ग्लैड आई एम हियर विद यू, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल कॉन्वर्सेशन विद यू मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपने शेयर किया हमारे स्टेशन पे हमारे लिसनर्स के लिए, सो थैंक यू वेरी मच बाय द वे।
0: आई एम टोटली हैप्पी टू बी हियर एंड डिस्कस, बिकॉज ये मेरा बड़ा पैशन है टू गाइड यंग एडल्ट, यू नो।
1: सो यू नो, थैंक यू वेरी मच मैम, माय प्लेजर मैम। दिस इज माय क्वेश्चन कि क्या करियर काउंसलिंग सेशन बेसिकली जो होती है वो किस चीज के लिए, हालांकि इसमें करियर ऑप्शन जब ये दे दिया गया है करियर काउंसलिंग, सो आई नो वेरी वेल, बट मुझे अंदर की चीजें जाननी है, इसमें किस चीज के बारे में बात होती है, कैसे जो काउंसलर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या चीज करते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको जानना है कि बेसिकली करियर काउंसलिंग सेशन में होता क्या है।
0: ओके, तो मैं आपको बता दूंगी अगेन, ये भी एक 5 points डिस्कस कर लूंगी। पहले हम स्टूडेंट को समझते हैं उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसकी हॉबीज क्या है। देन सेकेंडली उसका एकेडमिक बैकग्राउंड,
1: ओके,
0: पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, नहीं है, एवरेज है, ट्यूशन क्लासेस का जाना आना बंद है, नहीं, ऑल दिस एकेडमिकली वी अंडरस्टैंड द स्टूडेंट। नेक्स्ट एक्सप्लोर करते हैं उसके साथ करियर ऑप्शन,
1: ऑलराइट,
0: एंड देन वी ऑल्सो कंडक्ट अ साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसमें यू नो थ्रू दैट रिपोर्ट मैं समझ पाती हूँ उनका इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, वीकनेसेस सब जान पाते हैं, एंड देन लास्टली वी क्रिएट द करियर रोड मैप।
1: ऑल राइट, अभी मेरा क्वेश्चन भी यही होने वाला था कि व्हाट इज द रोल ऑफ साइकोमेट्रिक्स, इसी पर हम लोग अभी बात करने वाले थे।
0: यस यस, तो साइकोमेट्रिक बेसिकली एक साइंटिफिक टूल है जिससे हम बच्चे को समझ पाते हैं।
1: ऑल राइट,
0: जैसे ईपीजी होता है जिससे हार्ट का पता पड़ता है, द सेम वे एक करियर काउंसलर एक टूल यूज करता है टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी एंड स्किल्स। तो ये बहुत डेटा बेस्ड है एंड इट इज रिसर्च बैक, साइंटिफिकली बैक टूल है, विच इज नॉट रैंडम गेस्ट वर्क के हिसाब से, नहीं मैं बताती हूँ कि ये चूज कर लो, ये कर सकते हो, नहीं, इट्स ऑल साइंटिफिकली बैक।
1: ऑल राइट, मैम जेन्युइनली आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट. अगला मेरा क्वेश्चन, इनफैक्ट ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये पब्लिक के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें डेली पूछते रहते हैं हमारे लिसनर्स, रेडियो के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टिविटी बनती रहती है. तो बहुत सारे स्टूडेंट हमें क्वेश्चन करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स सबसे ज्यादा. वैसे मैम अगर मैं बात करूँ करियर चूज करने में पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है, कितना इंपॉर्टेंट होता है उनका रोल, स्पेशली पेरेंट्स का?
0: पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे के भविष्य प्लान करने के लिए. रादर दैन एक पेरेंट को हमेशा अपनी ड्रीम्स इम्पोज नहीं करनी चाहिए, लाइक मैं चाहती हूँ आप इंजीनियर बनो, फिर मैं चाहती हूँ आप डॉक्टर बनो, ये नहीं होता है. इनफैक्ट बच्चे का इंटरेस्ट समझना, उसकी एबिलिटी समझ के उसको सपोर्ट करना, एनकरेज करना, ओपन कॉन्वर्सेशन करना बच्चे के साथ, ओपनली डिस्कस करना कि ये करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, क्या सोचा गया था, कैसे आपने ये मन में आया, वेरी ओपन डिस्कशन विद द स्टूडेंट, सो दैट यू नो वो भी बहुत कॉन्फिडेंट लगेगा. इट इज फ्रॉम क्लैरिटी टू कंफ्यूजन टू क्लैरिटी बेसिकली.
1: या That's very nice, ma'am. That's very nice. Kritika ma'am, Kirti ma'am, मेरा जो question एक और है कि student भविष्य में जो उनके career को लेके वो खुद को मतलब कैसे prepare करें, कैसे खुद को तैयार करें ताकि जो भी challenges है, जो भी competition का time है उसमें वो खुद को आगे लेकर जा सकें, खुद को confident feel कराएं. होते हैं ना student करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कभी कभी वो unconfident हो जाते हैं, unconscious हो जाते हैं, जिसकी वजह से आधी चीजें उनकी automatically पीछे हो जाती हैं.
0: मैं कुछ फोर पॉइंटर्स बताऊंगी जो नॉर्मली एक बच्चा कर सकता है अपना एकेडमिक प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए बेसिकली. फर्स्ट है जो 21st सेंचुरी के जो बिल्ड करने को बोलते हैं, तो सारी फोर सीज इन एजुकेशन. वन इज क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी.
1: ऑलराइट,
0: अगर ये चार स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो अपने में बहुत अच्छा रहेगा. नेक्स्ट जितना हो सके प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए जाओ, समर कैंप, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, जितना भी करेक्ट कर सकते हो विद इन योर लोकेलिटी या बाहर कॉलेजेस में, दैट इज समथिंग दैट आई वुड हाईली रेकमेंड.
1: दैट्स वेरी नाइस.
0: थर्ड थिंग इज टू रीड बुक्स, टू हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ योरसेल्फ, कनेक्ट विद अ मेंटर.
1: एब्सोल्युटली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
0: अगर आप कोई कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर योर ग्रेजुएशन, तो उधर के पास स्टूडेंट, करेंट स्टूडेंट से समझो कैसा है एनवायरमेंट, ऐसा ही आप कॉलेज जा रहे हो, क्या मेंटर्स सिखाते हैं, तो कनेक्ट विद दोस लाइक माइंडेड पीपल. नेक्स्ट इज यू नो टू बी अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी, एंड लास्टली विच इज क्वाइट एसेंशियल करियर के लिए भी, पर्सनली भी, कॉन्फिडेंस एंड टाइम मैनेजमेंट.
1: एब्सोल्युटली 100% सही बोला आपने मैम. आजकल ना मोबाइल का बहुत ज्यादा आपको भी पता है क्रेज बढ़ गया है. आजकल के यंगस्टर, जेंजी, सभी लोग मोबाइल में, पेरेंट्स भी सबसे ज्यादा यूज करते हैं नो डाउट. तो ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया है, मोबाइल की दुनिया, इसमें लोग बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे सर्च करते हैं, गूगल पे जाते हैं, आजकल चैट जीपीटी, AI सब कुछ आ गया है. तो लोगों को लगता है यहाँ से भी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, जबकि मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली जब आप किसी करियर काउंसलर के पास जाते हो तो जो डायरेक्शन वहां से मिलती है वो आपको चैट जीपीटी या AI से नहीं मिल सकती है. इस पे आप क्या कहना चाहेंगी?
0: उसमें इंफॉर्मेशन बहुत मिलता है, बट आपके लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, वो नहीं समझ में आता है.
1: करेक्ट, करेक्ट.
0: इट्स वेरी वास्ट, एक फूल की तरह मैं बोल सकती हूँ या नदी की तरह इंफॉर्मेशन रहता है, बट उसको फिल्टर करके समझना कि आपके लिए क्या अप्लाई कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते. सो बिलीव इन योर सेल्फ, योर पैशन कैन बिकम योर स्ट्रेंथ लेटर ऑन.
1: Absolutely, ma'am. Thank you so much. इतना time आपने share किया हमारे listeners के साथ, and thank you so much for your privileged time. And I'm so happy आपने इतना time निकाला और आपने इतनी सारी information share करी. Thank you so much once again. और आपको ma'am, I hope अच्छा लगा हो हमारे साथ, हमारे मुरादाबादी से बातचीत करके.
0: Yes, बहुत अच्छा लगा. And I would end with a small quote basically.
1: Please, ma'am.
0: Choose a job you love and you will never have to work a day in your life.
1: All right, ma'am. And by the way, एक और एक लास्ट मैसेज, एक छोटा सा आपकी तरफ से कोई एक संदेश, what final message would you like to give student and parents listening today?
0: Parents के लिए you know support your children, समझो उनको जितना भी हो सके और भरोसा रखो उनकी जर्नी में भी. That is quite essential. And बच्चों के लिए यू नो बिलीव इन योर सेल्फ योर पैशन कैन बिकम योर स्ट्रेंथ इज समथिंग दैट आई वांट टू ऐड ऑन टू
1: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच मैम, लवली टॉकिंग टू यू. आई कांट बिलीव दिस कितनी जल्दी से हमारा टाइम हो गया और हमें तो ऐसा लग रहा है कि अभी कितनी सी बात हुई, अभी तो और करनी थी हमें आपसे बातचीत. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अनबिलीवेबल 20 मिनट होने को आ गए बट पता ही नहीं चला. मैंने इंटरव्यूज तो बहुत सारी किए लेकिन ये बड़ा डिफरेंट था.
0: थैंक यू सो मच, इट रियली मींस अ लॉट. सीरियसली आई विश ऑल माय लिसनर्स अ वेरी ग्रेट डे अहेड
1: एंड थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर अखिल जी जिन्होंने आपसे हमें कोऑर्डिनेट कराया. आई एम सुपर ग्लैड बिकॉज बहुत कम चीजें ऐसी होती है जिनके साथ आप जब बात करते हो तो एक पॉजिटिविटी भी आती है और कुछ सीखने को भी मिलता है. आई एम श्योर बहुत सारे लिसनर्स को भी, बहुत सारे पेरेंट्स को भी नॉलेज मिलेगा. इनफैक्ट मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला है. सो थैंक यू मैम वंस अगेन. सो मैम जाते जाते हमारे मुरादाबादीज को आप कोई संदेश देना चाहें और साथ में कुछ कहना चाहें जो आपको लगता है कि छूट गया है, नहीं ये चीज भी मुझे बोलनी चाहिए. आनंद,
0: तो करियर एक ऐसा है यू नो इट इज ऑल योर लाइफ चॉइस, तो एक अच्छा साउंड डिसीशन, इन्फॉर्म डिसीशन लीजिएगा. बिलीव इन योर सेल्फ, योर पैशन एंड दैट विल वर्क यू एज अ स्ट्रेंथ. एंड पेरेंट्स के लिए जितना हो सके उनको सपोर्ट कीजिए, समझिए और उनकी जर्नी में साथ दीजिए. बहुत लंबा जाएंगे वो. एंड एट एनी टाइम किसी को भी करियर में कंफ्यूजन है, क्लैरिटी चाहिए, डिस्कस करना है, यू कैन रीच आउट टू मी. आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल. मैं एक मैसेज या एक कॉल के थ्रू हमेशा अवेलेबल रहती हूँ. आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू. कभी भी आपको क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूजन है करियर में चूज करने के लिए, यू कैन रीच आउट टू मी. कॉल या मैसेज कुछ भी कर सकते हो. माय नंबर इज 9137406647.
1: थैंक यू सो मच मैम. बाय बाय मैम. थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू मैम.
0: ग्रेट, थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच.
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा. इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं. आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद. फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534.
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा. डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है. एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा.

0: और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड।
2: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।

0: हेलो जी नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त
1: प्राची।
0: यस, और प्राची आज हम पता है किस चीज की बात करने वाले हैं?
1: हाँ, किस चीज की बताइए?
0: आज हम बात करने वाले हैं गोंडा के दही बड़े और खस्ता कचौड़ी की।
1: अरे वाह, तो शुरू करते हैं जल्दी।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं गोंडा की गलियों में, जहाँ की हर सुबह उम्मीद लेकर आती है, जहाँ की परंपराएं आज भी दिलों में बसती है, जहाँ स्वाद में संस्कृति है और विकास में एक नई पहचान, जहाँ छोटे छोटे हुनर बन रहे हैं बड़े सपनों की उड़ान। ये है नया उत्तर प्रदेश, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, और आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की उन कहानियों से जो सिर्फ विकास का नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा, स्वाद और आत्मनिर्भरता की मिसाल है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने भीतर एक अलग रंग, एक अलग खुशबू और एक अलग पहचान समेटे हुए है। कहीं चिकनकारी, कहीं बनारसी साड़ी, कहीं पेड़ा, कहीं इत्र, और कहीं ऐसा स्वाद जो बरसों तक रह जाए याद।
0: और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे ही जिले में जहां की सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म खुशबू से, जहां गलियों में स्वाद बसता है और जहां हर निवाला अपने पन का एहसास देता है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज का एहसास हमारा खास पड़ाव है गोंडा, और आज यहाँ बात होगी यहाँ के मशहूर दही बड़े और खस्ता कचौड़ी, जो अब एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के जरिए एक नई पहचान हासिल कर रहे हैं।
0: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ गोंडा की गलियों तक

0: सीमित था, आज वह स्वाद पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपनी खुशबू फैला रहा है, क्योंकि ये है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
1: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त, हल्की हल्की ठंडी, सड़क के किनारे दुकान से उठती देसी घी की खुशबू और कढ़ाई में छनती हुई खस्ता कचौड़ी
1: और सामने बड़ी से भगौड़ी में रखा मुलायम दही बड़े, ऊपर से ठंडा ठंडा दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक।
0: अरे बस बस, सुनते मुँह में जैसे पानी ही आ गया है।
1: दोस्तों गोंडा का दही बड़ा सिर्फ एक व्यंजन ही नहीं बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी की पहचान है। किसी के घर मेहमान आए हो, कोई त्योहार हो, शादी हो या फिर शाम की छोटी सी दावत, दही बड़े हर खुशी का हिस्सा बन जाते हैं।
0: यह दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद ही खास होती है। उड़द की दाल को घंटों तक भिगोया जाता है, फिर उसे बारीक पीस कर फेटा जाता है ताकि बड़ा एकदम मुलायम बने।
1: और कई दुकानदार तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की हल्की स्टफिंग भी करते हैं ताकि स्वाद में आपका रॉयल टच बना रहे।
0: और फिर बड़े को सुनहरा होने तक तला जाता है और बाद में ताजी मलाईदार दही में डुबो दिया जाता है।
1: ऊपर से मीठी इमली की चटनी, हरा धनिया की चटनी, भुना जीरा, चाट मसाला और अनार के दाने।
0: वाह वाह, सच कहें तो जैसे गोंडा के दही बड़े सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल जीत लेते हैं।
2: ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना ODOC आपके गोंडा जिला में दही बड़ा और कचौड़ी का चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
3: नमस्कार, हमें इस पता लगा कि हमारे दही बड़े का चयन गोंडा जिला के अंतर्गत और कचौड़ी का चयन हमारे गोंडा जिला के अंतर्गत ODOC योजना में चयन हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। और इसके बारे में यही कहा जाएगा, जहाँ तक हमको जो जानकारी मिली है, प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जो छोटे व्यापारियों को, मझोले व्यापारियों को, जो जिला स्तर पर अच्छा खाद्य पदार्थ बनाते थे उनको सम्मान मिला है, उनको प्रोत्साहित करने की योजना है।
2: चलिए बताइए, इस योजना से आपको व इस व्यापार के लोगों को, जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा?
3: इस योजना से हमें तो बहुत लाभ होगा और हमारे साथ जो व्यापार में, इस व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लाभ होगा, जिससे कि ये कल्याणकारी योजना है, छोटे व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजना है। और इससे जुड़े हर जिले में जो अहम खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य आइटम, मशहूर खाद्य पदार्थ है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग, मतलब जो भी सरकार से हर तरीके का हर संभव मदद मिलती है, लोन संबंधी हो या हर तरीके का, सरकार उसमें मदद कर रही है। और छोटे व्यापारियों को जो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे उनको प्रोत्साहित करके फ्रंट पर ला रही है।
1: और अब बात करते हैं गोंडा की दूसरी पहचान, खस्ता कचौड़ी की।
0: दोस्तों गोंडा पर अवध संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है और अवध की रसोई हमेशा से अपने नसाफत से भरे स्वाद और मसालों के लिए मशहूर रही है।
1: यही वजह है कि यहाँ की कचौड़ी भी साधारण नहीं बल्कि बेहद खास होती है।
0: इसकी भराई में उड़द दाल, हींग, धनिया, सौंफ, काली मिर्च और कई देसी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है
1: और फिर इसे धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार ना हो जाए।
0: गोंडा में सुबह सुबह दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और ये एक आम बात है, कोई चाय के साथ कचौड़ी खा रहा है तो कोई दोस्तों के संग नाश्ते का आनंद ले रहा है।
1: और सबसे मजेदार बात, यहाँ कचौड़ी सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है।
0: दोस्तों गोंडा में लगभग 100 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयों में 400 से अधिक कारीगर इस कारोबार से जुड़े हैं।
1: यानी ये स्वाद सिर्फ लोगों की पसंद नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी भी है।
0: और अब बात उस पहल की जिसने गोंडा के इन पारंपरिक स्वादों को एक नई पहचान दी है।
1: जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना।
0: क्या बात है, इस योजना का उद्देश्य है हर जिले की खास पहचान को आगे बढ़ाना, स्थानीय हुनर को मंच देना और छोटी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाना।
1: गोंडा की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी को भी इसी योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
0: सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सपोर्ट और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: यानी जूस स्वाद पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, अब वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़े बाजारों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार स्थानीय कारोबार, पारंपरिक व्यंजन और छोटे उद्यमी को प्रोत्साहित कर रही है
1: और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। गाँव और कस्बों के लोग अब अपने हुनर से नई पहचान बना रहे हैं।
0: दोस्तों, किसी भी प्रदेश की असली पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं होती,
1: बल्कि वहाँ के लोगों, उनकी मेहनत, उनकी संस्कृति और उनके स्वाद से होती है।
0: गोंडा का दही बड़ा और खस्ता कचौड़ी इसी की पहचान का हिस्सा है। श्रोताओं,
1: एक ऐसा स्वाद जो परंपरा से जुड़ा है और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: बढ़ती लागत, साफ सफाई बनाए रखना, कम सेल्फ लाइफ और कुशल कारीगरों की कमी,
1: लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार इन चुनौतियों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं।
0: नई तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट के जरिए छोटे व्यापारियों को मजबूत बनाया जा रहा है,
1: ताकि गोंडा का स्वाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी खास पहचान बना सके।
0: अगर अभी हमारे सामने गर्मा गर्म कचौड़ी आ जाए ना, तो मैं इंटरव्यू छोड़कर सीधा प्लेट पकड़ लूंगा,
1: और अगर साथ में दही बड़ी भी मिल जाए तो?
0: तो भाई फिर शो खत्म होने तक कोई बात ही नहीं करेगा, सिर्फ खाने की आवाज आएंगी।
1: दोस्तों, अगर आप कभी गोंडा जाए, वहाँ की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी का स्वाद जरूर,
0: और अगर आपने पहले से खाया है तो हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया,
1: क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने की चीज नहीं, यादों का भी हिस्सा होता है।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे गोंडा का पारंपरिक स्वाद आज विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है,
1: कैसे छोटे कारोबार बड़े सपनों में बदल रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश का हर जिला अपनी नई पहचान बना रहा है।
0: हम फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और जिले की नई कहानी के साथ, नए स्वाद के साथ और नई संस्कृति और नए विकास के साथ।
1: तब तक सुनते रहिए विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, और फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत। मैं आनंद और मेरे साथ
1: प्राची,
0: जल्दी आपको मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय
1: बाय बाय।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बस जहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
2: 2500 उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
1: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
2: अपोजिट
1: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
2: TNC अप्लाई।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
3: सनी डे,
4: इट इज अ सनी डे।
3: ओ सनी शेड्स डे यार।
4: यार सॉरी।
3: और फिर मिला है तुलसी?
4: कितने ब्रो, मेरी तुलसी कुमारी को अता पता है ही नहीं यार।

0: ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: भारत की बौद्धिक और सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा की दिशा में ज्ञान भारतम मिशन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए श्री शेखावत ने कहा कि इस मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। ये साक्षात्कार अब से कुछ देर में 7:10 पर हमारी विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के में प्रसारित किया जाएगा। भारत एआई मिशन ने आज वारिया नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकासेंदु अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सुजाता जी।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
1: ये तो सुजाता जी अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
0: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
1: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
0: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
1: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
0: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
1: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए। उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं, तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं तो उसके बाद हाथ धोएं, बहुत अच्छे तरीके से अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
0: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
1: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
0: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी

0: केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है।
1: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको दो सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कन्फर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
0: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
1: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्वीसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्वीसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
0: अच्छा, दस्त और डायरिया उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
1: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरिनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
0: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
1: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
0: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
1: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है लेकिन इसके साथ कैसे प्रसार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्वीसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
0: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
1: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्त्री होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें। कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
0: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
1: सही जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना न केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों के विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है, तो वो आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
0: सर आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
1: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता ये स्वास्थ्य की कुंजी है और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास हिंदु सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
6: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
9: कॉल 8826213131।

0: एबा
1: कर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आज लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो अपनी विकास यात्रा की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है।
3: भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ।
1: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में आयोजित जन कल्याण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। इसी क्रम में प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने पीलीभीत के बनकटी में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। श्री प्रसाद ने कहा कि एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल में गरीबों को पक्का मकान देने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से लखनऊ में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून तक 110 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। और मांग के अनुरूप बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। श्री योगी ने कहा कि नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
0: प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है।
1: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। संशोधित समय के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एनटीए ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ वर्कशीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT द्वारा जुलाई 2026 से बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का नया स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य भविष्य में साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित टीम तैयार करना है।
5: इसका मुख्य उद्देश्य एक साइबर वॉरियर्स की ट्रेनिंग है। साइबर प्रोटेक्शन की हर एक देश को इस समय अत्यधिक आवश्यकता है। मैं एडमिशन JEE एडवांस के द्वारा नहीं होगा, एडमिशन एक हैकाथॉन मुख्यतः के द्वारा होगा और इसका उद्देश्य है ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढना जो कि प्रारंभ से ही इस दिशा में रुचि रखते हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं।
1: केंद्र सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में आज 4 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना थाना आसीवन क्षेत्र में हुई जब एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। कहा, नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी ये पहल। और IIT कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम। साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: चिज़्बा। उठा माजा किंग, ओ माजे किंग।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का पीएम सूर्य।
2: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और दिल्ली सरकार ने ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अश्विनी चोपड़ा चौक किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में आज मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में कहा कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के तौर पर पहचाना जा रहा है।
5: प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों, दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप बीते 12 वर्षों में भारत ने खेत खलिहान से लेकर चंद्रयान तक और गांव की चौपाल से लेकर वैश्विक मंचों तक अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में भारत ने जो यात्रा तय की है वो असाधारण है। आज का भारत वैश्विक एजेंडा को प्रभावित करने वाला है, दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखता है। और ये सब कुछ संभव यदि हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन के कारण, उनके नेतृत्व के कारण।
4: मुख्यमंत्री ने बताया कि अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया है।
5: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल एम्पावरमेंट मिला और भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में नई पहचान दी गई। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन लगभग 6 गुना ज्यादा बढ़ा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया है।
4: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 4.5 लाख किलोमीटर की ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनी हैं और आज एक भी गांव नहीं है जो हाईवे से न जुड़ा हो।
6: 12 वर्षों को देखें तो भारत की जनता और सरकार के बीच बने उस मजबूत विकास की कहानी कहते हैं जिसने भारत को दिशा दी और दशा को बदला है। 2014 से पहले 18,000 गांव में लाइट नहीं थी। उन्होंने संकल्प लिया और 4 साल में ये संकल्प पूरा किया और उसके अगले 4 साल में हर घर में बल्ब जला। आज 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है। आज चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है।
4: दिल्ली नगर निगम ने आज से अपने सभी 12 जोन में विशेष स्वच्छता और साफ सफाई अभियान का शुभारंभ किया। अभियान 20 जून तक जारी रहेगा। ये अभियान मोदी सरकार के 12 वर्ष के राष्ट्रव्यापी उत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना और स्वच्छता, कचरा प्रबंधन तथा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के प्रयासों को और सुदृढ़ करना है। इस अवसर पर उप महापौर डॉ मोनिका पंत ने शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के कड़कड़डूमा गांव में आयोजित विशेष स्वच्छता अभियान में भाग लिया। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज जल बोर्ड मुख्यालय में पानी के टैंकर का कमांड और कंट्रोल सेंटर और SCADA प्रणाली का निरीक्षण किया। उन्होंने राजधानी में टैंकर ऑपरेशंस की निगरानी प्रणाली का जायजा भी लिया। श्री सिंह ने 1916 हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों पर कार्रवाई की प्रणाली की भी समीक्षा की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अधिकारियों को शिकायतों पर कार्रवाई के समय में और सुधार करने तथा समस्याओं का समाधान और भी तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि समय पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और नागरिकों की समस्याओं का तेजी से समाधान करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन सराय काले खां की ओर स्थित दूसरे प्रवेश द्वार के पुनर्विकास का कार्य शुरू हो गया है। नमो भारत फुटओवर ब्रिज को रेलवे फुटओवर ब्रिज के साथ जोड़ने और एक अस्थायी बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है, जिसे मई 2026 में यात्रियों के लिए खोल दिया गया। श्री उपाध्याय ने बताया कि यात्री सुरक्षा के हित में और कार्य के सुचारू निष्पादन के लिए सराय काले खां की ओर स्थित रेलवे स्टेशन का मौजूदा प्रवेश और निकास द्वार दोबारा बंद कर दिया गया है। राजधानी के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सुबह एक रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आग इमारत के भूतल स्थित पार्किंग क्षेत्र में लगी, जहां खड़ी कुछ मोटरसाइकिलें और स्कूटर इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद आग पूरी इमारत में फैल गई।
7: दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार सुबह 2:25 पर घटना की सूचना मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 8 दमकल गाड़ियां भेजी गई। राहत और बचाव अभियान के दौरान 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर कहा कि तुगलकाबाद में आग लगने की घटना और इससे हुई जान माल की हानि बेहद दुखद है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि घायलों को हर संभव बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और सभी संबंधित विभाग समय पर मदद और सहायता पहुंचाने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर और सैदुलजाब में आग की घटनाओं में लोगों की जान बचाने वाले बहादुर नागरिकों और बचाव कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन बहादुर नागरिकों ने संकट के समय कई लोगों की जान बचाने में असाधारण साहस, सूझबूझ और संवेदना का परिचय दिया। उन्होंने इन दुर्घटनाओं में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। दिल्ली परिवहन निगम DTC ने राजधानी में सार्वजनिक यातायात की पहुंच को और ज्यादा बेहतर बनाने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में DTC ने एक नया रूट 806A का शुभारंभ किया है। एक रिपोर्ट।
8: दिल्ली के द्वारका मोड़ और पापरवत गांव के बीच पायलट आधार पर शुरू किया गया नया रूट 800A सेवा पापरवत गांव, नांगली, सकरावती, काकरोला और आसपास के इलाकों के नागरिकों को सीधा बस कनेक्टिविटी देगी। यह मार्ग दक्षिण पश्चिम दिल्ली के ग्रामीण और शहरी सीमावर्ती इलाकों में बेहतर सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की लंबे समय से चल रही मांग को पूरा करता है। फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए DTC ने देवी रोड D6606 को शुरू किया है, जो उत्तम नगर टर्मिनल को DDA फ्लैट बकरवाला से जोड़ता है। दिल्ली के यातायात कनेक्टिविटी को और मजबूत करते हुए DTC ने रूट नंबर RL79 को द्वारका सेक्टर 23 पोचनपुर से आगे बढ़ाकर द्वारका सेक्टर 23B महादेव अपार्टमेंट्स तक कर दिया है। इस अवसर पर दिल्ली परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नए विकसित हो रहे रिहायशी इलाकों और बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवागमन की जरूरतों और बेहतर सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन मार्गों को जोड़ने और विस्तार करने की योजना बनाई गई है। परिवहन मंत्री ने कहा कि यह पहल सार्वजनिक परिवहन को अधिक समावेशी, किफायती और सुविधाजनक बनाने के साथ साथ पूरी दिल्ली में सतत और ग्रीन मोबिलिटी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की सरकार की लगातार कोशिश को दर्शाता है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
4: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने राजधानी में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए डेवलप रिस्पॉन्सिबल आउटलुक फॉर प्लास्टिक परियोजना DROP का शुभारंभ किया। ये पहल प्लास्टिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन को सुदृढ़ करने, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज डॉ बी आर अम्बेडकर वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री सिंह ने अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्थाओं और आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्री ने सिविल लाइन्स स्थित अपने आवास पर प्रगति पथ यात्रा के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी, जनोन्मुखी तथा व्यापक बनाने के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। दिल्ली के ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अब अश्विनी चोपड़ा चौक कर दिया गया है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नाम पट्टिका का अनावरण किया। दिवंगत अश्विनी चोपड़ा वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी और करनाल से पूर्व सांसद थे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस चौक का नाम बदलना बहुत ही सुखद पल है।
9: आज एक खुशी का मौका है कि इस चौक को दिल्ली सरकार ने मिन्ना चौक के नाम से निमंत्रण किया है और इस चौक को हम सबका फर्ज है, सरकार का भी है लेकिन आप सबका है कि ये दिल्ली का सबसे साफ सुथरा और अच्छा चौक कहलाया जाए।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत अश्विनी चोपड़ा का जीवन जनसेवा, संवेदनशीलता और सामाजिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहा।
10: समाज के उन प्रबुद्ध नागरिकों को जिनका समाज के लिए योगदान रहा है, ऐसे वरिष्ठ जनों को सम्मानित करने के लिए किसी चौक चौराहे का नाम रखते रहे हैं। आज ये चौक जो पूर्व में ब्रिटानिया चौक कहलाता था, पुण्यतिथि जो अश्विनी चोपड़ा जी की है, हमने ये तय किया कि इस चौक का नाम अश्विनी चोपड़ा मिन्ना रखा जाए ताकि एक ऐसे निर्भीक पत्रकार जिन्होंने हमेशा समाज और देश की आवाज बन करके काम किया, उनको सरकार की ओर से सम्मानित किया जाए।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों को सुरक्षित और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में ये बात कही। गृहमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। श्री सोमनाथन ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन पुनर्परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय निशानेबाजी को नई पहचान दिलाने और अनेक खिलाड़ियों का मार्गदर्शन देने में जसपाल राणा का योगदान सदैव याद किया जाएगा। राजधानी में आज दिन भर उमस भरी गर्मी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने तथा दोपहर के बाद हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारत मजबूत वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। तुगलकाबाद में रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन और दिल्ली सरकार ने ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अश्विनी चोपड़ा चौक किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: चावला टायर्स पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
4: 2500 उपहार, 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त। ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
3: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: TNC अप्लाई।
5: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
6: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज की शाम और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद अजीम। अजीम भाई, वेलकम टू FM मुरादाबाद। कैसे हो भाई?
1: बढ़िया, एक नंबर।
0: क्या बात है, एक नंबर तो आप हो ही, नो डाउट यार। और अजीम जब भी आते हैं कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता है, एंड आई एम श्योर आज की शाम भी कुछ खूबसूरत चीजें लेकर आए हमारे दोस्तों के लिए। तो अजीम, ये बताओ रेडियो पे आके कैसे लग रहे हैं अब जब आए?
1: मजा आ रहा है।
0: क्या बात है, बहुत
1: ही डरी रहा हूँ लेकिन बढ़िया, मजा आ रहा है।
0: वेरी नाइस यार, लेकिन डरना मत भाई। देखो, जो मेरे साथ बैठते हैं ना, डर नहीं लगता है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से हॉस्पिटैलिटी देता हूँ। हाँ। पता नहीं चलता है कि कब हमने इंटरव्यू करके एंड भी कर दिया,
1: ये तो
0: है ना। एंड आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा
1: बहुत ज्यादा।
0: तो यार, आज की शाम जो है हम कुछ बेहतरीन सा सुनना चाहेंगे अपने दोस्तों के नाम, अपने लिसनर्स के नाम। आप क्या सुनाना चाहोगे?
1: स्टार्टिंग में तारीफ की करना चाहूंगा, वो सूर्य स्टार्टिंग की सैडनेस।
0: मुझे लगता है कि यार तारीफ अगर हो जाए तो फिर मजा आ जाए। हाँ, चार चांद बन जाए। हाँ, है ना, चार चांद तो लग जाएंगे।
1: करो ना अपने महबूब की किस तरीके से।
0: हाँ, क्या बात है, महबूब की तारीफ, वाह।
1: पता है मुझे, पहले कुछ था पर अब अहमक हूँ मैं,
0: वाह।
1: पर तू नहीं, तुम मेरे लिए क्या हो सुनना चाहती हो? तुम मेरे लिए क्या हो सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम खूबरू हो, खुश अंदाम हो तुम। तुम खूबरू हो, खुश अंदाम हो तुम, सिफाते हुस्न से बहरावार हो तुम।
0: क्या बात है, वेरी नाइस है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। गाइस, ऐसी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन अभी इसके साथ करनी है, आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड रहिए आरजे आनंद के साथ। एक से गाना, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं मोहम्मद अजीम के साथ। अजीम, वेलकम बैक है वंस अगेन FM मुरादाबाद के स्टूडियो में मेरे भाई। अब बताओ, अब क्या सुना रहे हो? अभी तो तुमने तारीफ कर दी, बहुत मजा आया तुम्हारी तारीफ सुन के, मुझे भी और मेरे लिसनर्स को भी, आई एम श्योर उनको भी अच्छा ही लगा होगा। तो अब जरा कुछ बेहतरीन सुना दो यार।
1: हाँ, क्यों नहीं, उसके बाद आप एक पोएट्री अपनी महफिल में उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी महफिल में उसके अफसाने बयां करना चाहते हैं, तो उसपे लिखी थी, मुसलसल चलता रहेगा ये कादिम सफर।
0: वाह।
1: मुसलसल चलता रहेगा ये कादिम सफर, मुख्तलिफ रहेंगे हम तुमसे, मुख्तलिफ रहेंगे हम तुमसे, और एतबार करना, और एतबार करना, हमारी महफिल में तुम्हारे ही अफसाने बयां होंगे।
0: उर्दू इतनी गजब की है तुम्हारी, इतनी धाकड़ आपने बोला है, मतलब मजा आ गया, बेहतरीन। कोई हिंदी वाली भी सुना दे यार।
1: हाँ हाँ, बहुत हैं।
0: हाँ, तो कुछ बढ़िया से सुना दे। आज अजीम जो है अपनी डायरियों के पन्नों की आवाज आपको सुना रहे, तो छका छक पलट रहा है वो, और उसमें से कुछ बेहतरीन ताजा ताजा फ्रेश कॉन्टेंट आपको दे रहा है। हाँ अजीम,
1: एक शायरी है, अब मोहब्बत से कह रहे हैं कि दगा उसने की थी, तो उस पर लिखी थी, दगा उसने की थी तभी हम शायर हैं।
0: वाह।
1: मोहब्बत सच्ची हमने की थी तभी हम शायर हैं।
0: याद करो,
1: दगा करते हम भी तुम्हारी तरह तो क्या कह पाते, तभी हम शायर हैं। मोहब्बत तुम भी करो किसी से और वो करे किसी और से, बैठो तुम भी किसी महफिल में हमारी तरह और सुनाओ अपनी शायरी और कहो, दगा उसने की थी तभी हम शायर हैं। मोहब्बत सच्ची हमने की थी तभी हम शायर हैं।
0: क्या बात है यार, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। अच्छा अजीम, एक बात बताओ, ये जो शेर व शायरी है ये कहाँ से निकलती है? कुछ लोग कहते हैं गजलों से शायरी बनी है, कुछ लोग कहते हैं टूटे दिल से शायरी बनी है, तुम्हारा क्या मानना है?
1: शायरी अपने आप आती है।
0: अच्छा, गजलों से भी मैंने सुना है कुछ। हाँ, निकलती है
1: ये, जितने भी जैसा आपने उन्हें सुना होगा, नुसरत फतेह अली खान को,
0: नुसरत साहब को, उनके गानों में
1: उनकी कुछ नहीं होता, मतलब जहां तक मुझे पता है, मैं माफी चाहता हूँ अगर कुछ बोल रहा हूँ गलत, तो वो भी एक पोएट से ही पोएट्री सारी लिखी जाती है, शायरी लिखी जाती है, वो भी उसे बस पढ़ते हैं।
0: ओके, बट उनका तरीका अलग होता है एक्सप्रेस करने का,
1: वो भी पोएट की ही कुछ लिखा हुआ होता है जो वो पढ़ते हैं।
0: ओके ओके, अच्छा एक बात बताओ, जो नज्म होती है उसमें और शेर व शायरी में कितना डिफरेंस होता है?
1: बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं है, कह सकते हैं थोड़ा बहुत ही।
0: ओके ओके ओके, तुम्हें कोई नज्म याद है?
1: नहीं फिलहाल तो मेरे को।
0: ओके ओके ओके, मतलब अभी तुम सिर्फ शायर व शायरी और पोएट्री में तुम ज्यादा रहते हो एक्टिव। कोई पोएट्री जो आपके दिल के बहुत करीब हो?
1: हाँ है, ये उस पे है, जैसे कि मैंने लिखी थी, मुस्लिम हूँ फिर भी लोग पूछते हैं नशा शराब का करते हो क्या। मुस्लिम हूँ फिर भी लोग पूछते हैं नशा शराब का करते हो क्या, न बीड़ी न सिगरेट न नशा शराब का है, न बीड़ी न सिगरेट न नशा शराब का है, मुझे नशा है तो बस उसकी आंख का है, मुझे है तो बस उसकी आंख का है, और वैसे भी उसकी आंखें किसी शराब से कम थोड़ी हैं। हमें शराबी कहो मगर शराब का नहीं, उसकी आंख का कहो ना।
0: क्या बात है, क्या बात है अजीम, वेरी वेरी वंडरफुल यार। ऐसी अजीम की शेर व शायरी आप तक पहुंचती रहेंगी, एक काम करेंगे, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद जल्दी से लौट कर आए। यार अजीम, बहुत अच्छी शेर व शायरी कर रहे हो, बहुत अच्छी पोएट्री कर रहे हो, लेकिन

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं फिर बुरा
1: शराब का करते हो क्या? ना बीड़ी ना सिगरेट ना
0: उस पे कुछ सुना दो तो। जैसे आपको पता है ना, आजकल लोग बड़ी धोखेबाजी करते हैं, है ना, दिल लगी बहुत करते हैं। जैसे कहते हैं हम लोग प्यार करते तो हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ एक टाइम पास था, है ना, अट्रैक्शन था। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? सामने वाले ने आपसे दिल से मोहब्बत कर ली है, लेकिन जब उसे पता चल रहा है कि नहीं, ये तो टाइम पास था, ये तो उसके साथ में एक शातिर वाला गेम हो गया है, है ना, एक शतरंज वाली चाल हो गई, तो उसपे आप क्या कहना चाहोगे?
1: है एक शायरी उस पे है कि जैसे आपको टाइपिंग करते भी होता है ना, चैट पे धोखा देता होता है एक तरीके से, उस पे मैंने शायरी लिखी थी। तू पूछ तो सही हुआ क्या, मैं बताता हूँ तुझे बेचैन हूँ मैं। तू पूछ तो सही हुआ क्या, मैं बताता हूँ तुझे बेचैन हूँ मैं। तू पूछ तो सही बेचैन क्यों हो, मैं बताता हूँ तुझे वजह तुम हो। तू पूछ तो सही मैं कैसे हूँ तुम्हारी बेचैनी की वजह, मैं बताता हूँ तुझे। तेरा बात ना करना खंजर से ज्यादा जख्म देता है मुझे, खंजर से ज्यादा जख्म देता है मुझे।
0: क्या बात है, वेरी नाइस है, बहुत ही बढ़िया। अजीम, तुम बहुत सारे ओपन माइक्स में जाते हो, बहुत सारे जो पोएट्री शोज होते हैं वहां जाते हो, तो कभी कोई ऐसा तुम्हारे साथ सीन हुआ है जो तुम्हारे दिल की बहुत अच्छी पोएट्री या शायरी रही और तुम वहां गए माइक पे तुम भूल गए हो, ऐसा हुआ है कभी?
1: नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, फर्स्ट टाइम एक बार हो चुका था।
0: हुआ था वैसे?
1: नोएडा शो में गया था।
0: अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ जाते हो वैसे वो ओपन माइक्स पे?
1: जहाँ जो बुला ले आप। अच्छा। खासकर ओपन माइक्स आपके पास आए हैं?
0: हाँ, नहीं मतलब तो आप मुरादाबाद में ओपन माइक्स में ढूंढते हो या आसपास के लोकेशंस में भी? बरेली वगैरह?
1: हाँ, जा सकता हूँ मैं।
0: अच्छा, मतलब जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ आदमी पहुंचे जाता है, मेन बात तो ये है। तो फैमिली वगैरह का क्या सपोर्ट रहता है? उनको पता है कि तुम्हारा ये अंदर से एक वाइब है, तुम्हें ये करना है, तुम्हारा पैशन है?
1: हाँ, पता है उन्हें। फर्स्ट शो में तो मैंने भाई से ही पैसे लिए थे जाने के खर्चे के लिए, बट इतना वो नहीं है कि उन्हें लगता है कि पैसा ही आए तभी ज्यादा बेटर है, क्योंकि तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। मुझे 3 साल से कर रहा हूँ मैं भी, बट मुझे बीएससी भी करनी थी साथ साथ, क्योंकि उसमें बैक आती, उस चीज से कर रहा हूँ, बस ये भी एक पैशन है, कर रहा हूँ।
0: वेरी नाइस। तो अच्छा, इसमें फ्यूचर बनाने का प्लान कर रहे हो आगे?
1: हाँ, सोच तो रहा हूँ कि इसमें निकल जाऊँ तो ज्यादा।
0: क्या स्कोप है वैसे यार?
1: हाँ,
0: क्या स्कोप है इसमें, फ्यूचर क्या रहता है
1: इसमें? एक तरीके से देखा जाए तो आदमी कामयाब मरने के बाद ही है, क्योंकि शायर की शायरी मरने के बाद ज्यादा फेमस होती है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। लेकिन ये चीज हम चाहेंगे कि तुम जो कामयाबी है ना वो ऐसी हासिल करो जैसे अखिल भैया ने एंट्री मार के करी है अभी, इसीलिए तो उनको हवा हवाई कहते हैं हम। वे आगे बढ़ेंगे, वो बीच में कभी भी आ जाते हैं, और जब जो बिन बुलाए नहीं आते हैं, जिनको रिस्पेक्ट के इज्जत के साथ बुलाए जाते हैं वो हवा हवाई होते हैं। और अभी आए हैं तो एक दो शायरी इनसे भी सुनेंगे, मगर इनको थोड़ा वक्त देंगे, अभी लैपटॉप निकालेंगे और अपने दिल के जज्बात उस पर सर्च करेंगे, फिर आपके सामने उनको पेश करेंगे। लेकिन हेलो भाई तो सुन लेते हैं। हाय अखिल भाई, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, कैसे हो आनंद?
0: बिल्कुल बढ़िया। आपने जो ये धक्का मार के गेट खोला है ना, इसकी बेइज्जती हुई आज, एक बार नोक नोक तो कर ही लेते यार।
2: आजकल ना बिना धक्का मारे कोई काम नहीं होते, ये सच्चाई है।
0: जो कपिल शर्मा बोलते हैं ना, 3 बार ताली ठोके, वही वाला मैंने इनके लिए कर दिया है। खैर अखिल भाई, ये अजीम जी हैं और ये अमरोहा से बिलोंग करते हैं, और इनके आसपास में कोई एरिया पड़ता है जहाँ से ये है पर्टिकुलर?
2: जोया।
0: हाँ, जोया के आसपास में ही है शायद, एक और उसके आगे भी कुछ है इनका एरिया, और ये बहुत अच्छा पोएट्री वगैरह करते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया लिखते हैं और बहुत अच्छा सुनाते भी हैं।
2: कब से आपको पोएट्री का शौक है?
1: ये तो मैं बहुत टाइम से लिख रहा हूँ,
0: मैं वही इससे पूछ रहा था
1: अभी। अभी हाँ, पर्टिकुलर टाइम से लिखना चालू, बहुत टाइम से लिखना चालू करता, पढ़ता था, चीजों को देखता था, अपने आप आती थी, बट लिखना जो स्टार्ट करा वो लाइब्रेरी जाने वक्त से लिख रहा, मतलब लगभग 3 साल हो गए लिखना तब से स्टार्ट करा, जब दोस्तों को सुनाई चीजें, उन्होंने अच्छा कहा कि हाँ सही लिख रहा है तू, जा, तो मुझे लगा कि जाना चाहिए, लिखना चाहिए, और तो मैंने और अच्छी चीजें लिखी, टाइम दिया इसे भी थोड़ा, तो मुझे पसंद आया।
0: अच्छा, आप अखिल भाई के सामने क्या सुनाना चाहोगे, कोई बढ़िया सी अपने दिल की, जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो, कोई शायरी या पोएट्री?
1: हाँ है ना, किसी की तस्वीर होती है ना कि उसकी तस्वीर, तो उस पे शायरी लिखी थी, कुछ बीते लम्हे कुछ बीते बातें याद करता हूँ, कुछ बीते लम्हे कुछ बीती बातें याद करता हूँ, तुमने तो कर ली किसी और से शादी, तुमने तो कर ली किसी और से शादी, पर मैं आज भी तेरी तस्वीर तकता हूँ और घुट घुट के मरता हूँ, और हाँ कहने को तो तेरी तस्वीर फोन में है, और हाँ कहने को तो तेरी तस्वीर फोन में है, मैं उसे आज भी अपने दिल में रखता हूँ।
0: वेरी नाइस है अखिल भाई, क्या कहना चाहोगे आप ये बताइए?
2: मैं अपने पर्स में एक तस्वीर ढूंढ रहा था।
0: हाँ, वो तस्वीर मेरे पर्स में गलती से आ गई, मैं आपको बाद में वापस कर दूंगा, आप चिंता ना करें। तो अभी अखिल भाई आप भी कुछ सुनाओगे ऐसी अच्छी सी चटपटी शायरी?
2: क्या क्या चाहते हो आप, मेरे से कुछ सुनना चाहते हो?
0: हाँ हाँ, बस ऐसा सुनना चाहते हैं जिसमें थोड़ी सी हंसी आ जाए आपसे, मुझे यही एक्सपेक्ट है। मतलब अच्छी बात है, एक माहौल बना हुआ है, मतलब पूरा शायराना माहौल बन रहा है और अजीम बहुत अच्छी अच्छी शेर व शायरी करता है, इतना बढ़िया लिखता है, इसकी राइटिंग देखो, मुझे लगता है इसे तो बॉलीवुड में चले जाना चाहिए। हमारे गौरव से नहीं बोला अभी इसको ये बात।
2: नहीं नहीं, बॉलीवुड में जाएंगे, जरूर जाएंगे, और मुरादाबाद का नाम भी जो है हमारा एक बार फिर से बॉलीवुड में फिर चमकेगा। और कमाल की बात ये है कि आप जहाँ से, ये अमरोहा से हैं, तो कमल अमरोही,
0: अरे वाह हाँ, क्या बात है।
2: तो उनके, उन्होंने वहाँ पे एक स्टूडियो बनाया था, तो बहुत ही, आज भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एकदम आपको पता चल जाएगा।
0: तो ऐसे बहुत सारे जाने माने नाम हैं जो अब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और हम मुरादाबाद की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो बात अलग है। और हमें ये इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, क्योंकि मुझे लगी अपने शहर में भी बहुत कुछ किया जा सकता है।
2: क्यों
0: नहीं,
2: क्यों नहीं,
0: क्यों नहीं ऐसा हो कि मुंबई की सेलिब्रिटीज को मुरादाबाद में इंटरव्यू क्यों बुलाया जाए।
2: क्यों नहीं, आपने तो बुलाया भी है, आपने तो इंस्टाग्राम पे करा भी है,
0: ये पॉसिबल हो सकता है अगर आपके इरादे मजबूत हो तो। क्यों,
2: बिल्कुल सही।
0: खैर, हमारा जो सेशन है वो इरादों और पॉजिटिविटी से भरा नहीं, आज दिल की शेर व शायरी से भरा हुआ है, तो कुछ कहना चाहोगे?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी मैंने आपकी कन्वर्सेशन सुनी तो उसमें आप कह रहे थे कुछ फनी सा हो जाए, तो उस पे सुना दूं?
0: अरे बिल्कुल यार, बस इतना फनी हो कि हम लोगों को हंसी आए, बाहर वालों को ना आए। खैर,
1: उस पे तो रखा था मैंने भी फूल अपनी किताब में तुम्हारे नाम का, पहना था लोकेट अपने गले में तुम्हारे नाम का, रखा था फूल मैंने भी अपनी किताब में तुम्हारे नाम का, पहना था लोकेट अपने गले में तुम्हारे नाम का, तुम एक बार हाँ तो करो, तुम एक बार हाँ तो करो, अपनी महफिल में पौवा बंटवा दूंगा मैं तुम्हारे नाम का।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मैं फिलहाल पानी बंटवाना चाहता हूँ, गर्मियां बहुत ज्यादा हैं, तो आप पानी की तरफ ज्यादा ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं और एक गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस हैं। वेलकम बैक, वंस अगेन अखिल जी हैं साथ में, मोहम्मद अजीम हमारे साथ ढेर सारी बातें कर रहे हैं, और मैं हूँ आपके साथ आरजे आनंद। पिछली बार जब

दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
6: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद।
7: एक स्टूडियो बनाया था तो बहुत ही, आज भी
8: आप सबसे नायाब बताना चाहते हैं ना?
6: हाँ बिल्कुल।
8: क्या आपकी मोहब्बत सबसे नायाब है, उस पे लिखी थी मैंने। किसी ने पूछा वही क्यों हमारे दिल से बस एक बात निकली। किसी ने पूछा वही क्यों हमारे दिल से बस एक बात निकली। किसी की जिंदगी तो किसी का ख्वाब है वो। किसी की जिंदगी तो किसी का ख्वाब है वो। यूं तो लाख हंसी है जहां में यारो, यूं तो लाख हंसी है जहां में यारो, पर वो सबसे हसी और सबसे नायाब है वो, सबसे नायाब है वो।
6: क्या बात है। बाकी जी ने अपना जो है पिटारा तैयार कर लिया है कुछ सुनाने का, तो इनके पिटारे को ध्यान में रखते हुए माइक में इनकी और जो है लगाना चाहूंगा।
7: मैं अपने सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा,
6: श्रोता मेरे भी हैं,
7: कि जो भी मेरी आवाज निकल रही है दिल से, जो भी शायरी निकल रही है वो सब आनंद की दिल की भी है, जो आनंद अपने से कहना चाह रहा था कह नहीं पा रहा।
6: कि मैंने लिख के इनको फॉरवर्ड कर दिया कि भैया ये मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए, जूते पड़ेंगे तो सर आपका होगा मेरा नहीं। मेन बात ये है,
7: आनंद जी भी जो है हर सीजन वेट करते हैं कि कब मेरा सीजन जो है होगा पूरा।
6: मतलब कहना क्या चाहते हो, सीजन का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, इट्स नॉट कपिल शर्मा शो, वो सीजन 5 सीजन 2 नहीं चल रहा है ये। हाँ फिलहाल यहाँ पर शेरों
7: तुम्हारी मुस्कान का असर कुछ ऐसा होता है,
6: वाह,
7: दिल का हर कोना रोशन सा होता है,
6: गजब।
7: यूं तो जी लेते हैं हम हर दिन अकेले, यूं तो जी लेते हैं हम हर दिन अकेले, पर तुम्हारा साथ जिंदगी से भी प्यारा होता है।
6: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये
7: इंस्टेंट शायरी कहते हैं ना इसे, इंस्टेंट शायरी
6: ये होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर। ऐसे सेंस ऑफ ह्यूमर में 5 किलो आलू ना बांट दूं फ्री में गली के मोहल्ले में।
7: 5 किलो तुम 5 गिलास नहीं पिला पा रहे हो पानी लोगों को।
6: क्या बात कर रहे हो, मैं 5 बॉटल पानी पिला चुका हूँ। 5 गेस्ट आए थे सुबह से मेरे ऑफिस में, कोई था नहीं आज।
7: बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो गर्मी में आनंद, बहुत अच्छा,
6: थैंक यू सो मच। बस आपको नहीं पिलाया, अभी थोड़ी देर बाद आपको भी सर्विस देंगे पानी की, आप चिंता ना करें। वेल आगे बढ़ते हैं गाइस, ये बहुत अच्छी बात है, पानी लाते रहिए और पानी पीते रहिए। क्यों अखिल भैया, अब ये माइक जो है उस लड़की की तरफ भी करते हैं जो एक बड़ी देर से हमारी तरफ बैठी है और हम लोगों को घूर रही है। हमारे बीच में प्राची भी है, आज की जो शाम है महफिलों से सजी हुई है। प्राची क्या करते हो तुम, अपने बारे बताओ।
9: मैं पोइट्री करती हूँ कभी कभी, और मैं एक पोइट्री है, एक शायरी है जो मैं आपको सुनाऊंगी। लगता है मुझे कि नहीं बस जिंदगी पे हमारा, लगता है मुझे कि नहीं बस जिंदगी पे हमारा, इसमें दस्तकें तो खुदा की भी होती हैं, इसमें दस्तकें तो खुदा की भी होती हैं, ऐसा कहता है अनुभव हमारा। वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, पर फिर भी से सवाल हमारा, क्यों किसी की एक ही खूबी काफी है दिल में समा जाने के लिए, क्यों किसी की एक ही खूबी काफी है दिल में समा जाने के लिए, और किसी की हजार खूबी भी दिखे वो फिर भी नहीं हमारा।
6: क्या बात है, वेरी नाइस प्राची, मजा आ गया तुम्हारी शायरी सुन के। और तुमने इसमें एक बात बोली थी, वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, वैसे तो नहीं
9: से सवाल हमारा,
6: क्या बात है। और
9: मतलब वी माइट बी रॉन्ग,
6: हाँ,
9: पर स्टिल मतलब एक हम कह रहे हैं कि हो सकता है हम गलत हो, पर अभी तक जितने एक्सपीरियंस है बेस्ड ऑन दैट कि खुद से एक सवाल हमारा, क्यों किसी की एक ही खूबी काफी है दिल में समा जाने के लिए, और किसी की हजार खूबी भी दिखी वो फिर भी नहीं हमारा।
6: नहीं, वो क्या लाइन बोली थी, दुनिया देखी हमारी, स्टार्टिंग में कुछ बोला था
9: नहीं
6: ना?
9: एक बार मैं दोबारा से कहना चाहूंगी। हाँ,
6: हाँ।
9: लगता है मुझे कि नहीं बस जिंदगी पे हमारा, इसमें दस्तकें तो खुदा की भी होती हैं, इसमें दस्तकें तो खुदा की भी होती हैं, ऐसा कहता है अनुभव हमारा। वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, पर फिर भी खुद से एक सवाल हमारा, क्यों किसी की एक ही खूबी काफी है दिल में समा जाने के लिए, और किसी की हजार खूबी भी दिखे वो फिर भी नहीं हमारा।
6: क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। और राजमा चावल है हम सभी का प्यारा, बहुत ही बढ़िया। खैर इसे भी बहुत अच्छा बोला
7: आपने, पूरी शायरी को गुड़ गुमर कर डाला।
6: ये नहीं था यार, मेरा फेवरेट है तो मैंने बोल दिया, लेकिन प्राची टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा बोला। और ये जो इन्होंने बीच में शब्दों का इस्तेमाल किया गुड़ और साथ में जो मिक्स किया है वो पता नहीं इनको क्यों पसंद आया, आई डोंट नो। खैर आगे बढ़ते हैं। असीम भाई तुम्हें कैसा लगा इस माहौल में आके, मजा आया? अब यार जाने का समय हो गया है और कुछ खाने पीने का भी समय हो रहा है गाइज, क्योंकि रात हो रही है तो डिनर भी करना है समय से। अखिल भाई तो बैठे रहेंगे आपके साथ, अभी आपकी फरमाइशी गाने भी बजाएंगे।
7: नहीं नहीं, मेरा आनंद तुम्हारे दिल से एक और आवाज निकलने वाली है।
6: हाँ हाँ प्लीज, मैं अपने दिल को थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, आप अपने दिल के बटन ऑन कीजिए, बोलिए सर।
7: इश्क वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए,
6: वाह जी वाह।
7: इश्क वो है जो दिल से निभाया जाए,
6: वेरी नाइस।
7: अपना कहने को तो बहुत मिल जाते हैं,
6: हाँ।
7: अपना कहने को तो बहुत मिल जाते हैं, पर अपना वो है जो हर हाल में साथ निभाए।
6: क्या बात है, हम साथ निभाना साथियां निभाएंगे सर, टेंशन मत लो। आज रात को 9 बजे मैं टीवी पे देखूंगा हम साथ निभाए। हम साथ साथ है, देखिए आपने?
7: हाँ देखिए।
6: हाँ तो बस वही है, हम साथ ही है यार।
7: तो एक आनंद एक बात भी पूछना चाह रहा था मैं ये पूछना चाह रहा था कि असल में एक शायर को कब लगता है कि वो शायर बन गया?
6: इससे जोक से बात, अखिल भाई आपने जो बोला ना एक शायर को कब लगता है
7: शायर, हाँ।
6: एक शायर बन गया है, मुझे
7: तो ये बात हम पूछना चाहेंगे
6: अजीम से,
7: अजीम साहब से पूछेंगे कि
6: वैसे आपको आपको क्या लगता है? मैं ये आपका जो सवाल है वो आपके ऊपर ही मैं रिपीट मारता हूँ, आप बताओ मुझे।
7: मेरे हिसाब से पहले अजीम साहब से बात करते हैं, फिर मैं भी अपना विचार रखूंगा, अपना विचार रख दूंगा तो फिर
6: आइडिया मिल जाएगा ना मोहम्मद अजीम जब बोले। अजीम क्या लगता है भाई?
8: मुझे लगता है वो जब लिखना चालू कर दे, अपनी कलम उठा ले
6: और जो दिल से उसकी फीलिंग्स आए।

0: है कि जब हम किसी से, मुझे तो अपने साथ ऐसे ही लगा था, पता नहीं मैं शायर हूँ या नहीं,
1: नहीं तू नहीं है, बोलती रह आगे
0: ठीक है, जब हम मतलब जो भी हमने ऑब्जर्व किया है उसको हम दे, उसको हम फ्रेम कर पा रहे हैं, मतलब जो भी हमने देखा है हाँ उसको फ्रेम कर पा रहे हैं,
2: समझा पा रहे हैं,
0: उसको मतलब लिख पा रहे हैं, तो तब हमें लग जाता है कि हाँ कुछ हमने अच्छा लिखा है।
1: क्या बात है, मैं भी ऐसे लिखना शुरू करूंगा, शायद सबको लग जाए मैं अच्छा आरजी हूँ। माइक भैया की तरफ करो, आप जरा भैया से पूछते हैं। हाँ जी भैया, आपका सवाल मुबारक हो आपको, आप बताओ आप।
3: मेरा जो थॉट है वो यही है कि जब आपके जो जहन में चल रहा है, जो आपके
1: जी
3: जो सपनों में चल रहा है, एक्चुअली क्या है शायरी में वो चीज़ें जो आप ना रियलाइज करते हैं, मतलब आपके पास होती नहीं है मगर आप उसे एक इमेजिन करते हैं।
1: Absolutely,
3: तो जब वो इमेजिनेशन आपके साथ आपकी कलम पे उतरना चालू हो जाए और वो उस तरीके से उतरे कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ ये तो मैंने भी इमेजिनेशन किया था, या ये ऐसा कुछ है
1: Got it.
3: कि इन्होंने हाँ जो मेरे साथ भी हुआ है, या फिर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आप सिर्फ सोच सकते हैं, ठीक है ख्यालों में आती है आपकी, मगर वो चीज़ें आपको भी पता है वो पूरी नहीं होती है। तो जब आपके हाथ में कलम है और आपने उन ख्यालों को अपने साथ उसमें लिखा है और जब दूसरों को, दूसरों तक वो बात पहुँचाई है, तब जाके लगता है कि कहीं ना कहीं शायर ये बंदा
2: शायर है,
1: शायर है, इसीलिए तो कहते हैं बच्चा है तू मेरा, समझ रहा हूँ मैं वो डायलॉग मेरे को अखिल भाई ने दिया था। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अखिल भाई, बहुत अच्छी बात है और मुझे इस बात से यकीन हो गया कि शादी के बाद हर कोई शायर बन जाता है मैं इस बात को मान सकता हूँ। अजीम एक घर का, एक घर वाला शायर जो होता है, जैसे अखिल भाई एक घर के अच्छे शायर हैं, वो कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं हमेशा जब हमारे स्टेशन में आते हैं। तो आप बताओ, आपने तो मतलब एक्सप्लेन कर दिया है, अब जाने का समय भी हो रहा है, तो जाते जाते अब आप क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, हमारे दोस्तों को, कोई अच्छी अपनी शायरी के माध्यम से कोई थॉट, कोई बात एक्सप्लेन करना चाह रहे हो आप?
4: मेरे पास फिलहाल तो कोई ऐसी शायरी है नहीं, बट
1: अपने दिल की फीलिंग्स कुछ अगर एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, कोई थॉट कहना चाह रहे हो?
4: बहरहाल मुझे सच बस बताऊं तो मुझे अच्छा बहुत लगा यहाँ,
1: अच्छा मजा आया,
4: आनंद भाई से मिला, टीम से मिला, बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं चाहूंगा कि मेरी शायरी आप लोगों को इतनी पसंद आए कि आप मुझे बार बार बुलाएं, रिक्वेस्ट करें आनंद भाई के कमेंट बॉक्स में बार बार मुझे बुलाएं।
2: इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहाँ पे आप मिल सकते हैं आसानी से?
1: ये इंस्टाग्राम पे इसका अकाउंट है, मैं इनका एक अच्छा सा फोटो शेयर करता हूँ, बढ़िया सा अच्छे से करली वालों वाला तो इनको लोग तुरंत लाइक करेंगे और फॉलो भी करेंगे। वेल अब लेंगे आपसे जाने की इजाज़त, जाते जाते बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी कोई अच्छा टैलेंट है तो उसे आप FM मुरादाबाद पे डेफिनेटली लेकर आ सकते हैं और हम आपका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। और आप ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, गाइस बजाते रहिए
2: और गुनगुनाते
1: रहिए। बाय बाय।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: तरह प्रतिबद्ध पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1,000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2,500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोजितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
3: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
2: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
4: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 235,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उच्च कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार केरल माहे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जम्मू कश्मीर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: चावला टायर्स
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
2: 22 सुनिश्चित उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
0: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
2: अपोजिट
0: मधुबनी पार्क मुरादाबाद कॉल 9412211111
2: TNC अप्लाई।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: दिला दे घर बना दे घर दिला दे घर।
5: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

नमस्कार दोस्तों, दिलादू घर चंडीगढ़ में। साहब चंडीगढ़ से ज़्यादा महंगे तो घर मुरादाबाद में हो रहे हैं। अगर घर दिलाना है तो मुरादाबाद में ही दिला दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल के साथ। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनका नाम तक हमें याद नहीं रहता, लेकिन उनकी एक बात, एक मदद या एक मुस्कान पूरी ज़िंदगी भर याद रहती है। हाँ जी, तो कभी ना कभी किसी ना किसी ने को तो आपने लिफ्ट दी होगी। अगर गाड़ी में बैठे हैं और अगर आपके पास बगल में आपका आपने किसी को लिफ्ट दे रखी है तो कहीं ना कहीं तो अंदर असमंजस में रहता होगा, यार मैंने ये काम करके सही किया या नहीं किया। तो और होता भी ऐसा ही है, जब हम कभी किसी को लिफ्ट दे देते हैं तो थोड़ा सा तो कन्फ्यूज़न मोड में रहते हैं, और अगर हमें कहीं जाना होता है और हमें भी कभी किसी से लिफ्ट मांगनी पड़ती है तो थोड़ा सा हमें भी अंदर से हिचकिचाते हैं, यार लिफ्ट तो मांग रहा हूँ मैं किसी से, अब पता नहीं कहीं रास्ता जा रहा मुझे कहीं और कहीं लेके ना चला जाए कहीं और। तो कभी बस में मिला कोई मुसाफिर और कभी स्टेशन पर रास्ता बनाने वाला कोई अनजान इंसान, या कभी मुश्किल वक्त में हौसला देने वाला कोई अजनबी, तो यही होते हैं वही अजनबी जब हमें कभी लिफ्ट दे देते हैं या हम उनसे कभी लिफ्ट ले लेते हैं किसी अजनबी से, तो वो भी एक अलग ही कहानी बन जाती है। कुछ लोग तो नाम छोड़ते नहीं, कुछ लोग नाम नहीं छोड़ते पर यादें छोड़ जाते हैं। ये उन सभी के लिए है जिनसे कभी हमने जाने अनजाने में लिफ्ट ली है, तो उन्हीं लोगों के लिए कुछ लिखा है। कुछ लोग नाम नहीं छोड़ते पर यादें छोड़ जाते हैं, मिलते हैं बस कुछ पल के लिए और पूरी ज़िंदगी सिखा जाते हैं। तो चलिए साहब, तब तक याद करिए कि आपने कहाँ किसी से लिफ्ट लिया, और हाँ अगर ली है कोई ऐसा प्यारा सा मैसेज हमें भी मैसेज करिए, हमें भी बताइए वो कहानी कि आपने कैसे कभी किसी की मदद की या कभी किसी से इस तरीके से मदद ली। 9837896896 पर। और तब तक हम चलते हैं प्यारा सा एक गाना सुनते हैं, बहुत ही बढ़िया सा गाना।

आपकी कशिश, और इस मूवी का नाम था आशिक बनाया आपने। मतलब जब हिमेश रेशमिया जी उस समय अपने गाने के इस समय में पीक पे थे और ऐसे फेमस हुए हैं कि कुछ पूछे मत, उनकी वो कैप वाला अंदाज, कैप पहन के जो गाना गाने का अंदाज है, वो शायद अभी सभी को याद होगा कि कैसे उनके सारे गाने एक से एक हिट हुए हैं। और बहुत ही बढ़िया गाना, मतलब ये गाना भी उन गानों में से कहता हूँ, ऐसा है कि अगर आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को उससे कोरिलेट कर लेंगे। तो आप लोग हमें अपनी फरमाइश, हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश भी बता सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, जिस प्रकार मैंने कहा ना, कोई भी ऐसी याद, कोई भी एक शायरी जो आप गुनगुनाना चाहें, हमें बताना चाहें, तो हमें ज़रूर कॉल करें 9837896896 पर। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ अपने ही हमारे काम आते हैं, लेकिन सच ये है कि कई बार अजनबी लोग वो कर जाते हैं जो अपने भी नहीं कर पाते। अभी हमारे पास अदिति जी का एक हमारी लिसनर है, मुरादाबाद से ही मैसेज आया कि कहती हैं मैं अक्सर ट्रैवल करती हूँ मुरादाबाद से दिल्ली अपने ऑफिस की वजह।

काम के सिलसिले में, और जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो वो एक ऐप का नाम उन्होंने बताया कि मैं उस ऐप के थ्रू अपने साथ ऐड करती हूँ पैसेंजर्स को, और वो मेरे साथ दिल्ली तक जो जाना चाहते हैं अनजान वो लोग उसमें जाते हैं। और पहली बार वो बहुत हिचकिचाई और उन्हें हल्का सा डर भी लगा, तो वो पूरे टाइम बीच बीच में कॉल करती रहीं पापा को अपने, और बताती रहीं कि मैं यहाँ यहाँ पहुँच गई हूँ। और उनके साथ जो अनजान लोग बैठे थे वो लोग भी ये समझ रहे थे कि हाँ कहीं ना कहीं ये इनका फर्स्ट टाइम है, मगर वो कैसे भी करके पहली बार दिल्ली पहुँची। और लिखती हैं कि पहली बार में मुझे बहुत अजीब सा लगा कि अजनबी लोगों के साथ सफ़र करके, मगर मैं धीरे धीरे अपने साथ कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर, और अब मैं कभी कभी फ्रिक्वेंटली जब भी आती हूँ मुझे लगता है कि मैं अकेली बोर होती हूँ तो मैं इस ऐप का इस्तेमाल कर लेती हूँ और अनजान लोगों के साथ जो होते हैं वो जुड़ जाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा अदिति जी से कि आपने बहुत ही अच्छा मैसेज किया, और एक कहते हैं कि आपके अंदर की भी बात बताइए कि हाँ आप कैसे जो हैं अनजान शख्स के साथ कैसे आप इसके थ्रू जाती हैं और कितनी हिम्मत के साथ आप ये सब करती हैं, और कहीं ना कहीं वो एक मैसेज, कहीं ना कहीं वो अनजान फिर वो अनजान नहीं रहता, कहीं ना कहीं किस तरीके से बात होती है और कुछ जान पहचान हो ही जाती है। इसी बात पे एक मैं शायरी बोलना चाहूँगा कि रिश्ते खून से ही बने हैं, ज़रूरी तो नहीं, कुछ लोग दिल से जुड़ जाते हैं बिना किसी पहचान के। तो सुनिए हैं, तब तक जुड़िए हमसे और हमें मैसेज करें या कॉल करें 9837896896 पे। तब तक ये गाना सुनते हैं अरिजीत सिंह का, बहुत ही बढ़िया गाना, जैसे ही आप सुनेंगे तो कहेंगे क्या बात है भाई।

0: तो ये सुन रहे थे आप ए दिल है मुश्किल से गाना, और बहुत ही बढ़िया ट्रैक। मतलब कहते हैं कि फिर से, मैंने आपको बताया ना, अरिजीत सिंह का इतना बढ़िया गाना था। अरिजीत सिंह और प्रीतम का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। और इस गाने को भी सुन के कुछ ना कुछ पुराने यादें आ जाती हैं। हमारे पास मैसेजेस आए हैं और कॉलर भी हमसे जुड़ रहे हैं। अभी हमारे पास मैसेज आया हुआ है रणवीर सिंह जी का। रणवीर सिंह जी कहते हैं, लंबी है मंजिल, पास है किनारा, क्यों नहीं लगता अब फ़ोन हमारा, भूल गए हैं या कर दिया है हमारा नंबर ब्लॉक, या मिल गया है आपको कोई नया दोस्त। अरे नहीं, क्या कहते हैं रणवीर जी, आप नाराज़ ना हो, और हम आपसे भी जुड़ते हैं, आपका जब भी कॉल आता है हम ज़रूर उसे रिसीव करते हैं, कोई नंबर नहीं ब्लॉक है। चलिए हम नए लिसनर से अपने अभी बात करते हैं जो हमसे अभी जुड़ी हैं। हेलो, दिल से दिल तक। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ नंबर नंबर मिला के भूल जाते हैं आप। कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप? अपना नाम बताइए। यशमित, क्या करते हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं आप? 4th क्लास में। और क्या, कौन सा गेम आपको पसंद है खेलने में? स्केटिंग। स्केटिंग करनी पसंद है आपको? और क्रिकेट भी खेलते हैं आप? आपका फेवरेट प्लेयर का नाम क्या है बताइए। विराट कोहली। विराट कोहली, अच्छा ये बताइए कौन सी टीम से खेलता है? ये तो है, वेरी गुड, आपने बहुत बढ़िया सही जवाब दिया। आईपीएल में कौन सी टीम से खेलता है?
1: आरसीबी।
0: आरसीबी। क्या बात है, आपकी फेवरेट आईपीएल की टीम कौन सी है?
1: आरसीबी।
0: हाँ, जब आपका विराट कोहली फैन है तो फिर तो आरसीबी होगी। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? कुछ बोलना चाहे, जो मेरी मर्जी का हो। चलिए वो तो मैं प्ले कर दूंगा, जो मेरी मर्जी का है गाना। आपके साथ आपके कितने भाई बहन हैं? उनके नाम बताइए। क्या बात, सबसे छोटा कौन है इसमें? सबसे छोटा अभियांश है। चलिए मैं अपनी पसंद का गाना प्ले करता हूँ और डेडिकेट करता हूँ सभी को। आप सभी को खूब मस्ती करें और खूब मन लगा के भी पढ़ाई करें, ठीक है? ओके, बाय बाय। तो ये जुड़े थे हमारे साथ यशमित, MDA कॉलोनी से, और बताते हैं कि स्केटिंग मुझे बहुत पसंद है, विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है, क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद है, RCB इनकी फेवरेट टीम है। तो चलिए यशमित और उनकी पूरी टीम के लिए एक गाना बढ़िया सा प्ले करते हैं, और इसी तरह आप अपने मैसेजेस और हमें कॉल करते रहें 9837896896 पर।
2: आदत की बात है, तुम्हारी भी छूट जाएगी, मेरी भी छूट जाएगी।

0: चले आना चले आना, इसी तरीके से आप लोग भी चले आना, कॉल के थ्रू ही चले आना, मगर चले आना। हमारे साथ हमारे एक लिसनर जुड़े हैं अभी, कार्तिक जी, और उनसे भी बात करते हैं कि क्या दिल से कौन सी बात हमारे साथ लेके आएंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे। हेलो कार्तिक जी, कैसे हैं?
1: हेलो
0: हेलो,
1: हाँ
0: दिल से दिल तक आपका स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप कार्तिक जी, क्या करते हैं?
1: बढ़िया है बस सर, अभी नहा के आया था, आपका रेडियो सुनना था।
0: सही है साहब, गर्मी में जितना नहा लीजिए उतना कम है।
1: नहीं वैसे हमारे पूजा हो रही है ना, इसलिए नहाना पड़ता है बार बार।
0: चलिए चलिए, ये भी अच्छी बात है। और कार्तिक जी क्या करते हैं आप?
1: मैं स्टडी करता हूँ।
0: अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं? 11th क्लास में हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन सी स्ट्रीम से हैं?
1: पार्कर इंटर कॉलेज।
0: पार्कर इंटर कॉलेज से?
1: हाँ।
0: चलिए बहुत बढ़िया। और अभी आज हम बात कर रहे थे कि जैसे कभी किसी को लिफ्ट देते हैं तो कैसा लगता है, और कभी किसी से लिफ्ट भी मांगनी पड़ती है ना, जैसे कभी कभी जानी पड़ती है।
1: मैंने सर, मैंने लिफ्ट दी तो दी, ली है मगर।
0: आपने लिफ्ट ली है? कहाँ से कहाँ तक की लिफ्ट ली है आपने?
1: एक बार मैं मेरे दोस्त स्कूल से बंक मार के आ रहे थे।
0: तो सबको पता चल गया भाई साहब, आप स्कूल से बंक भी मारते हो।
1: तो पता तो सबको चल ही गया था सर जी।
0: हाँ फिर
1: तो हम बुद्ध बाजार घूम रहे थे, फिर घूम घाम के थक गए। जब छुट्टी हुई ना, छुट्टी हमारी होती है 1:30 बजे, और घर आए 3:30 बजे, वो भी लिफ्ट मांग के पुल से लेके अपने घर तक लिफ्ट मांगी थी।
0: तो ये लिफ्ट ज्यादा लंबी नहीं हो गई? 11:30 बजे से निकले हुए 3:30 बजे तक पहुंचे।
1: एक ऐसा था, एक ऑटो वाले अंकल थे।
0: अच्छा।
1: उन्होंने हमें 3-4 बार देख लिया पैदल चलते हुए।
0: हाँ।
1: तो उनके दिल में क्या आई, उन्होंने खुद कहा, कह रहा बेटा आओ मैं छोड़ता हूँ, लेकिन ठीक है, वो दूसरे के पढ़ के आ रहे हैं।
0: उन्हें भी अपने अपने स्कूल के दिन याद आ गए होंगे कि मैं कभी जाता हूँ पैदल, मुझसे कोई नहीं पूछता।
1: तो फिर उन्होंने पूछा कि बेटा तुम इतनी देर से पैदल क्यों चल रहे हो? फिर हमने बताया अंकल जी गुल्ला मारा था।
0: तो क्या रिएक्शन थे उनके अंकल के? बोले बहुत खूब।
1: रिएक्शन तो कुछ रिएक्शन तो कुछ नहीं।
0: अच्छा, रिएक्शन कुछ नहीं थे। सही है सही है सही है, बहुत बढ़िया कार्तिक भाई, आपने बहुत अच्छी लिफ्ट मांगी। और एक अच्छा था कि किसी तरीके से ये भी पता चला कि देखिए अगर कोई आप कहीं घूम रहे होते हैं और आपको कोई नोटिस भी करता है तो खुद अपने पास से आया कि चलो कहीं ना कहीं लगता है कोई परेशानी में होंगे बच्चे, उन्हें आज लिफ्ट। मगर उन्हें असली बात नहीं पता थी कि ये तो बच्चे बंक मार के घूम रहे हैं।
1: तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, ज्यादा कह रहे यही उम्र है बस, जितने मजे लेने ले सकते हो।
0: ये बात तो सही कही उन्होंने, उम्र ऐसी होती है, उस समय का पड़ाव ऐसा है कि भैया जो मजे आप अभी ले सकते हैं वो ले ही सकते हैं। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे कार्तिक भाई?
1: मैं गाना सुनूंगा वो हाले दिल।
0: हाले दिल का ये गाना किसी को डेडिकेट है, किसी के दिल तक पहुंचने वाला है गाना?
1: ना ना,
0: अभी किताबों तक ही है।
1: हमें सुनना है।
0: चलिए ठीक है कार्तिक जी, सुनते हैं इस गाने को और करते हैं आपकी फरमाइश पूरी। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो कार्तिक जी ने तो मार दिया स्कूल में बंक। स्कूल में तो बंक वैसे सभी ने मारा है, जिसने नहीं मारा है उसने क्या स्कूल पढ़ा है फिर, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई ना कोई स्कूल में या कॉलेज टाइम में बंक तो मारता ही है। तो चलिए सुनते हैं कार्तिक जी की फरमाइश जो उनके दिल से निकली है, हाले दिल।

0: हाँ तो दोस्तों, कार्तिक जी की फरमाइश पे था ये गाना हाल ए दिल, मर्डर टू मूवी से, जिन्हें गाया है हर्षित सक्सेना जी ने, और बहुत ही बढ़िया गाना गाया है। ये भी कहते हैं ना कि ये भी उन गानों में से एक है, जब अगर प्ले हो जाए तो अपने कानों में आ जाए तो कहीं ना कहीं हम भी कहीं ना कहीं खो जाते हैं। हमारे साथ अभी एक लिसनर जुड़े हैं हमारे, और आज उनका कुछ स्पेशल दिन है, तो चलिए उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक। सर, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम रघु है सर।
0: रघु सर, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया सर। रघु सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुरादाबाद से।
1: हम बोल रहे हैं सर, मंडी चौक से, पर फैमिली के साथ कार ड्राइव करते आए हैं एमडीए।
0: अच्छा, एमडीए। आज कुछ स्पेशल है जो आप मंडी चौक से एमडीए पहुँचे?
1: आज हमारी शादी की सालगिरह है सर।
0: सर, बहुत बहुत बधाई हो पहले तो आपको।
1: थैंक यू।
0: कितने साल हो गए सर आपकी शादी को?
1: 12 साल हो गए सर।
0: सर, फिर से फिर बहुत बहुत बधाई हो सर, 12 बार की बधाई हो सर आपके पास। तो कुछ कहना, कोई का ऐसा किस्सा तो सुनाइए सर जो 12 साल पुराना किस्सा हो, या 12 साल के अंदर ऐसा कोई किस्सा जो आपके साथ हुआ हो और जो आप शेयर भी करना चाहते हो।
1: किस्सा साहब 12 साल में
0: सर, किस्से तो बहुत सारे हुए होंगे, बस एक आधी किस्सा बताना।
1: ऐसा
0: सर, कोई ना, ये मत बता देना डांट कितनी पड़ रही है आपको, तो बस ये बताना कि कोई ऐसा किस्सा, कोई केयरिंग का किस्सा, कोई कहीं कहीं भूल चूक वाला किस्सा। अच्छा, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, तो कुछ बोली दीजिए, कुछ अपने हमसफर के लिए कुछ बोली दीजिए, आज 2 लाइन बोल दीजिए।
1: आप गाना ये लगा सके तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।
0: कौन सा सर गाना? कौन? अच्छा, सोनियो।
1: हाँ यस सर।
0: ठीक है सर, हम आपकी बात ये पहुंचाते हैं, और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई।
1: थैंक यू सर,
0: और हमसे जुड़ने के लिए और भी शुभकामनाएं आपका, और ऐसी ही आपसे बातें होती रहें।
1: थैंक यू सर।
0: ठीक है सर।
1: अच्छा,
0: नमस्कार जी। तो रघु सर थे आज हमारे साथ जुड़े हुए, थोड़े से शर्मा रहे थे, 12 साल हो गए, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बात है जो सुन के या याद करके ज़रूर मुस्कुराते तो होंगे। आज गाड़ी में हैं तो सारी बातें याद आएंगी, तब तक ये गाना सुनते हैं आज उन्हीं के लिए।

0: क्या?
1: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है।
0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: I love you.
2: Yeah!

0: हाँ जी, तो आप फिर से वापसी है 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे मुरादाबाद एफएम पे। मैं हूँ आपका दोस्त अखिल, और अभी हम गाना सुन रहे थे इश्क हुआ कैसे हुआ। आमिर खान और जूही चावला इसमें फिल्माए गए हैं, उदित नारायण और विभा शर्मा जी का गाया हुआ गाना है ये। और हमारे साथ अभी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं। एक मैसेज आया है हमारे पास कामिल जी का। कामिल जी जो है हमें हमेशा मैसेज करते रहते हैं, और आज फिर उन्होंने एक नई शायरी हमारे को लिखी है। कितनी दिल नशी ये रात आई, आपकी ही मेरे लबों पे बात आई। हमने तो बहुत कोशिश की सोने की, लेकिन फिर मुझे आपकी याद आई। कामिल जी बहुत ही बढ़िया, आप मैं कहता हूँ कि बहुत ही उम्दा आप लिखते हैं और बहुत ही अच्छा लिखते हैं। हमारे साथ अभी एक नए लिसनर जुड़े हैं, चलिए उनसे कुछ बात करते हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल के संग। हेलो, कौन बोल रहा है?
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी, आपका नाम?
1: मेरा नाम नूपुर है।
0: नूपुर जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं कटघर से बात कर रही हूँ।
0: कटघर से, और क्या करते हैं आप?
1: मैं एक हाउसवाइफ हूँ।
0: आप एक हाउसवाइफ हैं, तो इसका मतलब आप बहुत सारे काम करती हैं। आज का हमारा एक टॉपिक था कि क्या कभी आपने किसी को लिफ्ट दी है या किसी से लिफ्ट ली है। तो कभी आपकी लाइफ में आज तक हुआ है ऐसा कि आपने कभी किसी को लिफ्ट दी हो?
1: हाँ, लाइफ में दी है, ली नहीं है कभी।
0: अच्छा, तो आपने किसको दी है लिफ्ट?
1: अभी मैं अपनी बिटिया के पीटीएम में जा रही थी।
0: हाँ,
1: तो थोड़ी ही दूर पे मुझे बाई चांस वहाँ की स्कूल में जॉब करने वाली एक, मतलब मैं नहीं कहूंगी, वर्ड सर्वेंट बोलते अजीब लगेगा मेरी, वो परेशान हो रही थी, उन्हें ऑटो नहीं मिल रहा था।
0: तो आपने खुद से ही पूछ लिया?
1: तो मैंने उन्हें लिफ्ट दे के, मैं भी स्कूल ही जा रही थी, मैंने कहा
0: चलिए
1: यू डू द ऑनर।
0: तो ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, कम से कम आपने आपको आपने उनको भी उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। इस समय कहाँ हैं आप, ऐसा शोर सा क्यों आ रहा है, कुछ ट्रैफिक में कहाँ, किस साइड हैं?
1: बस इस टाइम हम अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा घूमने निकले हैं, और कहीं पे हम पीली कोठी पे जंक यार्ड पे।
0: हाँ हाँ,
1: मोमोज वगैरह खाने आए हैं।
0: क्या बात है, जंक यार्ड के तो मेरे खुद के पनीर मोमोज बहुत ही फेमस है, मैं खुद वहाँ पे पनीर मोमोज खाता रहता हूँ। तो कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे आप अपने हस्बैंड को?
1: गाना आप चलाइए, किताब।
0: किताब
1: जी, किताब लिखूंगी। अच्छा, फीमेल वर्जन।
0: क्यों नहीं, मैं अभी करवाता हूँ, इसे आपकी फरमाइश पूरी करवाता हूँ। अच्छा, एक बात पूछनी थी, कभी आपने अपने हस्बैंड को भी लिफ्ट दी है?
1: जी बिल्कुल दी है।
0: क्यों, आज कटघर से लेके पीली कोटी तक आप ही ने गाड़ी चलाई है क्या?
1: नहीं नहीं, आज तो उन्होंने चलाई है।
0: अच्छा, आज उन्होंने चलाई।
1: जब उन्होंने मुझे सिखाई थी स्कूटी, तो फिर वो पीछे ही बैठते थे, मैं आगे।
0: चलिए, ये तो कभी हम आपके हस्बैंड से बात करेंगे कि अब उन्हें कैसा लगता है लिफ्ट लेके आपसे।
1: हाँ जी, थैंक यू।
0: ओके जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नूपुर जी, थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो ये थी नूपुर जी कटघर से, जो अपने लिफ्ट का उन्होंने हमें किस्सा बताया कि कैसे उन्होंने स्कूल जाते समय एक को लिफ्ट दी और उन्हें भी उसी स्कूल में जाना था, तो दोनों साथ साथ पहुँचे। और इस समय वो पीली कोटी पे अपने हस्बैंड के साथ, जंक यार्ड एक वहाँ पे है, आउटलेट है, फूड आउटलेट है, और उस पर मोमोज का आनंद ले रही हैं। और बहुत ही अच्छा मैं कहता हूँ कि वहाँ पे मैंने खुद एक दो बार मोमोज ट्राई किए, तो बहुत ही बढ़िया वहाँ के मोमोज भी हैं, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। तब तक अपनी कहानी और अपनी इस कोई भी ऐसा इंसिडेंट बताने के लिए ज़रूर हमें बताएं 9837896896 पे। तब तक ये सुनते हैं प्यारा सा गाना किताब।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
4: चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर
5: पाए सुनिश्चित उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त, ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
4: जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: TNC अप्लाई।
6: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
7: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
6: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
7: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
8: कॉल 7500153841।
9: तो दोस्तों, आज की मुलाकात होती है यही खत्म। याद रखिए, हर इंसान की कहानी अलग होती है, हर चेहरे के पीछे एक संघर्ष है, और हर अनजान व्यक्ति में एक दोस्त छुपा हो सकता है। जाने से पहले कुछ शहरी एक मैं साझा करना चाहूँगा। रास्तों में मिलने वालों को हल्के में मत लिया करो, रास्तों में मिलने वाले को हल्के में मत लिया करो, कौन कब ज़िंदगी का सबक बन जाए ये कोई नहीं जानता। मैं हूँ आपका दोस्त अखिल, और आप सुन रहे थे दिल से दिल तक अखिल के संग। अपनों का ख्याल रखिएगा और दिलों को जोड़ते रहिएगा। नमस्कार। तो चलने से पहले, जाने से पहले एक प्यारा सा गीत आपको डेडिकेट करता हूँ मैं, अपने पूरे मुरादाबाद के लोगों को। और जैसे भी है ना, अब तो कहते ना डिनर हो गया है, अब तो आराम से प्यारी प्यारी मीठी नींद का टाइम है, तो वो लेते हैं। कोई भी जो दिन की बात है, कोई भी कुछ ऐसा हो जो कोई हट करा हो, उसे भी बिल्कुल हटा देना अपने पास से। बिल्कुल प्यारी सी नींद लेनी है और एक चैन से खुशी के साथ कहते हैं ना प्यारे प्यारे सपनों में खो जाना। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं और आपसे लेते हैं अलविदा। धन्यवाद।

0: जज रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के चार टायर्स खरीदने पर
2: पाए सुनिश्चित उपहार 4200 तक का मूल्य बिल्कुल मुफ्त ऑफर स्टॉक उपलब्ध रहने तक मान्य है।
3: जल्दी कीजिए विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
2: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क मुरादाबाद कॉल 9412211111
2: TNC अप्लाई।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।